0: फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स अपने सिसागा के बाद स्कारब्रो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन 416-757-9999। दांतों की कोई भी बीमारी हो आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए। तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योरेंस न रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 905-232-5678।
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
0: अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009। It's 9058280009। You log in ho alkaramjewelers.ca। Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari। अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेड लाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 9057831922। इट्स 9057831922। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
2: जी हाँ, 416-710-6777 वो नंबर है जहाँ आप स्टॉल बुकिंग, स्पॉन्सरशिप या मजीद मालूमात के लिए कॉल कर सकते हैं। 23, 24, 25 और 26 मई को इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल होने जा रहा है कैपिटल बैंकेट हॉल में सागा में। कैपिटल बैंकेट हॉल ईद मेलों की वजह से मशहूर है। एवरी डे यहाँ पे प्राइजेज हैं, गोल्ड के प्राइजेज हैं और भी बहुत कुछ है, ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट है। शम्स रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल उन्हीं से लेंगे। शम्स भाई, अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। बताइए कैसी तैयारियाँ हैं, क्या कुछ होने जा रहा है इस इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
3: बस जी, तैयारियाँ बहुत ज्यादा है। चारों दिन बड़े शोज हमने रखे हैं
2: जी,
3: और बस अब हमारा मैसेज है वेंडर्स के लिए कि जो लोग अपने पास स्टॉक घर में रख के बैठे हैं, कोई कपड़े वाला है, कोई जेवर वाला है, इसी तरह किसी के पास कोई ग्रोसरी सॉलिड फूड आइटम्स पड़े हुए हैं, अनकुक्ड मसाले हैं किसी के पास, तो ये सारे लोग आके हमारे इस ईद मेले में शमूलियत कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो स्टॉल की प्राइस हमने बड़ी अट्रैक्टिव रखी हुई है, इस वक्त अर्ली बर्ड चल रहा है, तो हमसे रब्ता करें। और आपका कोई भी ब्रांड है आप आइए इसमें मार्केट कीजिए, 8,000 से 10,000 लोग इसमें होंगे, विजिट करेंगे, तो एक जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, चाहे आप इंश्योरेंस बेचते हैं, चाहे आपका मॉर्गेज करते हैं, कुछ भी करते हैं।

0: यहाँ से आपको गारंटीड लीड्स मिलेंगी, और जब आप हमारे साथ साइन अप करते हैं तो हम आपको टीवी स्टूडियो में ले जाके 360 टीवी में आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे और हम उसको वायरल करेंगे। बाय द टाइम ईद मेला आएगा आप हर जगह मशहूर होंगे और लोग आपसे आके मिलेंगे कि आप कैपिटल बैंक्वेट हॉल में कहां पर हैं।
1: 416-710-6777 पे कॉल कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा इनाम घर इनाम देने की वैसे मशहूर हैं और यहां भी आप इनाम घर के इनामात भी होंगे और बाकी इनामात भी होंगे, उसकी कुछ तफसील बताइए और प्रोग्राम्स कैसे होंगे चारों दिन?
0: जी बिल्कुल, चारों दिन हमने बड़े शोज रखे हुए हैं, तो जो भी नाजरीन जो भी सामईन सुन रहे हैं जो इनाम घर में आते रहते हैं वो सारे एक्साइटेड हैं। चार दिन हैं और चार शोज हैं। पहले दिन हमारा शो है फैशन शो है, उस फैशन शो में भी जो मॉडल विन करेगी, जो कोई मॉडल इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं अभी हमसे मेल फीमेल मॉडल दोनों राब्ता करें, जो जीतेगा उसी दिन अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से उनको गोल्ड का प्राइस दिया जाएगा।
1: सही।
0: दूसरे दिन हमारा सिंगिंग का कंपटीशन है, जो सिंगर्स हैं हमसे राबता कर लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, जो सिंगर भी जीतेगा उसी रात को अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस मिलेगा। फिर तीसरे दिन यानी के तीसरा दिन आ जाता है मंडे का, मंडे वाले दिन हमारा फैमिलीज का शो है, तो फैमिलीज का शो और जो मदर्स डे के हिसाब से और जो सीनियर्स हैं वो सारे आए तो हम उनके दरमियान भी एक छोटा सा फनी कंपटीशन करवा के गोल्ड का प्राइस उस दिन हम सीनियर मदर या सीनियर फादर को मिलेगा।
1: ठीक।
0: और आखिरी दिन जो है वो हमारा मिक्स है, सारी फैमिलीज हर जेंडर के लोग हर एज के लोग आएंगे और उसके लिए स्पेशल शाजिया हुसैन डिजाइन कर रही है एक शो जो टोरंटो 360 की होस्ट भी है, तो उस दिन भी एक गोल्ड का प्राइस, और हम मशकूर हैं अलकरम ज्वेलर्स के कि जिन्होंने सारे इनामात का इंतजाम किया है।
1: वही राइट जनाब। इसके अलावा किसी किस्म का स्टॉल आप लगाना चाहते हो, मेहंदी का स्टॉल हो, ज्वेलरी का स्टॉल हो, क्लोथिंग का स्टॉल हो, रब्ता कर लीजिए 416-710-6777। थैंक यू वेरी मच शमसा, बहुत शुक्रिया, अगले प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं।
0: थैंक यू,
1: बहुत
0: शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
1: मजीद डिटेल के लिए कॉल कीजिए शमसा ईमान साहब को 416-710-6777। एक खूबसूरत नगमा और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में, रابطے کے نمبر 416-593-0003۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں آزان مغرب۔

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
4: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राह बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
5: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
6: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600.

0: That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
2: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tourist is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
3: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: के स्टोर तशरीफ लाइए अल करम ज्वेलर्स हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन कड़े झुमके हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए अल करम ज्वेलर्स 3465 प्लैटिनम ड्राइव यूनिट 99 मिसिसागा या फिर कॉल करें 905-828-0009 अल करम ज्वेलर्स फरमाइश आपकी गारंटी हमारी
6: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.

0: and let Talhavati serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talhavati. 647-295-7861. Then let Talhavati serve you the best.
1: The Law Professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca.
2: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्फ बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677

जैन, मुझे लगा कि तुमने शुरू में थोड़ा सा डर लग रहा था तुम्हारी आवाज में, लेकिन जिस तरह ये गाना चलता गया मुझे लगा कि तुम कंफर्टेबल होते जा रहे हो। अंतरे में आके मुझे लगा कि तुमने गाने को पकड़ा और उसके बाद से गाना खुल गया। मैं समझता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस थी और आई होप कि लोगों को भी अच्छी लगे।

0: कुछ होना है.
1: हाँ.
0: So, less, अगर आप जिस पर्पस के लिए आए हैं तो फिर
1: Six sense कुछ कह रहा
0: कि उसको रिकॉर्ड करें. तो फिर वही हुआ, मैं एक तरफ चला गया, वो मैंने कहा कि तुम यही रहो. तो जब मैं गया हूँ तो उसके 5 मिनट बाद ही उसको लगा कि उसको ऐसा लगा कि मैं वहां नहीं गया हूँ बल्कि मैं एक खिड़की में से देख रहा हूँ उसको.
1: वाओ.
0: तो वो एकदम उसने टर्न किया है, तो उसने मेरा नाम लिया है, तो उसने कहा तुम यहाँ क्या, तुम तो उधर, तुम आर यू मैसिंग अराउंड विद मी. वो ये समझा कि मैं उसके साथ मैस अराउंड कर रहा हूँ. तो वो दौड़ता हुआ दीवार के पीछे आया, दीवार पर से इतनी दूर थी, टूटी हुई दीवार थी, समझा मैं इसको अभी पकड़ लूंगा. जब वो वापस गया है तो कोई नहीं था वहां पे, तो उसने फिर चीख मारी है. तो फिर मैं दौड़ता हुआ वापस आया बहुत दूर से, तो उसने जब उसने वाकई देखा कि मैं तो काफी आगे था, इतनी दूरी कैसे जा सकता है ये 2 सेकंड में, तो फिर उसने बताया कि यहाँ कोई था. हमने कहा लेट्स पैक अप नाउ, और वो रिकॉर्ड हुआ है, वो शबी रिकॉर्ड हुई है. तो वो हमने देखी है, हमने जहां तक हो सकता था उस चीज को इनहेंस किया है हमने दिखाने के लिए, फ्रेम को रोक के ये देखें यहाँ पे कुछ था,
1: जान जोखों में डाल दिया.
0: हाँ, उसके बाद हमने कहा, हमारी फैमिलीज ने कहा कि भाई इनफ इज इनफ है, अनलेस यू आर गेटिंग पेड बाय सम बिग प्रोड्यूसर.
1: मैं जल्दी आपको पे करूंगी. अच्छा ये बताइए नईम, अभी जैसा कि आप मूवीज जो है डायरेक्ट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि इसमें आपको अपनी फैमिली की कितनी सपोर्ट है, क्योंकि ये फैमिली की सपोर्ट के बगैर आपको लगता है कि ये चीज मुमकिन होती है?
0: मेरी जो माशाल्लाह से I'm blessed कि मेरी जो अदर हाफ है, मेरी वाइफ जो है, शी इज एक्चुअली द प्रोड्यूसर.
1: जी
0: जब इन द बिगिनिंग शी वाज यस लिटिल बिट स्केप्टिक कि ये क्या नया चीज है, मूवीज कैसे करेंगे, क्या होगा, बट शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट टू, सो उससे मुझे बहुत हेल्प है. तो यस, शी इज 100% सपोर्टिव. एंड समटाइम तो सेट के ऊपर, हालांकि डायरेक्टर मैं था, लेकिन शी ऑल्सो गेव सम गुड आइडियाज कि नहीं सीन को ऐसे नहीं ऐसे करो, तो इट टर्न आउट प्रीटी गुड. सो इन दैट सेंस यस, शी इज ऑन बोर्ड एज वेल. सो या बगैर उसके सपोर्ट के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. और बच्चे जो हैं मेरे, दे आर, वो बड़े हो चुके हैं, सो दे लाइक माय प्रोजेक्ट्स. लेकिन इसीलिए जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपना लाने लगा हूँ, तो वो मेरी जो बेटी है वो कहने लगी डैड डू समथिंग दैट आवर जनरेशन कैन ऑल्सो अटैच. आप मतलब उनको ऐसा लगा कि मैंने जो लास्ट मूवी बनाई है ना, वो मतलब इंडिया पाकिस्तान के कल्चर से ज्यादा रिलेट कर रही है. तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम. सो ये मेरे लिए चैलेंज था, तो फिर मैंने इस कहानी को ऐसा लिखा और ऐसा इंशाल्लाह शूट करूंगा कि वो
1: दूसरी कोई मूवी है.
0: जी जी जी, उस मूवी का नाम है डार्क मेमोरीज.
1: ओके
0: हाँ, तो वो भी इंशाल्लाह वी गोना स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट. तो
1: उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे या अभी?
0: मैं यही बता सकता हूँ कि वो स्प्लिट पर्सनैलिटी के ऊपर है.
1: ओके
0: और वो भी उसको एक डार्क रंग दिया गया है, एक थ्रिलर है वो भी. दिखाया ऐसी है कि कोई पैरानॉर्मल चीज है, लेकिन जो मूवी
1: उसी तरफ जाते हैं.
0: लेकिन वापस जब मूवी रिवर्ट करेगी तो लोगों को पता लग जाएगा कि इट्स नॉट पैरानॉर्मल, ये सब इसके दिमाग में, बेचारा सफर कर रहा है किसी चीज से. तो ये कोशिश की गई है उसके.
1: अच्छा, यानी ये भी कुछ वैसे ही साउंड कर रही है कि लोग जो है इंटरेस्ट पैदा हो जाता है लोगों में इस तरह की, क्योंकि देखें ये जो प्यार भरी कहानियां, अब इंसान इससे बहुत दूर निकल चुका है. पोस्ट कोविड तो मुझे लगता है कि इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है कि प्यार भरी मूवीज या प्यार भरे गाने. अब तो जो है ना फास्ट फास्ट फास्ट, और उसके अलावा इस तरह की जो मूवीज हैं उसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है लोगों को. तो लाइफ आपको क्या लगता है, बीइंग अ राइटर, आपको लगता है कि चेंज हुई है पोस्ट कोविड दुनिया, या क्या, या ये मेरा अपना परसेप्शन है?
0: नहीं, आई थिंक आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है आपकी कि कोविड ने दुनिया को बहुत चेंज कर दिया है. नंबर वन के ये कि एक तो हर कोई सोशल मीडिया स्टार हो गया है,
1: एवरीवन,
0: सो कैमरा जो है वो अब इतना रैम्पेट हो गया, और इतना, एंड इट्स गुड थिंग टू यू नो, सबका टैलेंट बाहर आ गया है. एक तो ये, उससे एटीट्यूड में भी फर्क पड़ा है. और
1: एटीट्यूड में किस तरह का आपको लगता है?
0: एटीट्यूड में के जो एक्सेप्टेंस लेवल है सर्टेन चीज में बढ़ गया है, सर्टेन चीजों में बहुत कम हो गया है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अपनी भी 4 चीजें या 5 चीजें डाल देता है यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि दूसरे लोग जो हैं वो भी वो भी कुछ हैं, इस ये काम

0: happy hack, actually.
1: They can do that.
0: Yeah, they can do that. So it's like, it's a very weird psychological thing. और गुड थिंग ये है कि लोगों को टैलेंट देखने को मिला है और लोगों को पता लगा है कि इतने जबरदस्त टैलेंटेड लोग हैं,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
0: और वो अच्छी चीज ला सकते हैं और ला रहे हैं,
1: ला रहे हैं पॉजिटिव वे में अगर देखें तो बहुत सारे लोग उसमें उभर के आए हैं। और ख्वातीन स्पेशली घरों से काम उनका स्टार्ट हो गया, यानी स्मॉल बिजनेस जो है वो ख्वातीन ने स्टार्ट की है और काफी जो है वो इसमें आगे बढ़ रही हैं। और मैं ये कहूंगी कि एक तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर ख्वातीन अपना हाथ बटाना चाहें, अच्छा इसमें वो ख्वातीन भी शामिल हैं कि जो कि वेल एजुकेटेड हैं लेकिन वो चूंकि घर और बच्चों के जिम्मेदारियों में फंस के वो काम नहीं कर पा रही थी बाहर जाके, तो उनका वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वी आर ब्लेस्ड के कैनेडा में बहुत मेजॉरिटी आप इसको कहें कि जो है सारी वर्किंग ख्वातीन है, तकरीबन सारी ख्वातीन वर्किंग है और जो नहीं है अब वो भी घरों से काम कर रही हैं। तो मैं कहूंगी कि ये पोस्ट कोविड ख्वातीन के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ, ड्यूरिंग कोविड बड़ा अच्छा साबित हुआ है कि उन्होंने अपनी चीजें चाहे वो खाना पकाने के हिसाब से या जिस हवाले से भी घरों से उन्होंने अपने जो कपड़ों का शुरू कर दिया, तो यह हर चीज को अगर पॉजिटिव वे में देखें तो बड़ा अच्छा मर्दों के लिए भी बड़ा अच्छा हुआ है कि उनके हाथ बटाने के लिए ख्वातीन आगे आ गई हैं।
0: नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इट्स अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग। सोशल मीडिया जो है इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके आगे सर थाम चुका है कि and it's, this is just the beginning, it's gonna evolve into something so gigantic। मुझे याद पड़ता है लास्ट ईयर मैं नाइग्रा फिल्म फेस्टिवल में गया हुआ था, तो वहाँ डॉना समर आई हुई थी, शी इज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी मूवी इंडस्ट्रीज हैं हॉलीवुड की, वो खुद भी रिप्रेजेंट करती हैं पैरामाउंट पिक्चर्स को, तो मैंने कहा था कि ये जो सोशल मीडिया है ये इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया इज क्रिएटिंग अ बिग इम्पैक्ट, अ बिग डेंट, एंड इट्स ऑल्सो फोर्सिंग जॉइंट कंपनीज लाइक पैरामाउंट एंड बड़े बड़े जो नाम है टू रीथिंक आवर होल वे ऑफ डूइंग मूवी मेकिंग एंड एवरीथिंग, सो देयर यू गो।
1: अभी थोड़े अरसे पहले की बात है, मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले की बात है कि पाकिस्तान की मैं एक राइटर से बात कर रही थी, खातून है, तो उनसे मैंने कहा कि आपके ड्रामे इतने फ्रिक्वेंटली आते थे अब इतने कम क्यों हो गए, तो उन्होंने कहा कि शाजिया अब जो YouTube ने और जो इस तरह का सोशल मीडिया है उसने ना लोगों की मेंटालिटी इस तरह की कर दी है कि अब वो लंबे ड्रामास नहीं देखना चाहते, वो कहते हैं 10 मिनट के अंदर मुका दो, क्योंकि 10-10 मिनट की मूवीज आ चुकी हैं जिसकी वजह से अब हमारा स्कोप उतना नहीं रहा है। वो उनको शिकवा था, जाहिर सी बात है एक पुरानी राइटर हैं और बड़ी मंझी भी राइटर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ये कि ये शिकवा उनको हो रहा था, कह रही थी कि बिल्कुल सोशल मीडिया ने जो है काफी बड़ा डेंट मारा है इस इंडस्ट्री पे।
0: नो डाउट।
1: तो ये कि नईम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होती रहेगी क्योंकि मैं मूवी देखने के बाद भी आपको जहमत दूंगी, क्योंकि मैं देखूंगी अगर जहां पे कुछ क्रिटिसाइज करना पड़ेगा वहां पे क्रिटिसाइज भी करूंगी, क्रिटिक बनूंगी मैं, और अगर जहां पे मुझे आपको सपोर्ट करना होगा मैं आपके शाना बशाना खड़ी होंगी। तो ये कि इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाजरीन, आपसे भी फिर मुलाकात होती है। देखिए मैं आपको कितनी अच्छी अच्छी चीजें कनाडा की दिखाती हूँ, पॉजिटिव साइड भी दिखाती हूँ, नेगेटिव अल्हम्दुलिल्लाह इतनी होती नहीं है, और जो होती है वो हमारी आपस में रिजोल्व हो जाती है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल। खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राह बेकर्स। आज विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
6: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
7: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
8: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
9: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
4: At Alam Law Firm, our tireless efforts in the pursuit of justice for our clients include an unwavering belief. Beyond the courtroom battles, we forge meaningful connections with our clients.
10: Supporting our local community is integral to the values we hold dear.
11: Every single client file we represent at Alam Law bears my personal touch, a commitment that I stand by.
12: For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today.

0: and let Talhavati serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talhavati. 647-295-7861. Then let Talhavati serve you the best.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
2: The Law Professionals at TM Law providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majeed, Barrister and Solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca.

0: then मैं तारीफ करना चाह रहा हूँ एंड इट माइट कम अक्रॉस एज ए आई डोंट नो इट मे कम अक्रॉस समथिंग वेरी वियर्ड मुझे ऐसे लग रहा था कि आप लिप सिंक कर रहे हैं दैट्स हाउ गुड यू आर
1: थैंक यू सर थैंक यू सो मच

0: हाँ जी, ये दुनिया बड़ी जालम शह है जी। रोज एक नया रंग बदलती है। किसी सियाणे ने एक बारी कहा था कि यहाँ जिंदगी गुजारने का बेस्ट तरीका है कि जिस रंग में सुबह का सूरज चढ़े उस रंग में ढल जाओ। और इस तौर का रंग तो एक ही है जी, पैसा। पैसा है तो शान है, पैसा है तो मान है, पैसा है तो जान है, और जान है तो जहान है। मेरी बेबे मुझे कहती रहती है कि पुत्र पैसा सब कुछ नहीं होता, और मैं बेबे को समझाता रहता हूँ कि बेबे पैसा ही सब कुछ होता है। जिसके पास नहीं होता उससे पूछो, और जिसके पास होता है उसको देखो, उसकी टौर ही अलग होती है। अब इसी देख लीजिए, ना मुंह ना मथा जिन पाड़ो लथा, पर पॉकेट फुल ऑफ मनी तो फिर हाउ आर यू हनी।
1: तेरी हाँ सुपर स्टार हो गया है प्यार ना मेरी लंबी का चल इजी हो जा जैक्सन मेरे।

0: कॉलम जो है उसके सामने देखिएगा, ये जो आगे चीजें
1: शेख साहब
0: उनका प्लाजा साथ वाला है।
2: लानत
3: पता दे पराठे पकड़ विच आटे इना दी भी क्लास है चढ़े आउट से मास्क।

0: कैसा लग रहा हूँ जी?
1: माशाल्लाह अच्छी लग रही
0: है। आप भी बहुत अच्छी लग रही
1: है। शुक्रिया।
0: स्टार्ट है ना जी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1: जी बट साहब, तो आप इलाके की फलाह बहबूद और हकूक के नुस्वा के फरोग के लिए क्या इकदाम करने के अजायम रखते हैं?
0: ख्वाब देखना अच्छी बात है, हर कोई ख्वाब देखता है, आप भी देखती होंगी। अलामा इकबाल ने भी ये ख्वाब देखा था।
2: बिल्लू नु चंड पै गई है?
0: के बिल्लू नु चंड पै गई है।
2: ओ नहीं नहीं, ये नहीं कहना था।
0: नहीं नहीं, ये नहीं कहना था।
2: और रुक जाए खुदा का वास्ता है।
0: रुक जाए खुदा का वास्ता है।
2: ओ सच मुझ चंड पै गई बट साहब।
0: सच मुझ चंड पै गई है? सचमुच चंड पै गई है?
1: अरे
0: एक्सक्यूज मी जी, एक मिनट जरा कट कीजिएगा, मैं अभी आया, अभी आया।
1: जी
3: ओए शफाक
2: जी, बरसा मैं इधर हूं जी।
0: ओ की होया है? किन्नू चंड पै गई है?
2: ओ जी बिल्लू नु चंड पै गई
0: है। बिल्लू नु चंड पै गई है? ओ किसे ने देखा ते नहीं?
2: ओ पता नहीं जी।
0: ओए ते चंड मारी किन्ने?
2: शेख ने।
0: शेख दी ते मैं।
4: ओ
1: क्या हुआ?
4: किसी की अम्मी का जिक्र कर रहे हैं।
0: ओ की ओ तीवर फूल ला।
2: अच्छा
0: फूल ला। अच्छा जी,

0: जहाँ काम में वहाँ पहुँच। ओए बिलूलू चंड पे आ गई है। ओए डायनासोर का पुत्र भी है ना शेख, ओने मारी है। ओए नाले मेरे पैसे भी ले गया, फाड़ लूं जाके।
1: टेंशन ना ले बट साहब, मैं आ गया।
2: बतख दे अंडे खान वाले शेखा, छटना नहीं तनु मैं।
3: बट सब की सेवा ते कर रहे हैं
2: और तेरी फुफी से
4: ਮੈਂ ਰੁਕੇ ਸੁਕੀ ਕਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੂੰ ਆ ਉੱਤੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ।

0: अस्सलाम वालेकुम शेख साहब।
1: दीवा
0: किथे चले हो? चलो चल।
2: शेख साहब निकलो निकलो।
1: ओ तू किथे?
0: ले भी शेख साहब, आपके लिए बड़ी महंगी कुल्फी लेके आया हूँ, खोए वाली खाएंगे?
1: एक तो बट से मैं बड़ा ही तंग हूँ। देख मेरा मशवरा है, तू बीच में ना पड़ पुत्र। हैं? समझदार है तू?
0: शेख साहब मैं भी आपसे कह रहा हूँ।
3: ठीक है शेख साहब, आप जाएं, मैं देख लेता हूँ चूचे को।
0: यार को बंदा बात ही कर लेता है, को मैनर होते हैं, को तमीज होती है, बगैर तो सिखाया नहीं अम्मी ने चूचे।
1: ओए लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मार इसको।
0: टिपिकल। अब तुम लोग सारे स्कूल गए होते तो ये बुरे काम ना करते ना। मास्टर जी को डंडे से सिखाना पड़ेगा। चलो हाँ जी शुरू करें। या
1: किधर है चाबी? और चाबी लगा। उठे क्यों भी आई? चाबी लगाओ बगैर लगा।

0: टूटन दिया और पै गए।
1: स्टार्ट मेरी गाड़ी।
0: वो चलती कर।

0: बैठ के गड्डी बच जाएगी।
1: जी हाथ वाला रखो।
2: मई किथों आ गई है? मई
0: ओ मई अगे पै इधर रोला पिया।
2: मई माफ कर दे।
0: ओ हट जा हट जा हट जा पागले।

0: गिरफान तो लपड़। ओए ओए
1: शेख साहब,
0: खुदा की कसम तू मेरी जान ले ले, पहले ही दूंगा।
2: शेख साहब, जान नहीं चाहिए, पैसे चाहिए।
1: लेकिन अगर कहते हैं तो ले लेता हूँ।
0: तीमे पुत्र,
1: एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं। छह गोलियां ले जी, चले आप पांच हो। अब अगर ना चले तो सारे आपके, लेकिन चल गए तो फिर तो मेरे बनते हैं ना।
0: तिमे पुत्र, तिमे पुत्र, तिमे पुत्र, देख गोली ले चल, ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: बात याद रखना।
1: ओए, मैं तो भूल ही गया, भट साहब ने पैगाम भेजा था, कह रहे थे कि डोंट टच द बिल्लू भट।
0: फिर तीफे शहजादे क्या याद करेगा? फ्रेश फ्रॉम द फाउंटेन।
2: वाह जी वाह, ये भी बट साहब, ये है आपके लिए, फ्रेश फ्रॉम द माउंटेन, पूरे 20 है, गिन ले।
0: क्या जरूरत है, तू कह रहा है 20 तो फिर 20 ही होएंगे। और मैं ना थोड़े किए किसी पे ना एतबार नहीं करता, लेकिन अगर करता हूं ना तो ठोक बजा के करता हूं। बस इसे तोड़ी मत।
2: भट साहब बचे हैं आपके
0: लड्डू खा आपने।
2: भट साहब बस आपने अपना वादा नहीं भूलना।
0: कौन सा?
2: ला भट साहब, मेरा रेस्टोरेंट।
0: कोई कैसी बातें कर रहा है? वो कोई भूलने वाली बात है? तिके
2: होर नहीं किथे।
0: बचपन से तेरे काम करवाता आ रहा हूँ, ये कैसे भूल सकता हूँ मैं।
2: बट साहब मैं फिर चला।
0: चल फिर
2: डन।
0: बेबे को मेरा सलाम दे दोनों हाथों से।
2: वालेकुम सलाम। बट साहब थोड़ा मीठा अच्छा होता है।
0: मैं तो कहता हूँ दो तीन और बोझे में पा के ले जा, रस्ते में खाता जाई।

0: ये हमेशा मैं ही तुम्हारा वेट क्यों करती हूँ? और हम हमेशा यही खाना खाने क्यों आते हैं?
1: जब तुम्हें पता है तो पूछती क्यों?
0: और आनी आज प्लीज प्लीज नॉर्मल
1: आज देख लेना मैं कितना कूल एक्ट करूंगी।
0: हाँ देख लेते हैं अभी कितनी कूलनेस है।
2: आनिया
1: आ रहा है?
0: आ रहा है और बहुत हॉट लग रहा है।
1: ओके एक्ट कूल एक्ट कूल।
0: ओके ओके ओके
2: आनिया।
1: ओह हाय आई डिडंट सी यू
2: बट आई वाज राइट देयर।
1: ओह आई डिडंट सी यू। So, you're playing here tonight?
2: Anya, I play here every Saturday night, and you ask me the same question every time.
1: Do I?
2: Yes, you do.
0: You do.
2: Okay, listen, it's my birthday next weekend, and I'm taking all my friends to the lakes to see the Northern Lights and sing some songs around the bonfire. You girls are invited.
0: That's such a great idea.
1: I'm busy.
2: Oh. That's too bad. You're gonna miss a night of your life. If you know what I mean.
1: It's okay.
0: Maybe.
2: Maybe?
1: Maybe, yeah.
2: Okay, in case you change your mind, I'll wait for you.
1: I'm busy.
0: You're busy. You're busy. Seriously?
1: ये मैंने क्या किया सारा?
0: नहीं नहीं आप थोड़ा और कूल एक्ट कर लें।
1: सोचेगा वो क्या सोचेगा? वो जैसा इडियट नहीं होगा इस दुनिया में।
0: पागल।
2: This one's for you, Anya.

0: लाइन करा रहा है, इसको कह लाइन में लगे, हम यहाँ ऐवे नहीं खड़े हुए। बड़ी लोग क्या, जरा फिर से करा दें।
1: बेबी को लुक जाए।

0: डैड है इसमें, मैंने तो सिर्फ उससे बात की थी। आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है? मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया।
1: ओ सिस्टर मेरी बात तो सुनो।
2: वो आदमी हॉस्पिटल में है और रेस्टोरेंट वाले तुम पर केस करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: मुझ पे केस? डैड केस तो उस लड़के पे होना चाहिए जिसे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। वाह, आपको भी तमीज से बात करने का ख्याल आ गया। बस इसकी कमी रह गई थी।
2: तमीज से बात करो, तुम्हारी माँ है।
0: स्टेप मॉम।
2: आनिया।
3: इट्स ओके। इतनी तमीज होती तो हर बार ये नौबत ना आती। खैर, केस कमिश्नर जो के पास चला गया और अब सब पता चल जाएगा। ये बात करो,

0: बे, क्या हाल है?
1: तीसे, हाय देख, मैंने तेरे लिए साग बनाया है, अब भी रेडी।
0: बेबे, भूल गई है? आज जुम्मा है, आज मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगा और तू बाहर जाके आराम से टीवी देखेगी बैठकर।
1: हाय तीसे, टीवी तो उस दिन की लोड शेडिंग के बाद चला ही नहीं।
0: अच्छा, चेक कर, शायद चल गया हो।
1: ओ, मैं सुबह चेक किया था।
0: मेरे कहने पे एक दफा रात को भी चेक कर ले।
1: अच्छा तू कहता है तो मैं कर लेती हूँ, चल। हाय तीफे, ये क्या?
0: LED वड़ा टीवी। ये चेक कर, इधर बैठ बैठ बैठ, तुझे दिखाता हूँ। बैठ जा, ये देख, तुझे दिखाता हूँ। ये चेक कर, अब ना तू इस पे अपनी पसंद के प्रोग्राम अपनी मर्जी के टाइम पे देख सकती है।
1: ना कर।
0: क्या देखेगी? फिल्में, ड्रामे, कुकिंग शो, जो तेरा दिल करे। बता फिर, तुझे मजा आ रहा है?
1: मजा तो आ रहा है, लेकिन मुझे ये बता, ये कहां से आ रहा है?
0: बेबे, तुझे कितनी बार का है, आम से मतलब रखा कर, पेड़ से नहीं।
1: देख पुत्र, गलत तरीके से सही काम भी करेगा ना तो आखिर में वो गलती होगा।
0: बेबे तू सीरियस हो जाती है, छोड़ ना। ये साग चक नगेट्स कैसा है?
1: माँ की बात सुन ले, ये काम छोड़ दे, नेरा नेरे को रोशन नहीं कर सकता पुत्र।
0: वाह बेबे, सही कहती है, नेरा नेरे को रोशन नहीं कर सकता, लेकिन UPS तो कर सकता है ना, और UPS आता है पैसों से। अब खरीद लिया होता तो रोज यहाँ डार्क रूम ना खेल रहे होते हम ना। देख बेबे, मैं तुझे एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, तुझे नहीं समझ आती क्या? बोला चीजों से सुख आता है और चीजें आती हैं पैसों से, हैं? सुन मेरी बात, मैं तुझे सुखी देखना चाहता हूँ माँ, तू क्यों नहीं समझती?
1: सुख पैसों से नहीं पुत्र, प्यार से आता है।
0: ये सब किताबी बातें माँ, तुझे लकवरी समझाया, सारा मूड खराब कर देती।
1: साग तो चखा।
0: Enjoy the life, कर।
1: उस्ताद अच्छा है तेरा, कौन है?
0: एक हॉट सी आंटी है सुरैया नाम की।
1: कितना बुरा।
0: तू है बेबे, तू है मेरा सब कुछ, तू है, मैं तेरे लिए तो सब कुछ करता हूँ।
2: हाँ सारा, और इस पर पक्का वाला। डैड को बहुत गुस्सा आया, बता बोले।
3: आनिया हद से बाहर निकलती जा रही है।
4: जा रही नहीं, जा चुकी है।
2: फिर क्या? वही सोफी।
4: आज फिर उस एंडी के चक्कर में वो वहाँ पहुंची हुई थी। तुम्हें बार बार कह रही हूँ उसकी शादी करवा दो, बात हाथ से निकल गई तो बहुत पछताओगे।
3: अरे श्योर वो लड़का आनिया के लिए ठीक रहेगा?
5: बिलाल, वो तो जवानी में गंजा हो गया यार। कहाँ वो नीली आंखों वाला एंडी और कहाँ ये अंडा बिलाल?
4: और कहाँ कहाँ जा सकता है तुम्हारा बिजनेस बाजवा के साथ, कभी सोचा है तुमने?
2: मुझसे तब सोचा भी नहीं जा रहा, लेकिन ये कंफर्म है मैं मर जाऊंगी, शादी नहीं करूंगी।
5: सुनो, मेरे पास एक आइडिया है।
3: आइडिया अच्छा,
2: मगर ये करेंगे कैसे?
4: चट मंगनी, पट ब्याह।
3: कब?
5: नेक्स्ट वीक। सोचो तुम, एंडी, उसका गिटार ले, हाउ रोमांटिक।
2: OMG,
3: ओ माय गॉड, आनिया शादी करके चली जाएगी?
2: Yes.
3: लेकिन सुनो, बटका क्या करे, मेरा इतना पुराना यार है, वो भी तो अपने बेटे के लिए आस लगाए बैठा है ना।
4: तुम्हें नहीं लगता कि वक्त आ गया बात क्लियर करने का? तुम कल स्काइप पर उससे बात कर रहे हो ना, तो ये बात भी कर दो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे?
3: हाँ, यार करनी तो पड़ेगी।
6: ओ खालदा जी, ओ ये चलदा नहीं पिया, इ गैस ते नहीं मुक गई।
7: बिस्मिल्ला।
6: ओए ओए, अड्डा वड्डा मुंह मेरा, फिट है मुंह
4: तो फिर मेरा ही हौसला है ना, सारी जिंदगी गुजारा की है इतने बड़े मुंह के साथ।
6: ओ अच्छा ना, तू सूट पा के आ गया, तू की प्यो दे वलीमे ते चले।
7: अब्बा जी रिश्ता मांगना है, होगी नी खेलनी।
8: ओए मां सदके मां दा परोला।
6: ओए ओ बशीरे, हेलो बशीरे।
9: बंजो प्लीज
6: ले। ओए मेरे लिए तो ये बशीरा ही है ना। यार वेख ओ टाइम किथे चला गया है।
3: बस बट यही तो कह रहा हूँ तुझे,
9: अब हमें भी अपने बिजनेस
3: में नई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए।
6: अब बिजनेस को छोड़ यार, आज मैंने ना तेरे साथ भाइयों वाली बात करनी है, फैमिली वाली बात।
3: हाँ मेरा ख्याल है टाइम आ गया है, अब पहले तू बोल।
6: यार देखना आनिया ती जवान हो गई है, है? और ये मेरा बिल्लू पुत्र भी।
7: हेलो अंकल।
6: चल उन पीछे हट। हाँ तो मैं ये कह रहा था हाँ कि बच्चों की ना शादी का टाइम आ गया है।
10: जी जी।
3: ओ सही कह रहा है यार तू, मैं भी तुझसे यही कहने वाला था कि
6: ओ देखा ना ओ बगैर बताए समझ गया मेरा यार। और हम दोनों ना बचपन से एक ही जैसा सोचते हैं। अच्छा बता फिर तूने क्या सोचा है।
3: बट मैंने ये सोचा है कि मैं आनिया की शादी कर दूं।
6: ओ बल्ले बल्ले बल्ले, चल फिर मुंह मीठा कर, आकर आ। ओह
9: मगर बट एक मसला है, तूने कहा था
3: ना कि जिंदगी में कोई भी मसला हो तो तुझे बताऊं।
6: हाँ वो मसला क्या है
3: यार? वो कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं जिससे मुझे बड़ा नुकसान हो सकता है। वो बाजवा है ना, अपना बाजवा।
6: आओ भिनी नग वाला।
3: हाँ वही, वो कह रहा था कि वो शेयर्स भी खरीद लेगा और मदद भी कर देगा।
6: और वो पॉइंट पे आ यार बशीरे।
3: और वो बाजवा ने आनिया का हाथ मांगा अपने बेटे बिलाल के लिए।
6: अच्छा अच्छा अच्छा, तो तू मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि तू इनकार कैसे करे, है ना?
10: हाँ जी हाँ जी।
3: नहीं यार, आनिया की बात पक्की करनी पड़ गई है।
6: ओ क्या मतलब है बात पक्की करनी पड़ गई है?
3: मतलब ये कि आनिया की शादी तय हो रही है।
6: क्या आनिया की शादी तय हो रही है? ओए ओए तूने मुझसे पूछना तो दूर, बताया भी नहीं है।
3: मैं बताने वाला था तुझे यार।
6: ओ केड़ा यार बताने वाला था, अब बताया
9: तो नहीं ना, पूछा तो नहीं ना।
6: ओ बशीरे मैंने सारी जिंदगी अगर कोई मक्खी भी मारी है ना तो तेरे से पूछ के मारी है। और तूने बेटी का रिश्ता तय कर दिया और मुझसे पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं है जी।
10: हाँ जी हाँ जी।
9: बट इमोशनल क्यों हो रहा है?
6: इमोशन है अंदर, तो इमोशनल हो रहा हूँ ना, और तेरे में तो लगता है कोई इमोशन ही नहीं रह गए।
3: ओ बट रिलैक्स कर, मेरी बात तो सुन।
6: ओए नहीं सुनना मुझे, खत्म हो गई सारी बातें घोड़े के मुंह वाले।
3: अरे बट सिचुएशन को समझ।
6: ओए मैं समझ का बंदा नहीं हूँ बांसो, दिल का आदमी हूँ दिल का। ओए उस वक्त मैंने कुछ सोचा था जब मैंने पेट काट काट कर अपने बच्चों का तुझे पैसे दिए थे बाहर जाने के लिए। ओए उस वक्त मैंने कुछ समझा था, और जब शौकी के बंदे तुझे कुट चाड़ने आए थे हैं, और मैं सीना तान के सामने खड़ा हो गया था, डंडे खाए थे कसुन खाए थे मैंने, चंडे खाई थी। ओए उस वक्त मैंने कुछ समझा था।
3: और बट
6: बट
9: ओए अब मैं
6: समझ गया हूँ कि तेरे लिए मेरी दोस्ती रिश्ता नहीं था, बिजनेस था बिजनेस।
3: देख बट तू अपनी लिमिट से बाहर जा रहा है।
6: ओए अभी तूने मेरी लिमिट देखी कहाँ है? बट इज अनलिमिटेड। अब तू करके दिखा आनिया की शादी, और मैं देखता हूँ कैसे करता है तू ये शादी।
3: क्या हाँ क्या बोला तूने? शादी करके दिखाऊ आनिया की?
6: आहो
3: can you please excuse us for a minute?
11: Sure.
3: Thank you. Oi kanjra, tu mainu rokega? Tu mainu bulaya hai aur teri aukaat ki hai.
9: Tera business te main set karke ditta hai.
3: Multan road te tu dahi palle lana sa apne putr da muh vekhe hi 200 kanal te
9: pehle meri beti nal
0: शादी करेगा। एथो को सुन मारेगा ना, शाल में जाके टिकेगा।
6: ओ मैं तेरी तेरी में ऐसी की तैसी बांध कर बांध कर तू तेरी
0: लत मारेगा। मैं तेरू कमीने है तू, मैनू जानना नहीं।
6: डरा तेरी तसा मैं,
0: तू मैं कौन हूं?
6: ओए चल तेरी में।
0: और बट तू जो पुट सकना ना पुट ले।
6: ओए ए तड़ी है।
0: और तड़ी समझ।
6: ओए मिला हाथ फेर।
0: ओए ले।
6: ओए बंद करो ऐसे अमरीकी आले नू।
3: लूसी, कैन यू गेट मी ग्रीन टी विद हनी एंड लेमन एंड गेट मी बाजवा ऑन द लाइन।
11: डब्ज़
3: रिलैक्स बशीरे, रिलैक्स।
12: अब्बा जी, मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा। पहली बार एक चीज मांगी थी, वो भी आप लोग मुझे नहीं लेके दे सके। बर्ड मेरा मजाक उड़ रहा है। ऑलरेडी
13: मैं आपसे कह रही थी ना, ये जो आपका दोस्त है ना, ये सिर्फ पैसे का पेड़ है और कुछ
12: नहीं। तुम चुप क्या रे? हर मैंने बोलती जल्दी बोलती जल्दी है जी है जी है जी है जी
13: है जी है जी
12: बस। इसे तो मेरी कोई परवाह नहीं, मैं अपने आप को गोली मार रही है।
6: ओए ओए ना ना मेरे बेटे ना, ओए इसे नीचे कर नीचे कर, ये चल भी जाती होती है।
13: हाय मेरा मुंडा मर जाएगा, मर जाएगा। ना करी ना करी, तेरे को मेरा पुत्र ना करी, मेरा पुत्र
12: ना ना पीछे आ जा, ना करी पीछे आ जा। या तो मेरी आज्ञा से शादी करा, या मैंने खुद को गोली मार लेनी है।
6: ओए ओए तेरे को ने दिया बच्चिया। ओए अब मैं क्या करूँ, आप चला जाओ उसे उठाने।
12: आहो
6: ओए पागल तो नहीं हो गया?
13: हाँ जी, हाँ जी सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। रोज बंदे उठाते हो, आज अपनी नूह को उठा लोगे तो क्या हो जाएगा?
6: और तुसी दोवे पागल हो गए, नाल मनु भी पागल कर दोगे।
13: क्या मुझे भी तो ठाके लाए थे ना।
6: ओए तुम क्या चाहती हो? ओए अब इस उम्र में मैं खुद चला जाऊँ उसे उठाने?
13: और मैं कब कह रही हूँ कि आप खुद जाए?
6: और तो फिर कौन जाएगा उसे उठाने?
0: ले जी, आपका उल्लू आ गया।
13: हाँ जी हाँ जी
6: हाँ जी
13: हाँ जी
0: हाँ जी। नहीं बट साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता, आपको पता है यार।
11: मैं ये शादी नहीं कर सकती डैड, एंड यू नो इट।
6: और क्यों नहीं कर सकता? और तू क्या पहली दफा किसी को उठा रहा है? अभी तूने लड्डू उठाया है जी?
13: हाँ जी हाँ जी।
0: बट साहब, बट साहब, लड्डू में और लड़की में बड़ा फर्क होता है। मैंने आज तक ना लड़की उठाई है और ना मैं उठाऊंगा।
13: ठा के थोड़ी लाने, घर लेके आने है जी।
6: हाँ जी हाँ जी।
3: मेरे और तुम्हारी माँ के ख्याल में इससे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता।
6: ओ शहजादे, वो हमारी बेटी है। बिल्लू बट ते आनिया इज मेड फॉर ईच अदर।
11: क्या?
6: ओ शहजादे, तू पैसे से मतलब रख, 5 लाख ले ले और तेरे सारे ख्वाब वन गो में पूरे हो जाएंगे।
14: सोच ले फिर।
11: तो इसका मतलब आपके लिए पैसे ही सब कुछ है?
3: हाउ कैन यू से दिस? तुम मेरी बेटी हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है, और मैं हाँ कर चुका हूँ।
14: अब ये हमारी फैमिली रेपुटेशन का मामला है।
6: ठीक है, और ये हमारे परोले की इज्जत और बेइज्जती का मसला है।
14: हाँ जी।
0: बट साहब, 5 लाख, 5 लाख किस काम के लिए थोड़े कम है, जरा सोचने दे।
6: और तीफे, ये सोचने का टाइम नहीं है, चल 10 लाख ले और डन कर।
11: डन
0: डन डन डन डन डन।
11: मैं कितनी पागल हूँ जो समझ ही नहीं सकी डैड जो आप मेरे लिए करना चाह रहे हैं। लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ। सॉरी फॉर एवरीथिंग।
3: दैट्स लाइक माय गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ यू। It's time to celebrate.
6: Oh, Shahzade, ab teri yehi baatein na mera dil jeet leti hai. Oye, Tony ko phone laga. Parso 6 baje ki flight confirm karwa. Aur main

0: not a fraud, bro. You have to believe me this time. 2 days back. Tension not. मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहा हरामखोर? No, I'm talking to another person. He's with me. Yeah. Okay, listen, bro. You're not my client. You're like my bro, bro.
1: ज़रूरत पड़ने पे तो गधे को बाप बनाना ही पड़ता है.
0: क्या? तुझे उर्दू आती है? तू पाकिस्तान से? ओके, अभी जरा मैं बिजी हूँ, एक जगह फंसा हुआ हूँ, तुझे कॉल बैक करता हूँ. फिर भर गया.
2: गोरी बच्ची काला दिल.
3: आइए. कंग्रेचुलेशंस, प्लेन हैज लैंडेड. एंड योर नेम
0: प्लीज?
3: माय फ्रेंड इज कमिंग टू पोलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम. हिज नेम इज फीफा. We are very good and very close friends. We are like this. We are like brothers. We are like bros. WhatsApp.
0: Please.
3: You speak English? Supal Fonse. The movie is Popolsko. Urdu aati hai? Kam bolti ho? Achha, shaadi ke baad tente nahi karogi.
0: Jana
3: nahi. Hey. Man, add me on Facebook. My ID is tony.shah. Dot as in heart.
4: Heart as in garam. गरम गरम टोनी ले लो, टींडे ले लो, मुल्क छोड़ आए लेकिन ठरक बना नहीं गया.
3: ब्रो ब्रो ब्रो ब्रो
4: पाइजान पाइजान सेट है.
1: वो नहीं लगा था कि तू आ गया.
4: मैंने तो नहीं था. यार भूख बड़ी लगी है, चले जहाज में सिर्फ खजूर ही मिली है.
1: चला मैं तुझे पोलैंड की बहुत ही मशहूर हवा खिलाता.
4: अच्छा चलो यार, फिर पीने को क्या मिलता है?
1: मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन टूटी से मुंह लगा के पीना पड़ेगा.

0: एक सेकंड, वो सब ठीक है बट बिल्लू बट आनिया से शादी करेगा?
1: हाँ टोनी टोनी सर, एक पहली सुहाग रात वाले दिन जब बिल्लू बट अपने कमरे में जाएगा तो कमरे में पहले बट अंदर आएगा कि उसका पट अंदर आएगा?
0: बिल्लू का पट।
1: तो सुन मुझे बता प्लान क्या है?
0: प्लान ये है, ऐसा सॉलिड प्लान बनाया है कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। हाँ और से सुन, बॉन्जो एक
1: थैंक यू
0: मेंशन नॉट मेंशन पे रहता है जो चारों तरफ से गार्ड्स, सिक्योरिटी वायर्स, लेजर्स और कुत्तों से घिरा हुआ है। आनिया उस मेंशन के अंदर रहती है। आज तक जिसने भी उस मेंशन में बगैर इजाजत घुसने की कोशिश की है वो जिंदा वापस नहीं आया, और तू भी नहीं आएगा।
1: मैं भी नहीं आऊंगा, क्या कह रहा है?
0: जब जाएगा ही नहीं तो आएगा कैसे शाणे?
1: नहीं समझा।
0: मतलब तू अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर आएगी। हर रोज ठीक 11 बजे आनिया अपने गार्ड्स के साथ जिम जाती है। गार्ड्स बाहर वेट करते हैं और आनिया अंदर जाके ठीक 11:05 पर अपने वार्म अप सेट स्टार्ट करती है, और तू उधर उसका ट्रेनर बनकर एंट्री मारेगा।
1: टोनी गेटअप चेंज नहीं कर सकते?
0: नहीं।
1: ओके
0: वार्म अप खत्म होते ही तू उसका पहला स्क्वाड सेट करवाएगा। अ 1, अ 2, अ 3, अ 34।
1: टोनी क्या सोच रहा है? कितनी स्क्वाटें करानी है?
0: अ 36।
1: टोनी टोनी
0: हाँ
1: टोनी
0: हाँ स्क्वाट लगवाने के बाद तू उसके पानी में बेहोशी की दवाई मिला देना।
1: ये दवाई है?
0: नहीं ये तो फॉर एग्जांपल है। और फिर वो पानी पीते ही बेहोश हो जाएगी और सीधी तेरी बाहों में।
1: ना करें।
0: हाँ करें। और फिर आएगी टोनी की एंट्री फायर अलार्म बजाने के लिए, जिसके नतीजे में पूरे जिम में भगदड़ मच जाएगी। और मौके का फायदा उठा के तू जल्दी से आनिया को लेके पिछले दरवाजे से एली में आएगा, और वहां पे तेरा भाई जाली कागजात लेके तेरा इंतजार कर रहा होगा।
1: मेरा भाई?
0: मैं तेरा भाई। और वो जाली कागजात लेके तू सीधा लाहौर।
1: ना कर।
0: हाँ कर।
1: टोनी तू इंसान नहीं है, तू एक खजाना है। दिल कर रहा है तुझे जमीन में गाड़ दूं।
0: मैं तुझे हवाओं में उड़ा रहा हूँ, तू मुझे जमीन में गाड़
1: रहा है। अरे मजाक कर रहा था यार, तू माइंड ही कर रहा है। चल अगली ड्रिंक मेरी तरफ से। लोसी दो ठहरे, बेले ने कर दे।

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction? Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tourist is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: रोनी, तुझे पता है देसी और गोरों में क्या फर्क होता है?
1: ये
0: कि देसियों से शराब हैंडल ही नहीं हो।
2: उल्टी सीधी
0: मर गया
2: लबड़ कर सीधे गाने में गाता
0: टोनी, हैंडल हो गई।

0: टोनी बैन क्यों नहीं कर देते यार इधर भी शराब को?
1: यही चीजें मैं अपने मुल्क की मिस करता हूँ।
0: क्या शराब?
1: नहीं बैन।
0: ओ बैन,
1: यही तो।
0: टोनी यार मुझे लगता है क्लास खत्म हो गई, सारी मेमे निकल आई है, वो नहीं निकली यार।
2: कहीं उसके माँ बाप ने उसे बैन तो नहीं कर दिया?
0: आप तो मुझे टेंशन दे रहे।
1: टेंशन ना ले, मैं अभी चेक करके आता हूँ।
0: टोनी
1: हाँ
0: यार

0: जी।
1: लो जी, मैंने पता करा लिया कि वो क्यों नहीं आई है।
0: अच्छा, क्यों नहीं आई?
1: आज उसकी शादी है।
2: क्या बकवास कर रहा है टोनी? आज उसकी शादी है?
1: तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है साले? अगर तेरी शादी होगी तो तू उस दिन जिम में स्क्वाट मारने थोड़ी आएगा?
2: स्क्वाटों के टर्की, तुझे पता तू क्या कह रहा है? अब क्या होगा?
1: क्या होगा? उसकी शादी होगी, वो हनीमून पे जाएगी, उसके बच्चे होंगे।
2: ओ कुत्ते के बच्चे?
1: कुत्ते के बच्चे नहीं, इंसान के बच्चे
2: होंगे। शुरू में बर्बाद, ये क्या प्लान था तेरा? लाना था तेरे पेड़े मुंह पे।
1: ओ हो जाता है तीफे, थूके तो ना थे।
3: 10 लाख रुपए मेरे वार्ड ने।
0: बट को क्या बोलूंगा मैं?
1: ओ तीफे, तू तो ऐसे परेशान हो रहा है जैसे वो तेरी मशूक थी।
4: हेलो तीफे,
5: 28
4: का मतलब हाउ इज द यार?
5: पहुंचा 12।
4: व्हाट इज द अपडेट?
2: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बट साहब। बस सब अंडर कंट्रोल है, बस एक छोटा सा मसला है कि कोई चीज कंट्रोल में नहीं आ रही। ओना कुड़ी दी शादी अज ते असी जिम आए सन उन्हें चुकन, पर ओ आई नहीं। टोनी ने दस्या है ते मैं कह रहा कि तुसी कहंदे हो तो घर फुल छड्डा वा।
6: मेरा मतलब है अच्छा लगता है तुहाडे पुराने तालुकात ते, चलो कोई गुलाब दा फुल हो जाए या कोई वाइट रोजेस टाइप दी मैं दे देना।
4: तीफे ओए, अभी अंदर जा और उठा कर ले आओ उसे इधर, ये शादी नहीं हो सकती।
2: अब्बा जी,
4: अब गेंदे तुझे नहीं कह रहा मैं,
7: अब्बे को भी दोरे पड़ते हैं।
8: तीफे, मेरी बात गौर से सुन, तूने मेरा प्यार देखा है, वार नहीं देखा। जो तू मेरी बेटी को उठाकर यहाँ नहीं पहुंचा तो तेरी मैं
9: सलाम पेश किया जाता है। अगला गीत आपके।
1: सब ठीक है ना? और टेंशन नहीं ले।
10: आई हैव अ गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज। गुड न्यूज इज कि मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि यहां मुझे हर कोई पहचानता है। एंड द बैड न्यूज इज कि तुम भी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई पहचानता नहीं।
11: और तू मुझे जानता नहीं टोनी, भाई ने जेम्स बॉन्ड से क्लासें ली हुई है। प्लान चेक कर मेरा।

0: एक्सक्यूज मी भाई, मैंने कहना था वेरी नाइस जैकेट, योर सैज सैज योर्स।
1: Yeah, exactly. And the tulip on the right side. I told you this before. What are you guys doing?
2: Yes, Mr. Bajwa. It's a big day for both of us. अब से चंद घंटों के बाद हमारी पार्टनरशिप लाइफ पार्टनरशिप में बदल जाएगी. See you soon. बेटा.
0: Yes, sir.
2: Come here.
0: Sir.
2: क्या सर्व कर रहे हो?
0: सर डबल रोटी है, अंडे हैं, स्ट्रॉबेरी भी है, वेरी टेस्टी सर।
3: डैड,

0: कैसी लग रही है मैं?
1: ब्यूटीफुल। वाह
0: डैड,
1: आई एम सो प्राउड ऑफ यू आन्या। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो कितना।
0: ओह डैड, वो नहीं है तो क्या हुआ? आप तो हैं, लेकिन अब से आप भी नहीं होंगे। I'm so gonna miss you, Dad.
1: कैसी बातें करती हो? जहां तुम वहां मैं।
0: Of course, Dad. Bye.

0: कहाँ थे तुम?
1: अलमारी में।
0: अलमारी में क्या कर रहे थे? पहले इतना लेट हो गया, जल्दी करो, क्या प्लान है? हाँ प्लान, वो ही प्लान जो करने आए हो।
1: क्या करने आया हूं?
0: अब ये भी मैं बताऊं? ओह नाइस, क्लोरोफॉर्म। किडनैपिंग दिखाना चाहते हो? वेरी गुड वेरी गुड, आई लाइक दिस प्लान, सुपर। चलो जल्दी करो बेहोश। हाँ टाइम नहीं है इतना, तो दुल्हने भी नहीं शर्माती, ये भी मुझे करना पड़ेगा। मुझे ये बात बता, सुन सुना, जब कोई ऐसा करता है ना तो फौरन से बेहोश हो जाते हैं,
1: अच्छा
0: लेकिन रियल लाइफ में तो आनिया, तुम कौन हो?
1: मैं आयरन मैन। कुछ इस्त्री करवाना चाहिए आपने? कुछ सलवार, कुछ शॉल, कुछ कमीज, कुछ मीज।
0: आनिया कहाँ है?
1: आनिया मेरे बीबी इधर ही थी, बाहर गई होंगी, उनकी शादी है नहीं आज।
0: वेट,
2: तुमने अभी तक कपड़े इस्त्री नहीं किए? कमांड कमांड, जल्दी करो बॉय एंड मैम। ओ माय गॉड, आई बीन लुकिंग ऑल ओवर द हाउस फॉर यू। कैन आई बोरो यू फॉर अ मोमेंट प्लीज डार्लिंग?
0: हु आर यू?
2: आई एम द डिजाइनर, यू नो दीज फ्लावर्स, दे आर नॉट वर्किंग फॉर मी एट ऑल। यू नो द पर्पल इज सो आउट दीज डेज, देन एंड यू कैरी ऑन बॉय।
1: यस सर, यस सर।
2: ओ माय गॉड, आई लव योर नेल्स। आर दे रियल और देयर लाइक यू?

0: Winter.
1: सर,
0: क्या समझ रहे थे? ये छुपा कर ले जाओगे? निकालो बाहर। मुंह क्या देख रहे हो? बॉटल बाहर निकालो, एक पैक बना के दो और मैडम को मत बताना।
1: नहीं नहीं सर। अंदर बॉटल। सॉरी सर, सॉरी।
0: मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से।
1: जी सर।
2: बंजो,
0: तुम्हारे लिए बनवाया।
2: सीरियसली, तुम्हें इसकी पड़ी है? आनिया अपने रूम में नहीं है।
0: अरे यहीं कहीं होगी ना।
2: मैं सब देख चुकी हूँ। शी इज नोवेयर।
3: आनिया, आनिया, आन क्या ड्यूटी दे रहे हो? हाँ, जूम करो। व्हाट प्लेस इज दिस?
4: इन फ्रंट ऑफ द हाउस सर।
3: तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गो एंड कैच हिम, गो।

0: जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर रे।
1: क्लोज द गेट।
2: सो
1: क्लोज द गेट।
0: जल्दी पर
3: और रुक जा, नहीं मैं रुक जा, चलाई ना चलाई ना, बहुत रुक के रुक पता नहीं आ गया क्या, एक सेकंड को चला नहीं चला, क्यों नहीं चलाना, मरवाएगा क्या,
4: हमने बौजो की बेटी उठा ली है, हमने बौजो की बेटी उठा ली है, हमने बौजो की बेटी उठा ली है।
5: तो नहीं इजी हो जा, हमने क्यों उठा ली थी, अगली खुद उठने के लिए तैयार बैठी थी।
4: ये बात बौजो को पता है।
5: ख्याल तो नहीं, अरे
4: अगर हम बच जाए तो मुझे उठा देना।

0: ये तो ना जन्नत लग रही है ना दोजख, यानी बच गए।
1: ओए ओए ओए ओए, क्या बचाया मैंने?
2: सस्ते जेम्स बॉन्ड, बचा लिया के बच्चे, तूने बचाया नहीं, तूने मरवा दिया है। उफ, बॉन्जो को हमारा पता लग गया, अब हमें लग पता जाएगा।
1: ओ चार्ली चैपलिन, टोनी किधर जा रहे हैं?
2: ओ दिल का बोझ हल्का करने के लिए झाड़ी तलाश कर रहा हूँ।
1: तो इस बोझ का क्या करना है?
2: ये बोझ तेरा प्लान था, तू उठा।
1: उसका प्लान था, तू समझ नहीं रहा। अगली तैयार बैठी थी भागने के लिए। मुझे तो पागल लगती है।
2: पागल?
1: हाँ पागल है,
2: पागल
1: यार। शक्ल सही पा धनी सा नहीं था मगर ऐसा। आप उठ गई?
3: तो तुम मुझे पागल कह रहे हो?
2: ये
1: मैं आपको क्यों पागल कहूंगा?
3: बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
2: हैं?
3: पागल तो मैं हूँ, लेकिन तुम दोनों में कुछ कम नहीं हो। हाँ, क्या टाइमिंग थी तुम्हारी भाई?
1: भाई वाला मजाक नहीं।
3: मान गई तुम दोनों को भी, सारा को भी। वैसे ये लाल रुमाल वाले आइडिया किसका था?
1: लाल रुमाल?
3: अब डैड समझ रहे होंगे कि मैं किडनैप हो गई हूँ। और बाय द टाइम जब मैं ये ट्रिप खत्म कर चुकी होंगी, तो लड़के वाले ये शादी खत्म कर चुके होंगे। सुपर्ब, सुपर्ब। वेट, ये लो।
2: थैंक यू।
3: तो मैं अब चलती हूँ। थैंक यू सो मच ड्रीम डीलर्स। नहीं, वहां जाना था। बाय।
2: ओए होए,
1: ड्रीम डीलर्स?
2: ये हमें ड्रीम डीलर्स समझ रही है।
1: ये ड्रीम डीलर्स कौन है?
2: तुझे ड्रीम डीलर्स का नहीं पता?
1: नहीं, तुझे पता है?
2: गूगल कर लेते हैं।
1: कर, जल्दी कर। पता चला?
2: हाँ, अभी तो मैं लुमना को पोक कर रहा था फेसबुक पे, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया यार।
1: वो गई?
2: हाँ गई।
1: वो आरिया गई?
2: ये लड़कियां हमारे हाथ से चली क्यों जाती हैं?
4: अरे ऐसा भी नहीं है शहजादे, कुछ आ भी जाती हैं, चेक कर।
1: मुझे झप्पी देने आ रही है।
4: ओ ये झप्पी नहीं है।

0: अबे मिट्टी का क्या कर रहा है यार, मर पाएगा, निकल निकल।
1: किधर जाना?
0: मैं चौड़ी सड़क से जाता हूँ, तू पतली गली से निकल।
1: अच्छा।

0: आज मुझे पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। थैंक यू
1: जिग्नी।
0: टोनी डॉट शाह, रिमेंबर।

0: Thank you so much once again. Thank you.
1: नहीं नहीं, हमारा तो काम ही है जी. आपने भागना है, हमने बचा लेना है. Nice to meet you. मैं चलता हूँ. और टोनी चले?
2: क्या कर रहा है, लड़की को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं?
1: टेंशन नहीं लेनी, मुझे सब समझा की है. बस तीन तक गिन, हमें उठाने की जरूरत नहीं पड़नी, अगली खुद आएगी. जिगर गिन तो सही.
3: एक दो.
0: Excuse me.
1: जी
0: कॉफी पियेंगे?
4: मिल गए.
5: सर स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट है.
0: लेट मी गेस, किडनैप नहीं हुई, खुद ही भाग गई. स्मार्ट तो वो शुरू से ही है.
4: सोफी नॉट नाउ. ली
6: सर,
4: कीप सर्चिंग.
6: यस सर.
4: रिलैक्स बशीर, रिलैक्स.
1: टोनी ये कैसी लड़की है?
2: वो पीछे वाली ज्यादा बेहतर है.
1: और मैं उस पीछे वाली की बात कर रहा हूँ.
2: और वो
1: शादी वाले दिन घर से भाग रही. ये काम यूरोप में भी होता है?
2: वो लोग यूरोप तो आ जाते हैं पर देसी पना खत्म नहीं होता.
1: हाँ.
2: मैं वाहिद आदमी था जो अंदर बाहर टोटल यूरोपीय.
1: एकदम
0: कॉफीज.
1: मेहरबानी जी. थैंक यू.
0: मुझे पता है आप दोनों ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं कैसी लड़की हूँ जो शादी के दिन घर से भाग
1: गई. नहीं नहीं जी, हम ऐसा क्यों सोचेंगे कि आप कैसी लड़की हैं. वैसे आप कैसी लड़की हैं?
0: आपको कैसी लगती हूँ?
2: हॉट.
0: हाँ?
2: ये कॉफी बहुत हॉट है अभी.
1: नहीं जी, बल्कि हम तो ये बात कर रहे थे कि आपके घर से भागने की ना जरूर कोई जेन्युइन वजह होगी. नहीं तो बनता नहीं था.
0: मेरे पास आप दोनों के लिए एक ऑफर है.
1: बाय वन गेट वन फ्री. ऑफर ऑफर फेंके.
0: अगर आप दोनों मुझे श्रांतविल तक छोड़ आए और रास्ते में अगर डैड और उनके लोग आ जाए तो आई एम श्योर आप दोनों ने बड़ी अच्छी तरह हैंडल करेंगे. और इस डील के मैं आप दोनों को 5,000 ज़लोटे पे करूंगी.
1: देखिए जी, आपके डैड उनके लोग उनको हैंडल करना बड़ा मेहनत मजदूरी का काम है. हम ये पता नहीं क्या कहते हैं बॉस.
2: बॉस? देखिए जी, बहुत पेचीदा मामला है.
1: लेकिन बॉस आपने खुद ही तो कहा था के मुश्किल वक्त में जरूरतमंद के काम आना हमारी कंपनी की पॉलिसी है.
2: पॉलिसी? पॉलिसी भी एक चीज होती है कंपनीज में.
0: तो फिर मैं डील डन समझू?
2: बिल्कुल, मिलाए हाथ.
1: डन. चले जी.
0: चलो क्या वैसे बेहतर चलते रहेंगे.

0: कैसे देखते जाओगे क्या?
1: नहीं मैं तो
0: नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ना देखो, देख लो लेकिन सामने भी देखो। अंकल जो,
2: अंकल
0: कमिश्नर अंकल जो, मेरे डैड के दोस्त, मुझे लगता है डैड ने हमें सब कुछ बता दिया, वो मुझे लेने के लिए यहाँ पर आए हैं।
2: ये तो ये तो इधर नहीं हो सकती।
0: अच्छा तो फिर मुझे कहाँ होना चाहिए? नो
3: तूने यहाँ बिल्कुल खामोश रहना है और हर बात के जवाब में तूने सिर्फ जिनको या जिनको या जिनको या कहना है।
4: ये जिनको मारने की टेक्निक है।
3: और जिनको या यानी शुक्रिया।
4: अच्छा अच्छा अच्छा।
5: गुड डे ऑफिसर।
6: गुड डे। योर लाइसेंस प्लीज।
4: डोनी लाइसेंस पड़ा
3: है? पता नहीं।
4: क्या पता नहीं?
3: बनवाया नहीं है।
4: तेरा लाइसेंस बनवाया क्यों?
3: तस्वीर अच्छी नहीं आई थी। तेरा मेरा मजाक है?
4: तो अब क्या करना है?
3: Give him the license. He has the license. License है यार।
4: जिन को यार, जिन को
6: यार। Gentlemen, step out of the car.
4: No, license को यार।
6: Step out of the car.
4: को यार।
3: मर गए।
4: No, no, तेरे।
3: इधर पास आके खड़ा हो जा।
4: मनुष्य आदमी। वो इधर टिकी की तरफ जा रहा है। अब क्या करें? 500,000 का नोट पकड़ा।
6: Open the trunk.
3: Tiffy, I love you.
6: Messieurs, open the trunk.
3: And I'm sorry.
6: Papa go.
4: Sorry.
7: Uche kabir se go ab chego.
4: Uma pagi se.
7: Koi go, koi go.
4: Tony.
3: Anya.
0: Uncle Joe.

0: जिंदगी में कभी ऐसी लड़की देखी। मेरी तौबा है, तो तुम्हें डर ही लगता
1: है? जाओ,
0: किसी से नहीं।

0: Nie ma.
1: Pusto. Wywinęli się w mordę!
2: जवान आदमी के हाथ कट के तो उससे कुछ नहीं होना। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ये तो मेरा टेस्ट है।
3: इस पे
2: निशाना चेक कराओ। मेरा नहीं ख्याल टैलेंट है ही नहीं।
3: अच्छा
2: रहने देते हैं।

0: Chetty.
1: बात सुने यहाँ पे ज्यादा चिल्लर नहीं नजर आते?
2: चिल्लर
1: चिल्लर पुल्स पुल्स लाहौर में हम पुल्स को चिल्लर कहते हैं।
2: तुम लाहौर से हो?
1: हाँ।
2: तो लाहौरी तो भंगड़ा नहीं डालते?
1: एक तो ये जो आपकी बार वालों की बात है ना कि लाहौरी है तो भंगड़ा ही डालेंगे।
2: जी नहीं, माय डैड इज फ्रॉम लाहौर, सो टेक्निकली मैं भी लाहौर से हूँ।
1: अच्छा, वाली साहब लाहौर से?
2: हाँ।
1: कभी चक्कर नहीं लगा?
2: हाँ, एक दफा प्लान बना था।
1: फिर
2: क्या, हमेशा की तरह सोफी ने सब बर्बाद कर दिया।
1: सोफी?
2: माय स्टेप मॉम।
1: तो आपकी असल मॉम?
2: 8 साल की थी जब वो एक्सीडेंट में गुजर गई, और डैड को 8 दिन लगे तो उसकी शादी करने में। क्या सोच रहे हो? होता है लाइफ में।
1: नहीं, मैं ये सोच रहा था कि 8 का नंबर आपके लिए ठीक नहीं है।
2: तुम न्यूरोलॉजिस्ट हो, इसका मतलब है हाथ भी पढ़ लेते हो क्या?
1: ले हाथ छोड़े, मैं पैर पढ़ लेता हूँ।
2: ये लो, मेरा हाथ पढ़ के बताओ मेरा फ्यूचर क्या है। हाँ
3: ले जी, आपके लाहौर जाने की ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होने वाली।
2: अच्छा, कब?
3: यही कोई 8-1 दिन में।
2: अब तुम एक किट लगा रहे हो?
1: अच्छा बात सुने।
2: हाँ?
1: इधर कोई कढ़ाई शढ़ाई नहीं मिलती, मुझे बड़ी भूख लगी है।
2: तुम्हारा देसी खाने खाने का दिल कर रहा है?
1: बर्गर खा के ना इस्लामाबाद याद आ गया।
2: चलो मैं तुम्हें देसी खाना खिलाती हूँ। फिर रुको, पहले ये देख लूँ मेरा वॉलेट
1: किधर है।
2: टोनी
1: टोनी
4: ब्रो ब्रो सीरियसली मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ है ब्रो, वी आर लाइक ब्रोस। तुम पाकिस्तान में कहाँ से हो? चकवाल से हो? एक मिनट। अच्छा चल मार ले।
2: कैसा बॉस है तुम्हारा, मुश्किल वक्त में साथ छोड़ के चला जाता है।
1: मुझे क्या पता था।
2: तुमने खाना खाना है ना?
1: हाँ।
2: चलो
1: किधर?
2: डिनर।
1: पैसे?
2: हर चीज के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। What's so funny?
1: हर अमीर आदमी यही कहता है।
2: क्या?
1: कि हर चीज के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती।
2: अच्छा
1: जी।
2: चलो फिर देख लेते हैं।
1: यार क्या चीज है तुम? क्या सोच रहा होगा, खीर हमने खाई है, पैसे गोरे को देने पड़ गए।
2: आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ।
3: किधर लेके आ रही हो? तो गाना दे देना। क्या जगह है भाई?
2: आंखें खोलो। जिन लोगों को घड़ी पर 11:11 नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि कायनात उन्हें मैसेज दे रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो सही रास्ते पर है। और चाहे वक्त कितना भी मुश्किल हो, एक दिन वो अपनी मंजिल तक जरूर जा पहुंचेंगे।

0: बात पूछूं, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सब कुछ दिया, फिर उसे छोड़ के कहां भाग रही हो?
1: हाँ, सब दिया सिवाय उसके जम

0: क्या चाहती थी?
1: एक एहसास कि दुनिया में मैं सबसे ज्यादा उनके लिए जरूरी हूँ, उनका बिजनेस या उनका पैसा नहीं। और कभी कभी एक हग।
0: हग?
1: चप्पी।
0: चप्पी अच्छी चीज होती है।
1: कभी कभी यहाँ बहुत सर्दी।

0: सालों के पुत्र, ओ कब से ट्राई कर रहा हूं मैं, ओ कहां मर गए हो तुम दोनों खोते हो, ओ काम हुआ है कि नहीं?
1: काम हो गया भट्ट साहब। हानिया मेरे साथ
0: तीफे, वेरी गुड वेरी गुड। तीफे कब आ रहे?
1: जल्दी,
0: बस जल्दी आ जा तीफे। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ओए मेरा शहजादा, मेरा शहजादा।

0: शादी शुदा बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
1: पता नहीं क्या कह रहा है, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? और अगर मैं इस खिड़की से नीचे कूदता हूँ तो अंडे टूट जाएंगे, क्योंकि नीचे ट्रक जो खड़ा है अंडों का नहीं सरियों का। भागना मुश्किल है, इसी की सुन लेता हूँ।
0: समझे? अब बताओ
2: क्या
0: मेरी बेटी कहाँ है?
2: मुझे नहीं पता, कसम से मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ। पोलैंड का बच्चा बच्चा जानता है कि टोनी से सच्चा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता वो लोग कहाँ है।
0: ली, अपना फोन बंद करो, इट्स वेरी इरिटेटिंग।
3: सर मेरा फोन नहीं है ये।
0: दीफा, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। इसको बोलो जहां है वहीं रुके, तुम 15 मिनट में पहुंच रहे हो।
2: दीफा सुन सुन, तू है कहाँ?
4: ये शहर के अंदर घड़ियाल नहीं है, उसके सामने एक रेस्टोरेंट है, उसकी छत के ऊपर मैं।
2: अच्छा तू वहीं रह, मैं 15 मिनट में आया। हिलीना ठीक है?
4: ठीक है, इस दफा गायब हो
2: गए। ठीक है जी,
0: इसको भी साथ ले लो।
2: मुझे भी ले चलो, मैंने यहाँ क्या करना है? मैंने भी यहाँ बैठ के अकेले बोरी होना है। सब मिलके उनको पकड़ेंगे। हल्का

0: Then let Talhawar Tea serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talhawar Tea. 647-295-7861. Then let Talhawar Tea serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसिसागा रिजवे
1: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.

0: स्टारबक्स की चाय चाहिए होती है।
1: तुम्हें चाय पसंद है?
0: हाँ।
1: लाओ फिर, तुमने अभी मेरे बेबे की हाथ की बनी हुई गरम गरम चाय नहीं पी। कभी लाहौर आओगी ना, पिलाऊंगा।
0: तुम लाहौर ही रहते हो? मुझे लगा तुम यहाँ मूव कर गए।
1: नहीं, मूव मैं क्यों करूंगा यहाँ। पता है, लाहौर शहर का रहने वाला बंदा ना दुनिया में और कहीं नहीं रह सकता। वो तो टोनी किसी काम से कभी बुला लेता है तो मैं आ जाता हूँ और आके काम करके चला जाता हूँ। टोनी से याद है, टोनी मिल गया है।
0: हाँ,
1: बस पहुंचने वाला है।
0: Great.
1: तो फिर तुम अपनी फ्रेंड के पास और मैं अपने शहर लाहौर अपनी बेबे के पास, हैं? चलें?
0: लाहौर
1: नीचे।

0: बर्बाद कर दी तूने फिर।
1: और तो ठीक भी तो मैं कर रहा हूँ यार।
0: ठप ठाती तूने ट्रक
2: के। लड़ो मत अब, छोड़ो उसे, चले।
0: किधर चले? ट्रक खराब हो गया है, कैसे पहुंचेंगे?
2: देखो जी वो सल पत्रश तेल को समा पत्रश
0: तोनी तर्जुमा।
3: इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी।
0: तर्जुमा
4: मंजिल कुछ नहीं होती, सफर ही सब कुछ होता है।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, लड़की में मसाले पूरे हैं टोनी।
4: मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, लेकिन तू जो सोच रहा है ना वो कभी नहीं हो सकता।
0: सोचने तो दे।

0: पहुंच गए। ये बॉरिस बेकर से कहें दरवाजा ही खोल दे
1: जल्दी।
2: आप
3: सारा नहीं है, आप तो सारा कुछ यशी सिस्मी यजस्त बोया हसी ते पसी आए
2: सारा। अगर ये लोग ना होते ये ना होता तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाती।
0: अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, ये खरिया से पहुँच गए और क्या चाहिए। हैं जी टोनी चले। टोनी चले
2: बाय
3: बाय।
0: अच्छा अच्छा देखता जा देखता जा देखता जा देखता जा देखता।
2: कॉफी पियोगे
0: या लस्सी नहीं मिलती? गुरु ने भी लाइफ सेट की हुई है।
3: हेलो व्हाट्स अप।
0: हाला लाला
2: ओ शिट है आन्या। वाओ आन्या यू लुक लवली।
1: थैंक यू
2: आंटी। आरा बहुत हॉट लग रहा
4: है। वेल वेल वेल लुक हू जॉइंड अस मिस बिजी।
2: या आई चेंज माय माइंड। वेल आई ब्रॉट सम कंपनी मीट माय फ्रेंड टीफा एंड टोनी।
4: टीफा ओ लाइक क्वीन लतीफा।
0: लतीफा ये कॉल मी जोक मजाक उड़ा रहा है इसका सन्ना फाड़ दूं।
2: मजाक कर रहा है मजाक कर रहा है। आंटी प्लीज बी नाइस टू हिम ही इज विद मी
4: यू नो इट्स जस्ट जोकिंग।
0: समझे इट्स ओके।
4: वेलकम अबोर्ड माय फ्रेंड।
0: थैंक यू।
4: कम ऑन लेट्स पार्टी। कम ऑन।
5: थैंक गॉड तुम इसे बचा के यहां ले आए। पता है मैंने इसे पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। अंदर से मर रही है इसके साथ होने के लिए लेकिन कभी शो नहीं करेगी पागल। चले
3: मजा आ रहा है। तू कुछ अजीब उदास उदास सा है।
4: My friends were teasing me to say that you weren't going to come. Yeah. I knew you were going to make it.
2: Wow, really?
4: Yeah, I knew it all.
3: गोरे को देख कितना टाइट है और तू तीफे तेरे तो फीते भी खुले हुए। कुछ कर कोई गेम बना।
4: Guys, guys, everyone, attention please. Thank you all for coming all this way to make this a special day for me, especially you, Anya. Here's to these beautiful stars, and may they shine for us all, forever. Cheers, everyone. Cheers. And now to conclude this beautiful night, shall we be enchanted by a secret, talented singer? Sara told me you had a beautiful voice.
2: No, no way. Yeah. Please, no, no. I can't, no.
4: Come on. You can do it. You're perfect. Go on. Please.
2: Okay.

0: Tiefe, Tiefe, Tiefe. Ist mir schon okay? Was ist da, dass du mir jetzt hier? Dil pe koi hold nahi aur mind pe control nahi. Chachavish, bahut ho gaya hai. Jaldi se jaake is ladki ko kar handover aur is sare khel ki kar de sutre tarike se game over. Hain? Chal.
1: Iski baaton mein mat aai Tiefe. Paisa sab kuch nahi hota. Asal taqat pyar.
0: Pyar. Pyar. Pyar pyar karke sab shaadi kar lete hain aur phir aankhon mein kasone dekh kar rote hain.
1: Pyar नसीब वालों की किस्मत में होता है।
0: अब प्यार देते मैं।
2: अब बात सुने, ये प्यार और पैसे की मगजमारी तो थी रेडी। मैं कह रहा हूँ कुछ खाने को ना, मुगवाले बड़ी भूख लगी है।
3: मुझे तो डर लग रहा है, डर। ये सब ठीक नहीं है।
2: ओह यार।
0: Tiefe, सब ठीक हो जाएगा अगर तू प्लान के मुताबिक।
2: नहीं।
1: Tiefe, अपने दिल की सुन Tiefe, अपने दिल की।
2: बड़ गए यार थिटिटी भाई
0: दिल यानी हार्ट द हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स व्हिच पंप्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ये तेरा हार्ट जिसे तुझे की बात लगा के क्यों यार
1: Tiefe ये तुझे फंसा रहा है
0: ओ तुझे फंसा रही है Tiefe
3: ओए ये कर बस के कुछ
2: ओए टिकटे मंगवा लूं
0: भूख लगी है लगता है कि आज तो टिक्के बनाने ही पड़ेंगे
2: तड़ी खैर हुए
1: खून खराबे से कभी कुछ मिलता नहीं लेकिन हम प्यार करने वाले प्यार की खातिर जान दे भी सकते हैं
2: चल
1: और ले भी
0: मैं तनु
2: क्या रे खाता खोल दो मैंने भूख लगी है
3: मैंने कहा था ना कुछ होने वाला है अब क्या होगा
1: एक मिनट मिनट मिनट भाइयों हम सर एक ही हैं हैं लड़ने मरने की जरूरत नहीं है मैं कहता हूँ आराम से बैठ के बात कर लेते हैं कोई मसला नहीं है

तीफे। मैंने क्या कहा था, ये लव शव सब बकवास है, बस पैसे से पूछती प्यास है। चलो शाबाश, उठ लड़की को निकाल और दिखा दे अपना कमाल। चलो शाबाश, उठे।

0: खूबसूरत है ना?
1: हाँ, बहुत।
0: तुम ये सब छोड़ के चले जाओगे?
1: नहीं, ये साथ रहेगा मेरे हमेशा।
0: मैं मिस करूंगी ये सब।
1: मिस तो मैं भी करूंगा।
0: लाहौर कैसे?
1: जैसे इस आसमान के कई रंग हैं ना जी, वैसे लाहौर शहर के भी कई रंग हैं।
0: मुझे भी देखने हैं वो रंग।
1: देख नहीं सकोगी।
0: क्यों?
1: क्योंकि महलों में पली हुई शहजादियां सड़कों पे पड़े उन भूखे नंगे बच्चों के झुलसे हुए रंग नहीं देख सकती, ना समझ सकती है।
0: मैं समझना चाहती हूँ।
1: बारह साल का था जब मेरा प्यो मुझे और पेपे को छोड़ के दुनिया से चला गया। हमारे लिए तेला तक न छोड़ के गया, कह गया इज्जत छोड़ के जा रहा हूं। बंदा पूछे अब्बा जी जब भूख लगती है ना तो इज्जत नहीं डाली जाती मुंह में, रोटी डाली जाती है, और रोटी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। वो तो समझ नहीं सके, लेकिन मुझे बड़ी जल्दी दुनिया की समझ आ गई थी कि यहां पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है। समझ आई?
0: घर नहीं जाऊंगी।
1: तो फिर कहां जाओगी?
0: लाहौर। लाहौर ले चलो मुझे अपने साथ।
1: सोच लो।
0: सोच लिया।

0: आनिया कहाँ है?
1: पता नहीं।
0: अंदर चेक करो।

0: एक मिनट
1: निकल बाहर
0: आराम से। ऑस्ट्रेलियन का वो लेदर की जैकेट फट जाएगी देख के।
1: आनिया कहाँ है?
0: देखो हम एक मौजूद मुल्क में हैं। यहाँ पे ऐसे मामला ऐसे तय नहीं होते। बराबर में कॉफी शॉप है, वहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। वहाँ पे मुझे भी मौका मिल जाएगा और आपको कैपचीनो।
1: शट अप।

0: सुकून है यहाँ पे, कितनी खूबसूरत जगह है। लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, एक लम्हे आप कहाँ और दूसरे लम्हे आप कहाँ, और वो भी तुम्हारे साथ। Congratulations, Mr. Tifa. You have successfully kidnapped me.
1: Congratulations! Oh, meri putri! Welcome to Lahore.
0: Uncle, but aap? Aapko kaise pata chala ki main...
1: Oh, kamal baat karti hai tu hai. Oh, mere shehar mein aayi hai. Aur mujhe hi pata nahi chalega. Hai, abhi Tifa? Oh, tu kya rusi phuphi ki tarah khada hai? Tune ise bataya nahi?
0: Aap dono... एक दूसरे को जानते
1: है? जानते ओ, ये अपना बरखुरदार है, और मेरे सारे बड़े बड़े काम जो है ना, वो यही तो करवाता है, और तुझे भी तो वहाँ से यही लेके आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए कितनी प्यारी हो गई है मेरी पुत्री है, वो इतनी बड़ी हो गई है मेरी धी रानी।
2: वैसे आप ना तस्वीरों से ज्यादा ब्यूटीफुल है। शामली
1: ओए बटके के मुंह वाले, और ये आंख मटका बाद में करी। अल्लाह पुत्री घर चलते हैं, तेरी आंटी ना तेरा वेट कर रही है, सारी तैयारियां मुकम्मल है। हाँ
0: तीफे, अंकल क्या कह रहे हैं?
1: और ये बोलता कम है मगर काम ज्यादा करता है ये। और इश्वाक और इधर ला, इसे लड्डू तो देना तीफे को। ले भाई तीफे तू भी गिन ले, पूरे है और नवे नकोर नोट लेके आया हूँ खुशबू वाले। ओ पकड़ ले, शर्मा क्यों रहा है, तेरे ही है। ओ भाड़ ले भाड़ ले भाड़ ले बेटा, चल।
3: तीफे तू आ गया, तेरा काम हो गया।
4: बेबे मुझे आज एक चीज सच सच बता, मेरा बाप कैसा आदमी था?
3: अरे तू आज फिर मुझसे ये बात क्यों पूछ रहा है? खैर तो है,
4: बता मुझे तू खुश थी उसके साथ?
3: बेहद।
4: पर उसने तो तुझे कभी कोई चीज ला के नहीं दी।
3: हाय जहाँ इतना प्यार हो ना वहां किसी चीज की जरूरत नहीं होती।
4: पर वो हमारे लिए कुछ तो छोड़ जाता बेबे, मैंने तुझे सारा बचपन लोगों के बर्तन मांजते हुए देखा है।
3: ये तू कैसे कह सकता है कि वो कुछ छोड़ के नहीं गया? तूने मल्ले में अपनी माँ की इज्जत देखी है? ये सब तेरे बाप की वजह से। पुत्र पैसा कमाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन इज्जत कमाना देख पैसा और इंसान सब चले जाते हैं, लेकिन अच्छे काम हमेशा रह जाते हैं, और ये किताबी बातें नहीं है।
4: पेपे।
3: पुत्र
4: गलती हो।
3: देख तीफे मैं तेरी माँ हूं, मैं सब जानती हूँ, वो गलतियां इंसान से होती हैं। आखिर में सही वही होता है जो गलत को सही कर दे, और मुझे पता है तू यही करेगा।

0: ले कमाल है, एक तो जान बचाई ऊपर से।
1: बस आया तो तुमने ही कहा ना मुझे, पागल थी मैं, लेकिन अब नहीं।
0: देखो मेरी एक दफा बात सुन लो।
1: नहीं, अब तुम मेरी बात सुनोगे, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो मैं चीखे मार मार के माँ बाप के लोगों को इकट्ठा कर लूँ।
0: मार चीखे, मारो, बचाओ, बचाओ, मारो।
1: हाँ, मैं मर गई।
0: मारो।
1: तुमसे बड़ा कमीना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा।
0: ओ, मैं कमीना, मैं कुत्ता, लाखती लानत है मेरी शक्ल पे, मानता हूँ। लेकिन तुम भी मेरी बात आखिरी दफा मान लो, मैंने तुम्हें फंसाया ना, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा।
1: क्यों क्यों मानू मैं तुम्हारी बात, बोलो

0: दफा फिर सोच लो। पागल हूं मैं?
1: सोच लिया, मैं भी पागल हूं। चलाओ।

0: जी इधर आओ ना।
1: अजी अजी।
0: और मैं कह रहा था अब्बा जी मेरी आनिया आनिया
2: ये क्या किया तुमने? तुमने भागी कुड़ी से आती?
3: मुझे क्या पता था इतनी आसानी से चल जाएगी। तुमने खुद ही तो कहा था गोली चलाओ।
2: तो मैं तो मुझे कहूंगा तो वो करेगी।
3: हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं।
0: ओए आनिया पुत्र दरवाजा खोल। ओ सब खैरियत है ना? ओ दरवाजा खोल। ओ प्रोफाइल तो नहीं बना रहा? बनाइए। अब्बा मैं तो शादी से पहले ही रणवा हो गया।
4: बुआ तोड़।
0: मैं?
4: ओए और की तरह जाओ पन बुआ। ओए आनिया पुत्र कितने? ओए आनिया
0: तो उधर मरो उधर जाके लगो नू डरा देना। और खिड़की चे कितरे छाल तेरी मार दी। अल्लाह बोलू कितरे कितरे।
5: ओ बट सब खैरियत
0: है। कुड़ी नस गई है।
5: हैं की मतलब?
0: और कुत्तिया नस गई है।
2: ओ मतलब की है रन?
0: हाँ
5: ओ बार साहब बहुत सही है पर किदे नाल?
2: अब्बा मैनू लगदा टीफे नाल लसी है।
0: ओए टीफे नाल कुड़ी नस गई है।
5: हैं ओ किदे नाल नस गई है?
0: ओए बोली दिया तन्नू सुनाई नहीं दे रहा टीफे नाल कुड़ी नस गई है।
6: इंज कौन आ
5: एदा मतलब फिर रोटी ना खोलिए?
0: ओ फोड़े फोड़े नस गए ने ओए फोड़े फोड़े।
2: घोड़े होंगे सन चल ना
0: तेन भी बुलाओ।

0: और टेढ़ी मांग निकालने से कोई काउंसलर नहीं बन जाता,
1: और नीले पीले सूट पहनल कोई काठा अंग्रेज नहीं बन जाता।
0: किसी की उठाई भी बेटी को अपनी बेटी नहीं बना सकते। बुला उसको।
1: ग्लैटन के ग्लैंड फिकस।
0: मैं कह रहा हूँ बुला उसको।
1: ओए बुलाते मैं उन्हें लवा, पर ओ नस गई है।
0: और क्या मतलब है नस गई है?
1: ओए एंडे सार बार रह के तू अपनी जुबान ही भूल गया, ऐसा मतलब है कि शी हैज रंद,
2: वो भी तीफे के साथ।
1: हेलो
0: ते मेरा मुंह की तकंडे हो, और फड़ो नू
3: स्टार्ट की नहीं हो रही भाई का
4: क्योंकि पता मैं

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: Como कहने को
1: चलो
2: बड़ो बड़ो बड़ो बड़ो बड़ो ओए ओ बिल्लू किथे बिल्लू ओ बिल्लू ओ पेडुआ गड्डी च बे
0: दादा दा बस करे
3: बरसा दिखो भाग रे
0: कितना तू तेज है
1: चलो
2: ओए शकला की बेखन दे ओ ओ फड़ो एनू
0: ओ चलो
2: बात दिवे आ
4: ओ चलो मत मेरी मत

0: हम कहाँ जा रहे हैं?
1: कहा था ना, फसाया भी मैंने, निकालूंगा भी मैं। जल्दी करो,
2: कुत्तू दे पिछाड़,
1: जल्दी करो।
2: ओए यार, कितने चला गया छलेटा जिया।

0: خوشو. स्माइल करती रहना, बहुत अच्छी लगती है.
1: ओह माय गॉड, अन्या,
2: एंडी, देखो ये सब क्यों?
0: बस सोने लफ्जों में याद रख लेना, यही मेरी कमाई है.

0: लतीफे, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरा एतबार ना तोड़ी।
1: क्या करूं बट साहब, अब तो टूट गया है।
0: ओए ओए लता, बांधे लतीफे दिया।

0: ये क्या हो रहा है?
1: आनिया पुत्र, वो कितने गई आनिया?
2: आनिया, सीरियसली, ये क्या बचपना है? तुमने तो परेशान करके रख दिया है। ये उम्र है मेरी भाग दौड़ करने की? ऐसा नहीं करते बेटा, चलो चलो घर चलते।
1: पहली दफा तेरे काठे अंग्रेज बाप ने ना ठीक बात की है, चला मेरा पुत्र घर चले।
2: और बट ड्रामे बंद कर अपने, चलो बेटा, इट्स टाइम टू गो होम।
1: ओए अब इसका घर यहाँ है, ये हमारे साथ जाएगी।
2: ओहो, तुम्हारे इन चोंचरों को बर्दाश्त करने का स्टेमिना मुझ में खत्म हो गया। बट चलो आनिया, अब यहाँ से तुम्हें भगाने के लिए कोई नहीं आने वाला।

खुश रखे।

0: बाबा जी डंडा।
1: और चलो चल
0: बाबा जी डंडा दे दो, 2 मिनट का काम है।
1: ले फिर
0: ताड़ी मेहरबानी।

0: आनिया तुमने मेरे साथ जाना
1: है। ओए उधर मौलवी साहब इंतजार करन दे रहे, तू मेरे नाल चल।
0: आनिया मेरी बेटी है, मेरे साथ जाएगी।
2: ओ मैं कह रहा हूँ ना मेरे साथ।
0: यार तुम कैसे कह रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ मैं इसका बाप हूँ।
3: बस करो यार, कब तक लड़ोगे यार? और भाई साहब जाने दे रहे
0: हैं यार, कह रहा हूँ
4: बस कर दो, चुप कर जाओ। किसके साथ जाऊं मैं? आपके साथ जाऊं डैड? बताइए। नहीं, आपके साथ चलती हूँ मैं। तुम्हारे साथ जाऊं? तुम्हारे साथ या फिर मैं आपके साथ चलती हूँ? हाँ
5: हाँ जी, व्हाई नॉट। मोहम्मद आसफ फ्रॉम पत्तू की।
4: लो जी, एक और साहब लाइन में खड़े। कोई मुझसे पूछेगा कि मैं किसके साथ जाना चाहती हूँ? मैं कोई चीज हूँ क्या?
5: हाँ चीज तो है।
4: आप सब मर्द अपने आपको क्या समझते हैं कि औरत की अपनी कोई मर्जी नहीं होती? क्या कभी किसी लड़के की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की जाती है, या फिर ये सब लड़कियों के साथ ही होता है?
6: पॉइंट तो बिल्कुल सही है लड़की का, पूछना तो बनता है। चलो हम पूछ लेते हैं जी, चलेगी?
0: और खबरदार, ये मेरी बेटी है। और भट, ये कौन है?
1: वो
6: दीवे पुत्तेरे पैगाम लेके आया था ना, अब जवाब सुन मेरा जरा।
1: ज्यादा नहीं करूंगा ना।
0: चंड का जवाब?
6: चंड से
0: चल। शाबाश, इकरारी लगा भट्ट साहब को। चल बड़ा ही बेगैरत है तू भाई। अपने शेख को बहुत हल्का लिया है तूने।
7: हल्का तो आप ले गए शेख साहब, टीर तो मैं हूं ये आपको याद रह गए, लेकिन बगैरत नहीं हूं ये आप भूल गए। चांडी चाहिए ना तो चांडी मारूंगा और करारी मारूंगा, लेकिन पूथा होगा आपका।
0: ओए!
6: अभी तो मैंने तुझसे अपने पैरों की डिमांड नहीं की, 3 गुना ज्यादा।
0: विद चपेड़
6: नहीं तो
4: डैड, मुझे नहीं जाना डैड।

Oh, my God.

0: इस पर कहाँ उठा ले जा रहा है।
1: जादू कर
0: पूछेगा नहीं,
1: सच से पूछे बगैर कभी कोई कुछ कर सकता है? बोल कहाँ चलेगी?
0: जहां तू ले जाए।
1: सोच ले।
0: सोच लिया।
1: पागल हूं मैं।
0: पागल तो मैं भी हूं।
1: लव करेगी मेरे साथ?
0: तू करेगा
1: ऐसा?

लेकिन एक शर्त पे, अगर तू मुझे रोज अपने हाथों से आलू चाट बना के खिलाएगा, कढ़ाई गोश्त और क्या कहते हैं वो, भुने हुए करेले, तो करूंगी। खिलाएगा दीफे? दीफे? दीफे? दीफे उठ, दीफे, दीफे, तू जो कहेगा मैं मान लूंगी, तू जहां लेके जाएगा मैं चली जाऊंगी, लेकिन अभी उठना, दीफे उठ, दीफे।

0: हाँ जी, क्या कहा था जी मैंने, ये दुनिया बड़ी जालिम शह है जी, ना जीने देती है ना मरने। जब जिंदा थे तो मरने मराने की बातें, मरने को आए तो उठोए उठोए की आवाजें, बंदा चाहे तो किधर जाए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है जी। बस इंसान को अपना दुनिया में आना तो याद रहता है, पर चला जाना भूल ही जाता है। पर चलो, मेरा जाना इन सबको करीब ले आया, और क्या चाहिए। किसी स्याणे ने एक बारी कहा था कि वक्त सबसे बड़ा मरम होता है, टाइम पास हो ही जाता है। लो जी, देखते ही देखते भट्ट और बशीरे की दोस्ती फिर से लाहौर शहर की जान बन गई। जिथे दिखोती उथे आन खलोती, सच इज लाइफ जी। वो अंग्रेजी में कहते हैं क्यूट। और अपना बिल्लू भट्ट, बिल्लू भट्ट को भी उसकी जोड़ी मिल गई, उसका भी तो हक बनता है ना जी। और उसे देख के खालदा खुश हो गई, हैं जी हैं जी। और अपने टोनी भाई, टोनी भाई को सारा नहीं, सारा कुछ मिल गया। रह गए बेबे और आनिया, बड़ा मैं दोनों से प्यार करता हूं जी। सोचता हूं अब भी कहीं बैठे मेरा इंतजार करते होंगे, मेरे हाथ का बना हुआ खाना मिस करते होंगे, और सोचते होंगे जी कि आप सब कितनी जल्दी मेरी बातों में आ जाते हैं।
1: ले जी, गर्मा गर्म तिके तैयार है। ले क्या हुआ, आप लोग तो ऐसे बैठे जैसे को मर गया हो।
2: भूख से तो मारी गए है ना।
1: जल्दी से ट्राई करें अभी। ले बट, ये मुर्गी का पट ट्राई कर।
2: थोड़ी जी और पा दे, डाल डाल।
3: बनाया एक बात सुन। एक जॉब आई।
1: क्या?
3: मोरक्को में एक आंटी को उठा रहे।
1: भारी तो नहीं है?
3: चेक तो कर।
1: सलाद खाओगी?
4: लगवड़ी सोनी नहीं है आप।
5: ये ले।
4: थैंक यू। बाजी भैन है मेरी।
1: इधर आओ, तुम्हें एक चीज दिखाओ।
5: क्या?
1: वो देखो।
5: This is so cool, Deepak.
1: Check किया?

0: Then let Talha serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti, 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
2: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.
3: Rah Bakers and Sweets, 60 saal se aapke haseen lamhon mein shamil, khushiyon se bhare meethe zaike, nafasat aur quality mein sabse behtar. Khalis ajza se taiyar karda mithai, cakes, biscuits and snacks. वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।

0: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
1: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जौहरी हथियार हासिल कर लिए तो न इसराइल और न ही मशरक वस्ता बचेगा। उन्होंने कहा कि ईरानी बहरिया के पास मशीन गन लगी छोटी कश्तियों के सिवा कुछ नहीं बचा। उधर ईरान का कहना है कि आबनाए हुर्मुज में कश्तियों पर अमरीकी हमले में 5 शहरी जां बहक हुए। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि ईरानी अफवाज ने मुत्तहदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया और किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदारा ने इनकलाब का यह भी कहना था कि आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए ईरानी तजवीज करदा रास्ता मंतखब न करने वाले जहाजों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग का जारहाना मरहला मुकम्मल हो चुका है और तेहरान को मुजाकरात की मेज पर लौटना चाहिए। उधर अमरीकी वजीर जंग पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अमरीका लड़ाई नहीं चाहता लेकिन ईरान को आबनाए हुर्मुज बंद करने की किसी सूरत में इजाजत नहीं देगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराकची मंगल को चीन जाएंगे। सऊदी अरब का कहना है कि खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की कोशिशों के बाइस ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत में कुछ पेशरफ्त देखने में आ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले मिजाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में इंतखाबी शिकस्त के बाद ममता बनर्जी ने वजीर आला के ओहदे से मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया। इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान का इलाज फैमिली की मौजूदगी में करवाया जाए। और आज रात से गैस की कीमत में 10 सेंट फी लीटर इजाफा हो जाने का इम्कान। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
2: खास खास खबरें जुबैर दीन साहब आपके लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 203.50 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान में हर बैंक में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर अकाउंट नहीं है कैश बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए। gondalbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 203.50 रुपये। कॉल कर लीजिए 905-306-0000। मंगल के दिन ऑल द सॉल्यूशंस में सिद्दीक साहब हमारे साथ हुआ करते हैं। राइट विंडो फोर्स से सवानु साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे। ग्लोबल एडवाइजर इंक से नागपाल साहब आज के दिन हमारे साथ होते हैं। कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल्स आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब। और भी कुछ मौजूद होंगे हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सब कुछ सुनने के लिए आपको हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। मेरे अच्छे बैर सामिन, शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस जमा करती हैं वो सब का सब शहद नहीं होता, इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा शहद बनता है। शहद की मक्खियों को 1 पाउंड शहद के लिए 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है, इसलिए मक्खियां तकरीबन 30 लाख उड़ाने भरती हैं और इस दौरान वो मजमूई तौर पर 50,000 मील की मसाफत तय करती हैं। रस जब मतलूबा मकदार में जमा हो जाता है तो फिर उसके बाद शहद साजी का अमल शुरू होता है। शहद अपने इब्तदाई मराहल में पानी की तरह रकीक होता है, पतला होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखों की तरह इस्तेमाल करके फाजल पानी को भाप की तरह उड़ा देती हैं। जब ये पानी उड़ जाता है तो उसके बाद एक मीठा सा सयाल बाकी रह जाता है जिसको मक्खियाँ चूस लेती हैं। मक्खियों के मुंह में ऐसे गदूद होते हैं जो अपने अमल से इस मीठे सयाल मादा को शहद में तब्दील कर देते हैं। अब मक्खियाँ इस तैयार शहद को छत्ते के मखसूस तौर पर बने हुए सुराखों में भर देती हैं। ये सुराख दूसरी मक्खियाँ मोम के जरिए हद दर्जा कारगरी के साथ बनाती हैं। मक्खियाँ शहद को इन सुराखों में भरकर इसको डब्बा बंद गजा की तरह एहतमाम के साथ महफूज कर देती हैं ताकि आइंदा वो इंसानों के काम आ सके। इस तरह बेशुमार एहतमाम जो शहद की तैयारी के किए जाते हैं, खुदा ही ऐसा कर सकता था। तिलसमाती तौर पर चाहता अल्लाह रब्बे करीम तो अचानक शहद की नहरें बहा देता, पानी की तरह शहद का चश्मा बहा देता, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। खुदा हर किस्म की कुदरत के बावजूद शहद को असबाब के एक हरदा दर्जे तक कामिल निज़ाम के तहत तैयार करना चाहते हैं ताकि इंसान को भी सबक हासिल हो। वो जाने कि खुदा ने दुनिया का निज़ाम किसी ढंग पर बनाया है और किन कवानीन और आदाब की पैरवी करके खुदा की इस दुनिया में कोई शख्स कामयाब हो सकता है। शहद की मक्खी जिस तरह अमल करती है, इस लफ्ज़ में मनसूबाबंद अमल कहा जाता है, इसमें एक प्लानिंग मौजूद है। यही असूल इंसान के लिए भी है। इंसान भी सिर्फ उस वक्त कोई बामानी कामयाबी हासिल कर सकता है जब वो कोई प्लानिंग करे, تاکہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے. منظم اور منصوبہ بند عمل اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا واحد یقینی ذریعہ ہے, شہد کی مکھی کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: Greater Pakistan, Toronto, CMR 101.3 FM. Studios mein aap dekhe number 416-593-0003. 24 ghante mein nishat aap Greater Pakistan.fm pe sun sakte hain. Facebook mein hamara page Greater Pakistan Toronto se bhi like kijiye. Tune in bhi hamara program available hai. Phone ke zariye sunna chahein 647-506-0003 pe call karke hamara program sun sakte hain. Hamara television channel Toronto 360 TV tamam IPTV boxes, Jadu Bol Zone bus ke saath saath Apple TV, Amazon Fire TV, Roku TV ke saath saath Tubi app ke through Rogers pe bhi hamara nishat dekh sakte hain. हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 टीवी. एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए हमारी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. दो चैनल टोरंटो 360 टीवी और टोरंटो 360 इंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की ऑनलाइन निशात भी 24 घंटे हमारी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं. आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी जरूर किया कीजिए. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की निशात CMR 101.3 FM तो आप सुनते ही हैं, लेकिन हमारी निशात आप टेलीविजन पर देख भी सकते हैं. टोरंटो 360 टीवी पे हमारी नशात आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इसके साथ साथ ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं. हमारी वेबसाइट toronto360.tv पे भी देख सकते हैं. रियल एस्टेट के हवाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए. कॉल तला भट्टी 6472957861. घर खरीदना, बेचना, लीज करना, साइन करना, नए प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना हो कॉल कर लीजिए. अपना ईमेल रेसिपी टेस्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में से ऐड कर लेंगे. जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिक से डिटेल आपको मिलती रहा करेगी. कॉल कीजिए, अपना ईमेल टेस्ट कर दीजिए. तला भट्टी 6472957861. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ.
1: You are listening to Radio Pakistan.

बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। कॉल टीम भट्टी 416-300

0: आई सी सी इमिग्रेशन की आर डी एम डी और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कार ग्रुप और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। इट्स 905-461-2424। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। It's 416-710-6777.
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है TV और appliances कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, Brampton TV and appliances जहाँ special sale चल रही है, TV, fridge, washer, dryer, kitchen range और microwave सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही reasonable price पे।
2: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 224 का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस .ca।
0: अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009। It's 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aapki, guarantee hamari.
4: Lisa ki yaad nahi aayi tujhe, Jassi? Jassi ko chhodiye, kyunki Lisa's Cosmetics laaye hain Spring Warehouse Sale khas aapke liye. Perfume, skincare, makeup, hair care, designer sunglasses, chocolates, aur bhi bahut kuch with mega savings up to 80% off. Durandar deals on all your favorite world famous brands jaise Tom Ford, Versace, Armani, Azzaro and more. Aapko aana hai 135 Commerce Valley Drive, East Markham, Highway 404 aur 407 ke behad kareeb and close to 401. Sale chalegi April 18th se May 10th tak, perfect for Mother's Day gifting. To zyada swag at kam price, sirf Lisa's Warehouse Sale par, visit lisascosmetics.com.
0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा। एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। कर्ज इंसान का जहनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577। जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी

0: आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577।
1: जी हाँ, 416-671-0577 एम सदीक साहब के रब्ते नंबर है, ऑल दैट सॉल्यूशंस। बताना खास, आप कर्ज के बोझ तले आ गए हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, कॉल कर लीजिए। मैक्सिमम कर्ज माफ़ करवा देंगे, आसान इकसाद करवा देंगे आपकी। 416-671-0577 रब्ते का नंबर है। बहुत अच्छा फीडबैक हमें सदीक साहब का मिलता है, खुश आमदीद कहेंगे। सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम अरशद भाई, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, खैरियत ठीक ठाक हैं?
2: अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक।
1: हाँ सदीक साहब, ये अक्सर जाहिर सवाल करते हैं कि इम्पोर्टेंट, एक शख्स जब कर्ज के बोझ तले आता है, परेशानी जाहिर उसकी बहुत सारी रहती है, वो इधर उधर दोस्तों से पूछता है, पहले उनके मशवरे पे अमल करता है, और बाज़ुकात ये होता है कि वो मशवरे उनको प्रोफेशनल नहीं दिए जाते। थोड़ा सा ये बताइएगा कि फर्स्ट मीटिंग जब आप करते हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और उसमें क्या कुछ जो है उसमें तय हो जाता है?
2: इसमें पहली मीटिंग इंतहाई इम्पोर्टेंट होती है। जितने मैं उनकी फाइल क्लाइंट की रिव्यू करता हूँ तो उनको बताता हूँ कि कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, कौन सा ऑप्शन आपको सूट करेगा, वो क्यों सूट करेगा, क्या आपको रिलीफ लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर रिलीफ लेना है तो कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा, और अगर नहीं लेना तो कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि एटलीस्ट आपका पैसा ज्यादा इंटरेस्ट में जाया ना हो। जो मैंने पिछले भाई पिछले 26-27 सालों में देखा है कि ज्यादातर लोग फैमिली फ्रेंड से मशवरा कर लेते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता कि सिस्टम काम कैसे करता है, और वो इतना उनको डरा देते हैं कि उनमें हिम्मत ही नहीं होती कि कहीं किसी कहीं कॉल करें और एडवाइस लें। वो घर बैठे पेमेंट करते रहते हैं और हमारे पास उस वक्त आते हैं जब वो काफी सारा पैसा इंटरेस्ट में जाया कर चुके होते हैं। ये एक लीगल प्रोसेस है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर डेट में आप आ गए हैं, चाहे वो छोटा कर्ज है या ज्यादा, आप अपने क्रेडिटर से रिलीफ ले सकते हैं, और ये आपको आपने आपकी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है आपके ऑप्शन के, कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट करके आप रिलीफ ले सकते हैं, जिसमें हम आपको गाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम कर्जा माफ हो जाए और बाकी जो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं आप किस्तें वो आप पे करें उसमें।
1: नंबर टू कॉल इज 416-671-0577, 416-671-0577। कानून ने तो इजाजत दी है, लोग इसका जो है एडवांटेज भी लेते हैं, लेकिन एक हमारी कम्युनिटी में बात मुझे लगता है थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे कि कर्ज माफ करवाए, इनके पास कर्ज है, तो कितना कॉन्फिडेंशियल है जो आपसे मुलाकात होती है, ये सिलसिला होता है, वो कितना आप कॉन्फिडेंशियल रखते हैं?
2: इसे भाई प्राइवेसी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है हमारे ऑफिस में। 1-to-1 मीटिंग होती है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास और क्लाइंट के दरमियान रहती है, या फिर अगर फाइल करते हैं तो क्रेडिटर के पास इन्फॉर्मेशन जाती है, कहीं बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, पूरी प्राइवेसी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है, कहीं पे लीक आउट नहीं होती हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे ऑफिस से।
1: वही राइट मतलब सामीन, अगर खुदा ना खास आप कर्ज के बोतल आगे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप कॉल कर लीजिए सदीक साहब को 416-671-0577। ये सब एक बड़ा मसला लोगों के जहन में रहता है कि अगर हमने कर्ज माफ़ करवा लिया या इस किस्म का मसला हुआ तो शायद हमें लोन ना मिले, हमारा क्रेडिट बहुत ख़राब हो जाएगा, मॉर्गेज का क्या बनेगा, एसेट्स का क्या बनेगा, तो इसको आप किस तरह एड्रेस करेंगे?
2: इसमें बिल्कुल ये डर हर क्लाइंट के जहन में होता है कि शायद हमें फॉरएवर का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, बल्कि ये भी होता है मेरे बच्चों को भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, लोग बता देते हैं उसको। तो एक तो ऐसा नहीं है, सिर्फ उसी का क्रेडिट खराब होता है जो रिलीफ लेता है, और कोई जरूर ये भी नहीं कि 7-8 साल तक नहीं मिलेगा क्रेडिट, आपको क्रेडिट बहुत जल्द वापस मिल सकता है अगर आप क्रेडिट को रीबिल्ड करते हैं, क्रेडिट को प्रूव करते हैं कि आप क्रेडिट को मैनेज कर सकते हैं। उसमें हम अपने क्लाइंट को एनरोल करते हैं क्रेडिट रीबिल्ड प्रोग्राम में, और उसमें बताते हैं कि कैसे क्रेडिट बिल्ड करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्रेडिट रिपोर्ट कैसे अपडेट करनी है, वो अगर उस पर अमल करते हैं तो बहुत जल्द वापस क्रेडिट आपको मिल सकता है। और एसेट चाहे घर हैं, गाड़ियां, RSP, RESP, बिजनेसेस, ये सब कुछ एज इट इज आपके पास रहता है, कुछ आप लूज नहीं करते, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो RSP है, RESP, जितने भी एसेट्स हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपके बच्चों के क्रेडिट पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इसका, ना ही कोई OSAP पे फर्क पड़ता है कि OSAP अगर नहीं मिलेगा उनको, सब कुछ मिलेगा और आपको भी मिल सकता है क्रेडिट OSAP, अगर आप इवन आप प्रपोजल फाइल करते हैं या बैंक्रप्सी, स्टिल आप OSAP ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो।
1: वही राइट मतलब सामीन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो प्रोफेशनल्स हैं इस काम में, जिसको जानते हैं, फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम काम करें, उनसे मशवरा कीजिए, दुरुस्त है रिश्तेदारों अजीजों से मशवरा करें, लेकिन जो इस काम को जानते हैं उनसे मशवरा आपको फ़ायदा दे सकता है। 416-671-0577 से देख साहब के रबते के नंबर है। सब कुछ और ऐड करना चाहेंगे
2: आप? अच्छा भाई यही कहूँगा कि अगर आप मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं या एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, कर्जा चाहे छोटा है या बड़ा, चाहे बिजनेस के कर्जे हैं, पर्सनल कर्जे हैं, जितना जल्दी हो सके इन्फॉर्मेशन लें और उसके बाद डिसाइड करें, ना कि जब आप सारा पैसा जाया करके इंटरेस्ट में ڈیپ ڈیٹ میں ہوں تب آپ کنسلٹیشن کے لیے ہاتھ پاؤں مارے, ابھی سے اس کو سیریس لیں. ایک چیز کی میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کا کیس ریویو کرنے کے بعد لوں گا تو میرے آفس سے آپ کو کبھی بھی کسی قسم کا کوئی سرپرائز نہیں ملے گا. جو آپ سے وعدہ کروں گا پہلی میٹنگ میں اس کے مطابق آپ کا کیس اپروو ہوگا, اور جیسے میں نے بتایا کریڈٹ کو ریبلڈ کرنے میں ہم آپ کی پوری پوری ہیلپ کریں گے. نمبر ہے 416-671-0577 پہ کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں.
1: 416-671-0577 صدیق صاحب کے رابطے کے نمبر ہیں. صدیق صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو, السلام علیکم.
2: انشاءاللہ,
1: وعلیکم السلام, خدا حافظ. نمبر نوٹ کیجیے صدیق صاحب کا, آل دیٹ سولوشن 416-671-0577 416-671-0577. آج رات گیس پرائسز میں تقریباً 10 سینٹ کا اضافہ ہو جائے گا, $2 کے قریب ہی پہنچ گئی ہے. $1.96 95.9 یعنی $1.96 پر لیٹر جو ہے وہ گیس ریگولر ہو جائے گی. تھانکلف میں آتش زدگی تو ہے لیکن ویکیشن جو ہے وہاں پہ نہیں ہوئی ہے, اور 70 سالہ سابق سپریم کورٹ کے جسٹس لوئس آربر کو نیا گورنر جنرل کینیڈا کا مقرر کیا گیا ہے. تو یہ تو چھوٹی سی خبریں تھیں. ایک امپورٹنٹ ترین خبر یہ ہے کہ 12 مئی تک سینسز کے فارم آپ کو گھروں میں مل چکے ہیں, وہ آپ کو بائی لاء جو ہے وہ فل کر کے بھجوانے ہیں. ایک کوڈ ہے, اس کے تھرو آن لائن آپ کو بھرنا ہے, اور اگر نہیں کریں گے تو کیونکہ بائی لاء ہے تو $500 تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس پہ تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے. اس وقت آپ کو لے چلیں گے آج کی شاعری کے سیگمنٹ کی طرف.
3: سناٹے میں بند دریچہ کھول دیا کرنا, رات کی آنکھ میں سورج کھول دیا کرنا, زخموں کے مہنگے یاقوت چرا لینا, ان کے بدلے آنسو تول دیا کرنا, جن میں جھوٹے سچ سے دل بہلاتے ہوں ان میں سچا جھوٹ بھی بول دیا کرنا, جب جب پیار کی اشرفیاں برسانی ہوں میرے ہاتھوں میں کشکول دیا کرنا, اور جس شب میری سالگرہ کا ماتم ہو زخم کوئی اس شب انمول دیا کرنا, خط تصویریں پھول کتابیں محسن کی بھول کی ریت پہ رول دیا کرنا, سناٹے میں بند دریچہ کھول دیا کرنا, رات کی آنکھ میں سورج کھول دیا کرنا.

0: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम स्टूडियोज में आप देखने नंबर 416-593-0003 हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में इस वक्त हुआ है 7:30 7:30 आपको लिए चलेंगे कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस की तरफ जो आपके लिए पेश करती है वाणी
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meevani with local updates. Prime Minister Mark Carney names former Supreme Court Justice Louis Arbour as next Governor General. A motorcyclist has died after crashing into a SUV. Ontario NDP leader Merritt Stiles is adamantly refusing to apologize to Premier Doug Ford after she remarked this week that Ford could ultimately end up in prison. Toronto Fire Services provided an update on the latest fire at 11 Thorncliffe Park Drive, where crews have been battling a stubborn blaze in the same condo complex that burned for weeks last year. Peel Regional Police have arrested and charged two Mississauga tow truck operators after a shocking incident caught on body cam, where tow truck believed racing to a collision scene, lost control and poured through an active police investigation late last year. Three Toronto men have been charged in connection to an internet luring investigation. Toronto GTA gas prices increasing 10 cents Wednesday, highest since 2022. Toronto Public Health issued a drug alert following 5 suspected opiate-related deaths. Two Ontario women were found guilty for a murder of a 12-year-old boy they were trying to adopt, as well as the forcible confinement of the boy's younger brother. A man has been stabbed in Carlton Village apartment building. Toronto Police says 15 schools throughout the city received bomb threats by phone on Tuesday. TTC rolls out wayfinding pilot project at 6 subway station ahead of FIFA World Cup. Thieves dug out an ATM from a bank in Ajax using an excavator, Durham Regional Police confirmed. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mein aap tak number 416-593-0003 Canadian headline aap ke liye wani pesh kar rahi thi. एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेंसेस जो हैं वो अब 12 मई उसकी लास्ट डेट हैं. आप तमाम लोगों को, अक्सर लोगों को मेरे ख्याल में ऑलरेडी फॉर्म्स जो हैं वो मिल गए होंगे. उसमें एक कोड होगा, वो आपको ऑनलाइन जो है जाके फिल करना है. दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इससे. बहुत ज़्यादा एक तो आबादी का तयन होता है और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं उसमें. आप कहाँ रह रहे हैं, उसका एवरेज इनकम और बहुत सारी चीज़ें. एक और इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है उसमें लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं. अच्छा, फ़र्ज़ कर लीजिए मेरी मदर टंग पंजाबी है, फ़र्ज़ कीजिए. और अगर इसमें किसी को बाज़ात थोड़ा सा लोग इसका ख्याल करते हैं, हमारे सिख भाई जो हैं वो सारे पंजाबी बोलते हैं. लेकिन हम लोगों को सबको उर्दू लिखना है. उसमें जो आपकी जो लैंग्वेज है मदर लैंग्वेज, वो आपको उर्दू लिखना है. अब इसकी वजह क्या है, इसमें लैंग्वेज बेस्ड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोग्राम्स होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी कॉम्पनसेशन होती हैं. तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट. अगर हम मिसाल की बात देखें तो शायद 13% लोग जो है यहाँ पे उर्दू बोलते हैं. तो ये आप जहन में रखिएगा, इससे किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे, बात एक जेन्युइन सी बात है कि जब आप उसको फिल कर रहे होंगे तो मदर लैंग्वेज है आपको उर्दू लिखनी है, ताकि वो अलग से आइडेंटिफिकेशन उसकी हो जाएगी. वो पंजाबी में बोलते हैं लेकिन वो आपकी जो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो लैंग्वेज बेस्ड जो होती हैं उसका आपको शायद उस तरह से फ़ायदा नहीं होता. तो मदर लैंग्वेज होगी वो आपको उर्दू लिखना है. कमर्शियल ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे और उसके बाद आपको मुलाकात करवाएंगे जनाब अकबाल साहब से. स्टे ट्यून.
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिस्टनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो.

0: तलहाबट्टी को कॉल मिला।
1: तलहाबट 6472957861 Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. तलहाबट 6472957861
0: तो तलहाबट्टी को कॉल मिला।
1: तलहाबट 6472957861
2: बहुत खुशबू आ रही है खाने में। ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो। अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
3: हांडी मसाले बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
4: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550-746-5550।
2: अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
5: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी रब्ता कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रब्ते के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga. अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922। इट्स 905-783-1922। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा। एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500। और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
6: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट 9058191001 9058191001 license number 12374।
7: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ते कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
8: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ प्राउडली प्रेजेंट्स अली जफर For spiritual Sufi and Qawwali night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
9: 416-904-2046 or 416-662-7861.
10: CUNY Global Advisory Inc. आपके लिए लाए हैं एक golden opportunity जिसमें government आपके पूरे study program को sponsor करती है, साथ ही living expenses के लिए non-refundable grant भी देती है, जो 15,000 to $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप permanent resident हैं, citizen हैं या फिर protected person हैं, तो आप इसके लिए eligible हो सकते हैं। इनकी ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे ज्यादा है। आप घर की कंफर्ट से 2-3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 4372643175। इट्स 4372643175।
7: जी हाँ, 4372643175 ग्लोबल एडवाइजरिंग के रबते के नंबर है। गवर्नमेंट आपको ये सहूलत फराहम कर रही है कि आप ना सिर्फ पढ़ें, आप कोर्स करें, सर्टिफिकेशन लें, बल्कि साथ साथ आपको पैसे भी देती है, और पैसे भी वो जो आपको वापस नहीं करने हैं। और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत तकरीबन हर शख्स जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। जितनी आपकी इनकम कम है उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। 4372643175 नागपाल साहब के रबते का नंबर है। किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। नागपाल जी, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टू ऑन।
11: सभी को सलाम हमारी तरफ से।
7: बहुत शुक्रिया। अभी जैसे आप बताया करते हैं कि कुछ वक्त कम रह गया है जिसमें ग्रांट आपको नॉन रिफंडेबल ग्रांट मिलने के लिए शायद 2 महीने बाकी रह गए, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा लोगों को ये बता दीजिए कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इन कोर्सेज के लिए, और क्या कोई एज लिमिट भी होती है?
11: इसमें लाइक एज लिमिट कुछ है नहीं।
7: ठीक है।
11: और गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स हैं। गवर्नमेंट आपको फीस, गवर्नमेंट कॉलेज को डायरेक्टली फीस पे कर देती है।
7: ठीक हो गया।
11: साथ में आपको रहने खाने के लिए फंडिंग देती है। फंडिंग के 2 पार्ट हैं, एक है ग्रांट जो वापिस नहीं करना होता, एक है ऑप्शनल लोन जो कि 0% पे होता जब तक आप एनरोल्ड हैं कॉलेज के अंदर। फुली ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। तालीम हासिल करे, हुकूमत से फंडिंग को अपने अकाउंट में सीधे हासिल करे, मेरे नहीं अपने अकाउंट में हासिल करे।
7: सही।
11: जैसे कि हमारे इतने ही क्लाइंट, इतने ही सालों में हजारों क्लाइंट हासिल कर चुके हैं, हमें 7 ईयर्स हो गए बिजनेस में, कोई कैच नहीं है इसके अंदर। जैसे गवर्नमेंट कितने देशों को इतनी फंडिंग कर देती है, वैसे ही जैसे कल गवर्नमेंट ने 275 मिलियन और दे दी यूक्रेन को। गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा पैसा यहाँ लगाती है एडुकेशन में, हमें लगता है कुछ कैच होगा। कोई कैच नहीं है, कॉल करें 4372643175, असेसमेंट कराएं, 30 से लेकर 100,000 की फंडिंग को अपने अकाउंट में हासिल करें, जिसका आधा पैसा ग्रांट है जो वापिस ही नहीं करना आपने।
7: 4372643175। अच्छा, फंडिंग कितनी बन जाती है, फर्ज कर लें फैमिली ऑफ 2 है, फैमिली ऑफ 4 है?
11: हाँ जी, फैमिली ऑफ 2 है तो अप टू 45,000, फैमिली ऑफ 3 है तो अप टू 60,000, फैमिली ऑफ 5 है तो अप टू $100,000। दोनों पढ़ते हैं, हस्बैंड वाइफ इजी टू पास कोर्स करते हैं, फुली ऑनलाइन घर के कंफर्ट से करते हैं, असाइनमेंट है, एग्जामिनेशन नहीं है। पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन आप होने चाहिए, चाहे आप ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं एलिजिबल है, चाहे बैरी रहते हैं कहीं रहते हैं, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि फुली ऑनलाइन कोर्सेज है हमारे पास आपके लिए। बहुत लोगों को हेल्प कर चुके हैं, हमारे ऑफिस आए हैं आप 200 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड में, आज भी 6 से 8 लोगों का अप्रूवल आया जिनके अकाउंट में फंडिंग गिर चुकी है।
7: वेरी गुड। 4372643175, 4372643175। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं?
11: हाँ जी, पहली बात तो इसमें कोई, जो ही आपको ग्रांट और ऑप्शनल लोन मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है, कोई कोलेटरल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट में आपको एजुकेशन के लिए फंडिंग देती है किसके खाते में? आपके खाते में। कोई क्रेडिट स्कोर चेक नहीं है। आप बैंक के पास नहीं जा रहे, गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे रही है जी। और आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट फंडिंग क्यों दे रही है, तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ 1 अगस्त 2026 के बाद गवर्नमेंट फंडिंग के सारी लोन में देगी, अभी ग्रांट दे रही 50% पैसा जो वापिस नहीं करना आपने
7: जी।
11: और जो लोग कर रहे हैं वो दूसरा तीसरा सातवां कोर्स कर रहे हैं और जो रह गए हैं वो रह ही जाएंगे।
7: सही है,
11: तो आप कॉल करें, हमारे ऑफिस आए 4372643175।
7: अच्छा, क्या आसान है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं ज्यादातर और घर बैठ के कर सकते हैं?
11: हाँ जी हाँ, फुली ऑनलाइन कोर्स है जो हमारे क्लाइंट्स मेजर चूज करते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी क्या लगते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, नोटिस ऑफ असेसमेंट, कोई अप्रोच नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई कारीगरी नहीं है। इसलिए हमारी फीस भी $199 से $499 के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम। कोई कमीशन नहीं है, पैसे भी हम बाद में लेते हैं। अब इसमें ईमानदारी किसकी चेक हो रही है, आप लोगों की, क्योंकि आपने पैसे बाद में हमें देने अपनी ईमानदारी से, क्योंकि पैसे किसके खाते में गिरते हैं गवर्नमेंट से, 30 से लेकर $100,000 तक किसके खाते में गिरते हैं, आपके खाते में, जिसका आधा पैसा क्या है, ग्रांट जो वापिस ही नहीं करना आपने। और जो ऑप्शनल लोन है उसके दो पॉइंट है जी, एक तो वो 0% पे, अगर 1 साल का कोर्स है तो 0% पे वो लोन, और 1.5 साल बाद आपने पे बैक करना स्टार्ट करना है, और 10 साल में आप पे बैक करते हो उस लोन को। मतलब आपने $50,000 की लोन पे $65 का ब्याज देना है एक महीने का 10 साल तक, बस यही ब्याज है।
7: वेरी राइट, आप कह रहे हैं कि कोई एज लिमिट नहीं है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और जितनी इनकम कम होगी आपकी उतना आपको ज्यादा फायदा, ऐसा ही है?
11: बिल्कुल यही बात है। और इसमें गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स हैं, अभी इनरोल करें, 2 महीने रह गए और 3 बैच रह गए हैं,
7: ठीक,
11: और बाकी उसके बाद तो लोन ही आएगा, तो मुझे लगता नहीं था एडवांटेज आप लोगों को होगा, करना है तो अभी करें। जो बहुत कम लोग रह गए, बहुत लोग को हम पहले से असिस्ट कर चुके हैं।
7: वेरी राइट, अभी कॉल कर लें 4372643175, 4372643175। थैंक यू वेरी मच नागपाल जी, बहुत शुक्रिया, फिर अगले प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं। थैंक यू,
11: थैंक यू।
7: नंबर नोट कीजिए 4372643175, 4372643175। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात की दरख्वास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसमें दरख्वास्त को गैर जरूरी और फजूल करार देकर खारिज कर दिया है। वकील फैसल मलिक ने आज 9 मई GHQ हमला केस में बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने दरखास्त गुजार पर ₹10,000 जुर्माना भी आयद कर दिया है और जुर्माना डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी की डिस्पेंसरी में जमा करवाने का हुक्म दिया है। फैसले में कहा गया कि जुर्माना गरीब मरीजों के इलाज पर खर्च किया जाएगा। अदालत ने कहा कि अडयाला जेल में मुलाकातों का तरीकेकार इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहले ही तय कर चुकी है। ट्रायल कोर्ट मुलाकातों पर कोई मतजाद हुक्म जारी नहीं कर सकते। बानी पीटीआई GHQ हमला केस में जमानत पर हैं, जुडिशल तहवील में नहीं है। यह भी कहा गया कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पहले भी इसी नौ की 2 दरखास्तें दायर की गई, मुतल्लिका फोरम से रजू करने के बजाय दरखास्त गुजार अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। सख्त फैसला है और हो सकता है कोई इंटरटेन ना ही इस किस्म की दरखास्त होती हो, लेकिन साथ जुर्माना भी कर दिया गया है। एक तरह का ये लगता है ऐसे ही कि मैसेजिंग हो रही है। 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है जनाब, अगर आपको पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज खाने खाने हैं तो आप तशरीफ ले जाइए चाय खाना चाइनीज कुजीन। ये रिजवे में है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 है, और PC लाहौर की शेफ है, यहाँ 14 साल से ज्यादा से कम का तजर्बा है, और 100% हलाल है, फ्रेश और अथेंटिक फूड है, नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेज मसाला एट ऑल। तशरीफ ले जाइए, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बुकिंग कॉल 905-514-7877, 905-514-7877। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपको होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ।

0: ट्रेवल एंड टूर्स मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। आयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं। PIA के कंसोलिडेटर हैं और PIA टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं। बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट। उमरा और ज़ियारत की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
1: लीडर्स कॉस्मेटिक्स के वेयर हाउस सेल के चंद ही दिन बाकी हैं, 8, 9, 10 लास्ट वीकेंड है ये। आपको यहाँ अप टू 80% तक की सेविंग हो सकती है, जिसमें कॉस्मेटिक एंड स्किन ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड नेम परफ्यूम्स आपको मिल सकते हैं, डिज़ाइनर सनग्लासेस। इसके अलावा मदर्स डे के लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट आपको मिलेंगे। जाना है आपको 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में। lizacosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकुएट हॉल मिसागा में। एवरीडे गोल्ड प्राइस जो है वो बजर कुरंदाजी दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मदर्स डे का प्रोग्राम है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, कपल के लिए प्रोग्राम्स हैं, बेशुमार एवरी डे इनाम घर के जरिए इनाम दिए जाएंगे। अपने बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हैं। स्टॉल बुकिंग और आप स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कर लीजिए शम्स रहमान साहब को 416-710-6777
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Reform. Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scarborough mein 2155 Lawrence Avenue East, Lawrence, Richmond ka intersection 416-757-9999. Daanton ki koi bhi bimari ho, aap aitmaad ke saath Dr. Fayaz Ahmed Qureshi aur unki tajrubakar team ki professional services ka fayda uthaiye. Tamam insurance plan accept karte hain, insurance na rakhne walon ke liye special discount. Root canal treatment aur re-treatment ke specialist hain. Mississauga location 1110 Bloor Street East, Bloor aur Dixie ke intersection 905-232-5678.
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
0: Alkaram Jewelers. अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए. अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे. आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. 9058280009. It's 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari. अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं. इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं. साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा. डेडलाइन इज कमिंग सून. अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं. मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922. इट्स 905-783-1922. तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए. इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक. ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे. रोजाना

0: को इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल होने जा रहा है कैपिटल बैंकेट हॉल में सागा में। कैपिटल बैंकेट हॉल ईद मेलों की वजह से मशहूर है। एवरी डे यहाँ पे प्राइजेज हैं, गोल्ड के प्राइजेज हैं और भी बहुत कुछ है, ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट है। शम्स रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल उन्हीं से लेंगे। शम्स भाई अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। बताइए कैसी तैयारियाँ हैं, क्या कुछ होने जा रहा है इस इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
1: बस जी तैयारियां बहुत ज्यादा है, चारों दिन बड़े शोज हमने रखे हैं
0: जी।
1: और बस अब हमारा मैसेज है वेंडर्स के लिए कि जो लोग अपने पास स्टॉक घर में रख के बैठे हैं, कोई कपड़े वाला है, कोई जेवर वाला है, इसी तरह किसी के पास कोई ग्रोसरी सॉलिड फूड आइटम्स पड़े हुए हैं, अनकुक्ड मसाले हैं किसी के पास, तो ये सारे लोग आके हमारे इस ईद मेले में शमूलियत कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो स्टॉल की प्राइस हमने बड़ी अट्रैक्टिव रखी हुई है, इस वक्त अर्ली बर्ड चल रहा है, तो हमसे राब्ता करें। और आपका कोई भी ब्रांड है आप आइए इसमें मार्केट कीजिए, 8,000 से 10,000 लोग इसमें होंगे, विजिट करेंगे, तो एक जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। चाहे आप इंश्योरेंस बेचते हैं, चाहे आपका मॉर्गेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, यहाँ से आपको गारंटीड लीड्स मिलेंगी। और जब आप हमारे साथ साइन अप करते हैं तो हम आपको टीवी स्टूडियो में ले जाके 360 टीवी में आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे और हम उसको वायरल करेंगे। बाय द टाइम ईद मेला आएगा आप हर जगह मशहूर होंगे और लोग आपसे आके मिलेंगे कि आप कैपिटल बैंक्वेट हॉल में कहां पर हैं।
0: 416-710-6777 416-710-6777 पे कॉल कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा इनाम घर इनाम देने की वैसे मशहूर हैं और यहाँ भी आप इनाम घर के इनामात भी होंगे और बाकी इनामात भी होंगे, उसकी कुछ तफसील बताइए, प्रोग्राम्स कैसे होंगे चारों दिन?
1: जी बिल्कुल, चारों दिन हमने बड़े शोज रखे हुए हैं, तो जो भी नाजरीन जो भी सामईन सुन रहे हैं जो इनाम घर में आते रहते हैं वो सारे एक्साइटेड हैं। चार दिन हैं और चार शोज हैं। पहले दिन हमारा शो है, फैशन शो है, उस फैशन शो में भी जो मॉडल विन करेगी, जो कोई मॉडल इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं अभी हमसे मेल फीमेल मॉडल दोनों रब्ता करें, जो जीतेगा उसी दिन अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से उनको गोल्ड का प्राइस दिया जाएगा। दूसरे दिन हमारा सिंगिंग का कम्पिटिशन है, जो सिंगर्स हैं हमसे रब्ता कर लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, जो सिंगर भी जीतेगा उसी रात को अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस मिलेगा। फिर तीसरे दिन यानी के तीसरा दिन आ जाता है मंडे का, मंडे वाले दिन हमारा फैमिलीज का शो है, तो फैमिलीज का शो और जो मदर्स डे के हिसाब से और जो सीनियर्स हैं वो सारे आए तो हम उनके दरमियान भी एक छोटा सा फनी कंपटीशन करवा के गोल्ड का प्राइस उस दिन हम सीनियर मदर या सीनियर फादर को मिलेगा।
0: ठीक।
1: और आखिरी दिन जो है वो हमारा मिक्स है, सारी फैमिलीज, हर जेंडर के लोग, हर एज के लोग आएंगे और उसके लिए स्पेशल शाजिया हुसैन डिजाइन कर रही है एक शो जो टोरंटो 360 की होस्ट भी है, तो उस दिन भी एक गोल्ड का प्राइस। और हम मशकूर हैं अलकरम ज्वेलर्स के कि जिन्होंने सारे इनामात का इंतजाम किया है।
0: वही राइट जनाब, इसके अलावा किसी किस्म का स्टॉल आप लगाना चाहते हो, मेहंदी का स्टॉल हो, ज्वेलरी का स्टॉल हो, क्लोथिंग का स्टॉल हो, रब्ता कर लीजिए 416-710-6777 416-710-6777। थैंक यू वेरी मच शम्स भाई, बहुत शुक्रिया, अगले प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी
0: मच। मजीद डिटेल के लिए कॉल कीजिए शम्स रहमान साहब को 416-710-6777। एक खूबसूरत नगमा और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: रॉय थाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में रابطے کے نمبر 416-593-0003 ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں ٹورانٹو اور اس کے

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकुएट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे।

0: और खजूर के तने को पकड़ कर अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताजा ताजा खजूरें झड़ पड़ेंगी।
1: फकुनी वशरबी वकर्री आईनी।

तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी, तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज कलाम नहीं करूंगी।

0: बड़ी देर के बाद जो है वो डांस करने को दिल किया है। इतना मजे का गाया है सामिया ने, बहुत अच्छे। शाजिया मंजूर साहिबा ने भी इसको बहुत अच्छा हक अदा किया इसको गाने का, के पूरी दुनिया में ये सुपर हिट हुआ। और सामिया आपने भी बहुत अच्छा गाया,
1: थैंक यू सो मच,
0: जस्ट लव दिस परफॉर्मेंस।
1: थैंक यू
2: मलकू स्टूडियो सीजन 1।

0: न्यूज के लिए हिमदामत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
1: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जौहरी हथियार हासिल कर लिए तो न इसराइल और न ही मशरक वस्ती बचेगा। उन्होंने कहा कि ईरानी बहरिया के पास मशीन गन लगी छोटी कश्तियों के सिवा कुछ नहीं बचा। उधर ईरान का कहना है कि आबनाए हुर्मुज में कश्तियों पर अमरीकी हमले में 5 शहरी जां बहक हुए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी अफवाज ने मुत्तहदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया और किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब का यह भी कहना था कि आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए ईरानी तजवीज करदा रास्ता मुंतखब न करने वाले जहाजों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग का जारहाना मरहला मुकम्मल हो चुका है और तेहरान को मुजाकरात की मेज पर लौटना चाहिए। उधर अमरीकी वजीर जंग पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अमरीका लड़ाई नहीं चाहता लेकिन ईरान को आबनाए हुर्मुज बंद करने की किसी सूरत में इजाजत नहीं देगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराकची मंगल को चीन जाएंगे। सऊदी अरब का कहना है कि खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की कोशिशों के बाइस ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत में कुछ पेशरफ्त देखने में आ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले मिजाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में इंतखाबी शिकस्त के बाद ममता बनर्जी ने वजीर आला के ओहदे से मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया। इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान का इलाज फैमिली की मौजूदगी में करवाया जाए। और आज रात से गैस की कीमत में 10 सेंट फी लीटर इजाफा हो जाने का इम्कान। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
2: खास खास खबरें जुबैर दीन से आपके लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 203.50 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान में हर बैंक में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर अकाउंट नहीं है कैश बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए। gondarbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 203.50 रुपये। कॉल कर लीजिए 905-306-0000। मंगल के दिन ऑल द सॉल्यूशंस में सिद्दीक साहब हमारे साथ हुआ करते हैं। राइट विंडो फोर्स से सवानु साहब से आपको मुलाकात कराएंगे। ग्लोबल एडवाइजर इंक से नागपाल साहब आज के दिन हमारे साथ होते हैं। कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल्स आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब। और भी कुछ मौजूद होंगे हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सब कुछ सुनने के लिए आपको हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। मेरे अच्छे बैर सामिन, शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस जमा करती हैं वो सबका सब शहद नहीं होता, इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा शहद बनता है। शहद की मक्खियों को 1 पाउंड शहद के लिए 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है, इसलिए मक्खियां तकरीबन 30 लाख उड़ाने भरती हैं और इस दौरान वो मजमूई तौर पर 50,000 मील की मसाफत तय करती हैं। रस जब मतलूबा मकदार में जमा हो जाता है तो फिर उसके बाद शहद साजी का अमल शुरू होता है। शहद अपने इब्तदाई मराहल में पानी की तरह रकीक होता है, पतला होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखों की तरह इस्तेमाल करके फाजल पानी को भाप की तरह उड़ा देती हैं। जब ये पानी उड़ जाता है तो उसके बाद एक मीठा सा सयाल बाकी रह जाता है जिसको मक्खियाँ चूस लेती हैं। मक्खियों के मुंह में ऐसे गदूद होते हैं जो अपने अमल से इस मीठे सयाल मादा को शहद में तब्दील कर देते हैं। अब मक्खियाँ इस तैयार शहद को छत्ते के मखसूस तौर पर बने हुए सुराखों में भर देती हैं। ये सुराख दूसरी मक्खियाँ मोम के जरिए हद दर्जा कारीगरी के साथ बनाती हैं। मक्खियाँ शहद को इन सुराखों में भरकर इसको डब्बा बंद फिजा की तरह एहतमाम के साथ महफूज कर देती हैं ताकि आइंदा वो इंसानों के काम आ सके। इस तरह बेशुमार एहतमाम जो शहद की तैयारी के किए जाते हैं, खुदा ही ऐसा कर सकता था। तिलसमाती तौर पर चाहता अल्लाह रब्बे करीम तो अचानक शहद की नहरें बहा देता, पानी की तरह शहद का चश्मा बहा देता, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। खुदा हर किस्म की कुदरत के बावजूद शहद को असबाब के एक हरदा दर्जे तक कामिल निज़ाम के तहत तैयार करना चाहते हैं ताकि इंसान को भी सबक हासिल हो। वो जाने कि खुदा ने दुनिया का निज़ाम किसी ढंग पर बनाया है और किन कवानीन और आदाब की पैरवी करके खुदा की इस दुनिया में कोई शख्स कामयाब हो सकता है। शहद की मक्खी जिस तरह अमल करती है, इस लफ्ज़ में मनसूबाबंद अमल कहा जाता है। इसमें एक प्लानिंग मौजूद है। यही असूल इंसान के लिए भी है। इंसान भी सिर्फ उस वक्त कोई बामानी कामयाबी हासिल कर सकता है جب وہ کوئی پلاننگ کرے تاکہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے. منظم اور منصوبہ بند عمل اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا واحد یقینی ذریعہ ہے, شہد کی مکھی کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Studios mein aap dekhe number 416-593-0003. 24 ghante mein nishat aap Radio Pakistan.fm pe sun sakte hain. Facebook mein hamara page Radio Pakistan Toronto se bhi like kijiye. Tune in bhi hamara program available hai. Phone ke zariye sunna chahein 647-506-0003 pe call karke hamara program sun sakte hain. Hamara television channel Toronto 360 TV tamam IPTV boxes, Jadu Bol Zone bus ke saath saath Apple TV, Amazon Fire TV, Roku TV ke saath saath Uber app ke through Rogers pe bhi hamara nishat dekh sakte hain. हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 टीवी. एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए हमारी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. दो चैनल टोरंटो 360 टीवी और टोरंटो 360 इंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की ऑनलाइन निशात भी 24 घंटे हमारी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं. आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी जरूर किया कीजिए. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की निशात CMR 101.3 FM तो आप सुनते ही हैं, लेकिन हमारी निशात आप टेलीविजन पर देख भी सकते हैं. टोरंटो 360 टीवी पे हमारी नशात आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इसके साथ साथ ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं. हमारी वेबसाइट toronto360.tv पे भी देख सकते हैं. रियल सेट के हमारे से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए. कॉल तला भट्टी 647-295-7861. घर खरीदना, बेचना, लीज करना, साइन करना, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो, कॉल कर लीजिए. अपना ईमेल रेसिपी टेक्स्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में से ऐड कर लेंगे. जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिक से डिटेल आपको मिलती रहा करेगी. कॉल कीजिए, अपना ईमेल टेक्स्ट कर दीजिए तला भट्टी 647-295-7861. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ.
1: You are listening to Radio Pakistan.

बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अर्शद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।

0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 4372378888। इट्स 4372378888। लाइसेंस नंबर 12458।

0: ICICI Immigration के RDMD और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कारब्रो और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर ले 905-461-2424। इट्स 905-461-2424। तैयार हो जाए इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। हर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। It's 416-710-6777.
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है टीवी और appliances कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, Brampton TV and Appliances, जहाँ special sale चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 224 का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट सी।
0: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009। It's 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari.
4: Lisa ki yaad nahi aayi tujhe, Jassi? Jassi ko chhodiye, kyunki Lisa is cosmetic.

0: तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर, विजिट lisascosmetics.com।
1: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। कर्ज इंसान का जहनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577। जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577।
2: जी हाँ, 416-671-0577 एम सिद्दीक साहब के रब्ते नंबर है। ऑल दैट सॉल्यूशंस बताना खास, आप कर्ज के बोझ तले आ गए हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, कॉल कर लीजिए। मैक्सिमम कर्ज माफ करवा देंगे, आसान इकसाद करवा देंगे आपकी। 416-671-0577 रब्ते का नंबर है। बहुत अच्छा फीडबैक हमें सिद्दीक साहब का मिलता है, खुश आमदीद कहेंगे। सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम अरशद भाई, कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, खैरियत ठीक ठाक हैं?
3: अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक।
2: हाँ सिद्दीक साहब, ये अक्सर जाहिर सवाल करते हैं कि इम्पोर्टेंट, एक शख्स जब कर्ज के बोझ तले आता है, परेशानी जाहिर उसकी बहुत सारी रहती है, वो इधर उधर दोस्तों से पूछता है, पहले उनके मशवरे पे अमल करता है और बाज़ुकात ही होता है कि वो मशवरे उनको प्रोफेशनल नहीं दिए जाते। थोड़ा सा ये बताइएगा कि फर्स्ट मीटिंग जब आप करते हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है और उसमें क्या कुछ जो है उसमें तय हो जाता है?
3: इसमें पहली मीटिंग इंतहाई इम्पोर्टेंट होती है। जितने मैं उनकी फाइल क्लाइंट की रिव्यू करता हूँ तो उनको बताता हूँ कि कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, कौन सा ऑप्शन आपको सूट करेगा, वो क्यों सूट करेगा, क्या आपको रिलीफ लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर रिलीफ लेना है तो कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा और अगर नहीं लेना तो कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि एटलीस्ट आपका पैसा ज्यादा इंटरेस्ट में जाया ना हो। जो मैंने पिछले भाई पिछले 26-27 सालों में देखा है कि ज्यादातर लोग फैमिली फ्रेंड से मशवरा कर लेते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता कि सिस्टम काम कैसे करता है और वो इतना उनको डरा देते हैं कि उनमें हिम्मत ही नहीं होती कि कहीं किसी कहीं कॉल करें और एडवाइस लें। वो घर बैठे पेमेंट करते रहते हैं और हमारे पास उस वक्त आते हैं जब वो काफी सारा पैसा इंटरेस्ट में जाया कर चुके होते हैं। ये एक लीगल प्रोसेस है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर डेट में आप आ गए हैं, चाहे वो छोटा कर्ज है या ज्यादा, आप अपने क्रेडिटर से रिलीफ ले सकते हैं और ये आपको आपने आपकी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है आपके ऑप्शन के, कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट करके आप रिलीफ ले सकते हैं, जिसमें हम आपको गाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम कर्जा माफ हो जाए और बाकी जो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं आप किस्तें वो आप पे करें उसमें।
2: नंबर टू कॉल इज 416-671-0577, 416-671-0577। कानून ने तो इजाजत दी है, लोग इसका जो है एडवांटेज भी लेते हैं, लेकिन एक हमारी कम्युनिटी में बाज़ुकात मुझे लगता है थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे कि कर्ज माफ करवाए या इनके पास कर्ज है, तो कितना कॉन्फिडेंशियल है जो आपसे मुलाकात होती है, ये सिलसिला होता है, वो कितना आप कॉन्फिडेंशियल रखते हैं?
3: इसे भाई प्राइवेसी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। हमारे ऑफिस में 1-to-1 मीटिंग होती है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास और क्लाइंट के दरमियान रहती है या फिर अगर फाइल करते हैं तो क्रेडिटर के पास इन्फॉर्मेशन जाती है, कहीं बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, पूरी प्राइवेसी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है, कहीं पे लीक आउट नहीं होती हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे ऑफिस से।
2: वेरी राइट, मतलब सामीन, अगर खुदा ना खास आप कर्ज के बोतल आ गए हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप कॉल कर लीजिए सदीक साहब को 416-671-0577। ये सब एक बड़ा मसला लोगों के जहन में रहता है कि अगर हमने कर्ज माफ़ करवा लिया या इस किस्म का मसला हुआ तो शायद हमें लोन ना मिले, हमारा क्रेडिट बहुत ख़राब हो जाएगा, मॉर्गेज का क्या बनेगा, एसेट्स का क्या बनेगा, तो इसको आप किस तरह एड्रेस करेंगे?
3: इसमें बिल्कुल ये डर हर क्लाइंट के जहन में होता है कि शायद हमें फॉरएवर का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, बल्कि ये भी होता है कि मेरे बच्चों को भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, लोग बता देते हैं उसको। तो एक तो ऐसा नहीं है, सिर्फ उसी का क्रेडिट खराब होता है जो रिलीफ लेता है, और कोई जरूर ये भी नहीं कि 7-8 साल तक नहीं मिलेगा क्रेडिट, आपको क्रेडिट बहुत जल्द वापस मिल सकता है अगर आप क्रेडिट को रीबिल्ड करते हैं।

0: क्रेडिट को प्रूव करते हैं कि आप क्रेडिट को मैनेज कर सकते हैं, उसमें हम अपने क्लाइंट को एनरोल करते हैं क्रेडिट रिबिल्ड प्रोग्राम में, और उसमें बताते हैं कि कैसे क्रेडिट बिल्ड करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्रेडिट रिपोर्ट कैसे अपडेट करनी है। वो अगर उस पर अमल करते हैं तो बहुत जल्द वापस क्रेडिट आपको मिल सकता है, और एसेट चाहे घर है, गाड़ियां, RSP, RESP, बिजनेसेस, ये सब कुछ एज इट इज आपके पास रहता है, कुछ आप लूज नहीं करते, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो RSP है, RESP, जितने भी एसेट्स हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपके बच्चों के क्रेडिट पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है इसका, ना ही कोई OSAP पे फर्क पड़ता है, OSAP अगर नहीं मिलेगा उनको, सब कुछ मिलेगा, और आपको भी मिल सकता है क्रेडिट OSAP, अगर आप इवन आप प्रपोजल फाइल करते हैं या बैंक्रप्सी, स्टिल आप OSAP ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो।
1: वही राइट, मतलब सामीन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो प्रोफेशनल्स हैं इस काम में, जिसको जानते हैं, फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम काम करें, उनसे मशवरा कीजिए, दुरुस्त है रिश्तेदारों से मशवरा करें, लेकिन जो इस काम को जानते हैं उनसे मशवरा आपको फायदा दे सकता है। 416-671-0577 से देख साहब के रास्ते के नंबर है। सब कुछ और ऐड करना चाहेंगे
0: आप? अच्छा भाई, यही कहूँगा कि अगर आप मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं या एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, कर्जा चाहे छोटा या बड़ा, चाहे बिजनेस के कर्जे हैं, पर्सनल कर्जे हैं, जितना जल्दी हो सके इन्फॉर्मेशन लें और उसके बाद डिसाइड करें, ना कि जब आप सारा पैसा जाया करके इंटरेस्ट में डीप डेट में हों तब आप कंसल्टेशन के लिए हाथ पांव मारें, अभी से इसको सीरियस लें। एक चीज की मैं गारंटी करता हूं कि अगर मैं आपका केस रिव्यू करने के बाद लूंगा तो मेरे ऑफिस से आपको कभी भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। जो आपसे वादा करूंगा पहली मीटिंग में उसके मुताबिक आपका केस अप्रूव होगा, और जैसे मैंने बताया क्रेडिट को रीबिल्ड करने में हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। नंबर है 416-671-0577 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
1: 416-671-0577 सिद्दीक साहब के रास्ते के नंबर है। सिद्दीक साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। आज रात गैस प्राइसेस में तकरीबन 10 सेंट का इजाफा हो जाएगा, $2 के करीब ही पहुंच गई है, $1.96, 95.9 यानी $1.96 पर लीटर जो है वो गैस रेगुलर हो जाएगी। थॉर्नक्लिफ में आतिशदगी तो है लेकिन वैक्सीन जो है वहां पे नहीं हुई है, और 70 साल साबिक सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस लुइस आर्बर को नया गवर्नर जनरल कनाडा का मुकर्रर किया गया है। तो ये तो छोटी सी खबरें थी, एक इंपॉर्टेंट तरीन खबर ये है कि 12 मई तक सेंसस के फॉर्म आपको घरों में मिल चुके हैं, वो आपको बाई लॉ जो है वो फिल करके भिजवाने हैं, एक कोड है उसके थ्रू ऑनलाइन आपको भरना है, और अगर नहीं करेंगे तो क्योंकि बाई लॉ है तो $500 तक जुर्माना हो सकता है। इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इस वक्त आपको लिए चलेंगे आज की शायरी के सेगमेंट की तरफ।
2: सन्नाटे में बंद दरीचा खोल दिया करना, रात की आंख में सूरज खोल दिया करना, जख्मों के महंगे याकूत चुरा लेना, उनके बदले आंसू तोल दिया करना, जिनमें झूठे सच से दिल बहलाते हो उनमें सच्चा झूठ भी बोल दिया करना, जब जब प्यार की अशरफियां बरसानी हो मेरे हाथों में कशकोल दिया करना, और जिस शब मेरी सालगिरह का मातम हो जख्म कोई उस शब अनमोल दिया करना, खत तस्वीरें फूल किताबें मोहसिन की भूल की रेत पे रोल दिया करना, सन्नाटे में बंद दरीचा खोल दिया करना, रात की आंख में सूरज खोल दिया करना।

0: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003 हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में इस वक्त वक्त हुआ है 7:30 7:30 आपको लिए चलेंगे कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस की तरफ जो आपके लिए पेश करती है वानी
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meevani with local updates. Prime Minister Mark Carney names former Supreme Court Justice Louis Arbour as next Governor General. A motorcyclist has died after crashing into a SUV. Ontario NDP leader Merritt Stiles is adamantly refusing to apologize to Premier Doug Ford after she remarked this week that Ford could ultimately end up in prison. Toronto Fire Services provided an update on the latest fire at 11 Thorncliffe Park Drive, where crews have been battling a stubborn blaze in the same condo complex that burned for weeks last year. Peel Regional Police have arrested and charged two Mississauga tow truck operators after a shocking incident caught on body cam, where two truck believed racing to a collision scene, lost control and poured through an active police investigation late last year. Three Toronto men have been charged in connection to an internet luring investigation. Toronto GTA gas prices increasing 10 cents Wednesday, highest since 2022. Toronto Public Health issued a drug alert following five suspected opioid-related deaths. Two Ontario women were found guilty for a murder of a 12-year-old boy they were trying to adopt, as well as the forcible confinement of the boy's younger brother. A man has been stabbed in Carlton Village apartment building. Toronto Police says 15 schools throughout the city received bomb threats by phone on Tuesday. TTC rolls out wayfinding pilot project at 6 subway station ahead of FIFA World Cup. Thieves dug out an ATM from a bank in Ajax using an excavator, Durham Regional Police confirmed. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mein aap tak number 416-593-0003 Canadian headline aapke liye mani pesh kar rahi thi. एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेंसेस जो हैं वो अब 12 मई उसकी लास्ट डेट हैं. आप तमाम लोगों को, अक्सर लोगों को मेरे ख्याल में ऑलरेडी फॉर्म्स जो हैं वो मिल गए होंगे. उसमें एक कोड होगा, वो आपको ऑनलाइन जो है जाके फिल करना है. दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है इससे. बहुत ज़्यादा एक तो आबादी का तयन होता है और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं उसमें. आप कहाँ रह रहे हैं, उसका एवरेज इनकम और बहुत सारी चीज़ें. एक और इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है उसमें लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं. अच्छा, फ़र्ज़ कर लीजिए मेरी मदर टंग पंजाबी है, फ़र्ज़ कीजिए. और अगर इसमें किसी को बाज़ात थोड़ा सा लोग इसका ख्याल करते हैं, हमारे सिख भाई जो हैं वो सारे पंजाबी बोलते हैं. लेकिन हम लोगों को सबको उर्दू लिखना है. उसमें जो आपकी जो लैंग्वेज है मदर लैंग्वेज, वो आपको उर्दू लिखना है. अब इसकी वजह क्या है, इसमें लैंग्वेज बेस्ड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोग्राम्स होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी कॉम्पनसेशन होती हैं. तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट. अगर हम मिसागा की बात देखें तो शायद 13% लोग जो है यहाँ पे उर्दू बोलते हैं. तो ये आप जहन में रखिएगा, इससे किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे, बात एक जेन्युइन सी बात है कि जब आप उसको फिल कर रहे होंगे तो मदर लैंग्वेज है आपको उर्दू लिखनी है, ताकि वो अलग से आइडेंटिफिकेशन उसकी हो जाएगी. वो पंजाबी में बोलते हैं लेकिन वो आपकी जो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो लैंग्वेज बेस्ड जो होती हैं उसका आपको शायद उस तरह से फ़ायदा नहीं होता. तो मदर लैंग्वेज होगी वो आपको उर्दू लिखना है. कमर्शियल ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे और उसके बाद आपको मुलाकात करवाएंगे जनाब अकबाल साहब से. स्टे ट्यून.
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिस्टनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो.

0: तलावट्टी को कॉल मिला।
1: तलावट 6472957861 रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज स्पेशल पैकेजेस फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स अ मेंबर ऑफ डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल टीम तलावट 6472957861
0: तो तलावट्टी को कॉल मिला।
1: तलावट 6472957861।
2: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो। अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
3: हांडी मसाले बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
4: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 4167465550 7465550।
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
5: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रेफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी रब्ता कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रब्ते के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine-in karein ya take-out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice, Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer, large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take-out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga. अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेड लाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922। इट्स 905-783-1922। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा। एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
6: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 license number 12374।
7: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
8: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ प्राउडली प्रेजेंट्स अली जफर For spiritual Sufi and Qawwali night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
9: 416-904-2046 or 416-662-7861.
10: Uni Global Advisory Inc. आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15,000 to $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनकी ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे ज्यादा है। आप घर के कंफर्ट से 2-3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 437-264-3175। इट्स 437-264-3175।
7: जी हाँ, 437-264-3175 ग्लोबल एडवाइजरिंग के रबते के नंबर है। गवर्नमेंट आपको ये सहूलत फराहम कर रही है कि आप ना सिर्फ पढ़ें, आप कोर्स करें, सर्टिफिकेशन लें, बल्कि साथ साथ आपको पैसे भी देती है, और पैसे भी वो जो आपको वापस नहीं करने हैं। और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत तकरीबन हर शख्स जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। जितनी आपकी इनकम कम है उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। 437-264-3175 नागपाल साहब के रबते का नंबर है। किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। नागपाल जी, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टू ऑन।
11: सभी को सलाम हमारी तरफ से।
7: बहुत शुक्रिया। अभी जैसे आप बताया करते हैं कि कुछ वक्त कम रह गया है जिसमें ग्रांट आपको नॉन रिफंडेबल ग्रांट मिलने के लिए शायद 2 महीने बाकी रह गए, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा लोगों को ये बता दीजिए कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इन कोर्सेज के लिए और क्या कोई एज लिमिट भी होती है।
11: इसमें लाइक एज लिमिट कुछ है नहीं,
7: ठीक है,
11: और गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स हैं। गवर्नमेंट आपको फीस, गवर्नमेंट कॉलेज को डायरेक्टली फीस पे कर देती है,
7: ठीक हो गया।
11: साथ में आपको रहने खाने के लिए फंडिंग देती है। फंडिंग के 2 पार्ट हैं, एक है ग्रांट जो वापिस नहीं करना होता,
7: ठीक हो,
11: एक है ऑप्शनल लोन जो कि 0% पे होता जब तक आप एनरोल्ड हैं कॉलेज के अंदर,
7: ठीक हो।
11: पूरी ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। तालीम हासिल करे, हुकूमत से फंडिंग को अपने अकाउंट में सीधे हासिल करे, मेरे नहीं अपने अकाउंट में हासिल करे।
7: सही।
11: जैसे कि हमारे इतने ही क्लाइंट, इतने ही सालों में हजारों क्लाइंट हासिल कर चुके हैं, हमें 7 ईयर्स हो गए बिजनेस में, कोई कैच नहीं है इसके अंदर। जैसे गवर्नमेंट कितने देशों को इतनी फंडिंग कर देती है, वैसे जैसे कल गवर्नमेंट ने 275 मिलियन और दे दी यूक्रेन को। गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा पैसा यहाँ लगाती है एडुकेशन में, हमें लगता है कुछ कैच होगा, कोई कैच नहीं है। कॉल करें 437-264-3175, असेसमेंट कराएं, 30,000 to 100,000 की फंडिंग को अपने अकाउंट में हासिल करें, जिसका आधा पैसा ग्रांट है, वापिस ही नहीं करना आपने।
7: 437-264-3175। अच्छा, फंडिंग कितनी बन जाती है, फर्ज कर लें फैमिली ऑफ टू है, फैमिली ऑफ फोर है।
11: हाँ जी, फैमिली ऑफ टू है तो अप टू 45,000, फैमिली ऑफ थ्री है तो अप टू 60,000, फैमिली ऑफ फाइव है तो अप टू $100,000। दोनों पढ़ते हैं, हस्बैंड वाइफ, इजी टू पास कोर्स करते हैं, फुली ऑनलाइन घर के कंफर्ट से करते हैं, असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है। पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन आप होने चाहिए, चाहे आप ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं एलिजिबल है, चाहे बैरी रहते हैं कहीं रहते हैं, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि फुली ऑनलाइन कोर्सेज है हमारे पास आपके लिए। बहुत लोगों को हेल्प कर चुके हैं, हमारे ऑफिस आए हैं आप 200 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड में, आज भी 6 to 8 लोगों का अप्रूवल आया जिनके फंडिंग गिर चुकी है।
7: वेरी गुड। 437-264-3175। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं?
11: हाँ जी, पहली बात तो इसमें कोई जो ही आपको ग्रांट और ऑप्शनल लोन मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है, कोई कोलेटरल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट में आपको एजुकेशन के लिए फंडिंग देती है किसके खाते में? आपके खाते में। कोई क्रेडिट स्कोर चेक नहीं है, आप बैंक के पास नहीं जा रहे, गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे रही है जी। और आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट फंडिंग क्यों दे रही है, तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, 1 अगस्त 2026 के बाद गवर्नमेंट फंडिंग के सारी लोन में देगी, अभी ग्रांट दे रही 50% पैसा जो वापिस ही नहीं करना आपने
7: जी।
11: और जो लोग कर रहे हैं वो दूसरा तीसरा सातवां कोर्स कर रहे हैं, और जो रह गए हैं वो रह ही जाएंगे।
7: सही है,
11: तो आप कॉल कर रहे हैं, हमारा ऑफिस आए 4372643175।
7: अच्छा, क्या आसान है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं ज्यादातर और घर बैठ के कर सकते हैं?
11: हाँ जी हाँ, फुली ऑनलाइन कोर्स ये जो हमारे क्लाइंट्स मेजर चूज करते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी क्या लगते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, नोटिस ऑफ असेसमेंट, कोई अप्रोच नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई कारीगरी नहीं है, इसलिए हमारी फीस भी $199 से $499 के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम, कोई कमीशन नहीं है, पैसे भी हम बाद में लेते हैं। अब इसमें ईमानदारी किसकी चेक हो रही है, आप लोगों की, क्योंकि आपने पैसे बाद में हमें देने अपनी ईमानदारी से, क्योंकि पैसे किसके खाते में गिरते हैं गवर्नमेंट से, 30 से लेके $100,000 तक किसके खाते में गिरते हैं, आपके खाते में, जिसका आधा पैसा क्या है, ग्रांट जो वापिस ही नहीं करना आपने। और जो ऑप्शनल लोन है उसके दो पॉइंट है जी, एक तो वो 0% पे, अगर 1 साल का कोर्स है तो 0% पे वो लोन, और 1.5 साल बाद आपने पे बैक करना स्टार्ट करना है, और 10 साल में आप पे बैक करते उस लोन को, मतलब आपने $50,000 की लोन पे $65 का ब्याज देना है एक महीने का 10 साल तक, बस यही ब्याज है।
7: वेरी राइट, आप कह रहे हैं कि कोई एज लिमिट नहीं है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और जितनी इनकम कम होगी आपकी उतना आपको ज्यादा फायदा, ऐसा ही है?
11: बिल्कुल यही बात है, और इसमें गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स हैं, अभी इनरोल करें, 2 महीने रह गए और 3 बैच रह गए हैं,
7: ठीक,
11: और बाकी उसके बाद तो लोन ही आएगा, तो मुझे लगता नहीं एडवांटेज आप लोगों को होगा, करना है तो अभी करें, जो बहुत कम लोग रह गए, बहुत लोग को हम पहले से असिस्ट कर चुके हैं।
7: वेरी राइट, अभी कॉल कर लें 4372643175, 4372643175। थैंक यू वेरी मच नागपाल जी, बहुत शुक्रिया, फिर अगले प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं। थैंक यू,
11: थैंक यू।
7: नंबर नोट कीजिए 4372643175, 4372643175। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसमें दरख्वास्त को गैर जरूरी और फजूल करार देकर खारिज कर दिया है। वकील फैसल मलिक ने आज 9 मई GHQ हमला केस में बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने दरखास्त गुजार पर ₹10,000 जुर्माना भी आयद कर दिया है और जुर्माना डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी की डिस्पेंसरी में जमा करवाने का हुक्म दिया है। फैसले में कहा गया कि जुर्माना गरीब मरीजों के इलाज पर खर्च किया जाएगा। अदालत ने कहा कि अडयाला जेल में मुलाकातों का तरीकेकार इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहले ही तय कर चुकी है, ट्रायल कोर्ट मुलाकातों पर कोई मतजाद हुक्म जारी नहीं कर सकते। बानी पीटीआई GHQ हमला केस में जमानत पर हैं, जुडिशल तहवील में नहीं है। यह भी कहा गया कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पहले भी इसी नोट की 2 दरखास्तें दायर की गई, मुतल्लिका फोरम से रजू करने के बजाय दरखास्त गुजार अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। सख्त फैसला है और हो सकता है कोई इंटरटेन ना ही इस किस्म की दरखास्त होती हो, लेकिन साथ जुर्माना भी कर दिया गया है, एक तरह का ये लगता है ऐसे ही कि मैसेजिंग हो रही है। 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है जनाब, अगर आपको पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज खाने खाने हैं तो आप तशरीफ ले जाइए चाय खाना चाइनीज कुजीन। ये रिजवे में है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 है, और PC लाहौर की शेफ है, यहाँ 14 साल से ज्यादा से कम का तजर्बा है, और 100% हलाल है, फ्रेश और अथेंटिक फूड है, नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेज मसाला एट ऑल। तशरीफ ले जाइए, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बुकिंग कॉल 905-514-7877, 905-514-7877। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपको होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ।

0: ट्रेवल एंड टूर्स मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। आयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं। PIA के कंसोलिडेटर हैं और PIA टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं। बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट। उमरा और ज़ियारत की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
1: लीजर्स कॉस्मेटिक्स के वेयर हाउस सेल के चंद ही दिन बाकी हैं, 8, 9, 10 लास्ट वीकेंड है ये। आपको यहाँ अप टू 80% तक की सेविंग हो सकती है, जिसमें कॉस्मेटिक एंड स्किन ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड नेम परफ्यूम्स आपको मिल सकते हैं, डिज़ाइनर सनग्लासेस। इसके अलावा मदर्स डे के लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट आपको मिलेंगे। जाना है आपको 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में। lizacosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकट हॉल में सागा में। एवरीडे गोल्ड प्राइस जो है वो बजर कुरंदाजी दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मदर्स डे का प्रोग्राम है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, कपल के लिए प्रोग्राम्स हैं, बेशुमार एवरी डे इनाम घर के जरिए इनाम दिए जाएंगे। अपने बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हैं। स्टॉल बुकिंग और आप स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कर लीजिए शम्स रहमान साहब को 416-710-6777
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
1: Log on to eventsbyteamoftwo.com.
2: डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स अब मिसिसागा के बाद स्कारबरो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन 416-757-9999। दांतों की कोई भी बीमारी हो आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए। तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योरेंस न रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मिसिसागा लोकेशन 1110 बलूर स्ट्रीट ईस्ट बलूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 905-232-5678.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, इट्स 9058280009। यू लॉग इन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राबता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 9057831922। इट्स 9057831922। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
4: जी हाँ, 416-710-6777 नंबर है जहां आप स्टॉल ब्रोकिंग, स्पॉन्सरशिप या मजीद मालूमात के लिए कॉल कर सकते हैं। 23, 24, 25 और 26 मई को इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल होने जा रहा है कैपिटल बैंकट हॉल में सागा में। कैपिटल बैंकट हॉल ईद मेलों की वजह से मशहूर है। एवरी डे यहाँ पे प्राइजेज हैं, गोल्ड के प्राइजेज हैं और भी बहुत कुछ है। ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट है। शम्स रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल उन्हीं से लेंगे। शम्स भाई, सलाम अलैकुम।
5: जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
4: बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। बताइए कैसी तैयारियाँ हैं, क्या कुछ होने जा रहा है इस इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
5: बस जी, तैयारियाँ बहुत ज्यादा है। चारों दिन बड़े शोज हमने रखे हैं
4: जी,
5: और बस अब हमारा मैसेज है वेंडर्स के लिए कि जो लोग अपने पास स्टॉक घर में रख के बैठे हैं, कोई कपड़े वाला है, कोई जेवर वाला है, इसी तरह किसी के पास कोई ग्रोसरी सॉलिड फूड आइटम्स पड़े हुए हैं, अनकुक्ड मसाले हैं किसी के पास, तो ये सारे लोग आके हमारे इस ईद मेले में शमूलियत कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो स्टॉल की प्राइस हमने बड़ी अट्रैक्टिव रखी हुई है, इस वक्त अर्ली बर्ड चल रहा है, तो हमसे रब्ता करें। और आपका कोई भी ब्रांड है आप आइए इसमें मार्केट कीजिए। 8,000 से 10,000 लोग इसमें होंगे, विजिट करेंगे, तो एक जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। चाहे आप इंश्योरेंस बेचते हैं, चाहे आपका मॉर्गेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, यहाँ से आपको गारंटीड लीड्स मिलेंगी। और जब आप हमारे साथ साइन अप करते हैं तो हम आपको टीवी स्टूडियो में ले जाके 360 टीवी में आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे और हम उसको वायरल करेंगे। बाय द टाइम ईद मेला आएगा आप हर जगह मशहूर होंगे और लोग आपसे आके मिलेंगे, कि आप कैपिटल बैंक्वेट हॉल में कहाँ पर हैं।
4: 416-710-6777 416-710-6777 पे कॉल कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा इनाम घर इनाम देने की वैसे मशहूर हैं और यहाँ भी आप इनाम घर के इनामात भी होंगे और बाकी इनामात भी होंगे, उसकी कुछ तफसील बताइए और प्रोग्राम्स कैसे होंगे चारों दिन।
5: जी बिल्कुल, चारों दिन हमने बड़े शोज रखे हुए हैं, तो जो भी नाजरीन जो भी सामईन सुन रहे हैं जो इनाम घर में आते रहते हैं वो सारे एक्साइटेड हैं। चार दिन हैं और चार शोज हैं। पहले दिन हमारा शो है फैशन शो है, उस फैशन शो में भी जो मॉडल विन करेगी, जो कोई मॉडल इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं अभी हमसे मेल फीमेल मॉडल दोनों राब्ता करें, जो जीतेगा उसी दिन अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से उनको गोल्ड का प्राइस दिया जाएगा। दूसरे दिन हमारा सिंगिंग का कम्पिटिशन है, जो सिंगर्स हैं हमसे रابطہ कर लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, जो सिंगर भी जीतेगा उसी रात को अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस मिलेगा। फिर तीसरे दिन यानी के तीसरा दिन आ जाता है मंडे का, मंडे वाले दिन हमारा फैमिलीज का शो है, तो फैमिलीज का शो और जो मदर्स डे के हिसाब से और जो सीनियर्स हैं वो सारे आए तो हम उनके दरमियान भी एक छोटा सा फनी कंपटीशन करवा के गोल्ड का प्राइस उस दिन हम सीनियर मदर या सीनियर फादर को मिलेगा।
4: ठीक।
5: और आखिरी दिन जो है वो हमारा मिक्स है, सारी फैमिलीज हर जेंडर के लोग हर एज के लोग आएंगे और उसके लिए स्पेशल शाजिया हुसैन डिजाइन कर रही है एक शो जो टोरंटो 360 की होस्ट भी है, तो

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी और अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 224 का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में रابطے کے نمبر 416-593-0003 ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں ٹورانٹو اور اس کے

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राह बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
6: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
7: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
4: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
8: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands.

0: Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca.
2: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677

0: इट वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छी थी. इस गाने में बड़ी मुश्किल मुश्किल मींडे थी, बीच में जगह थी, वो चीज भी आपने अच्छी निभाई, और फिर जो उसमें वेस्टर्न बिट्स थे वो भी आपने बहुत अच्छी तरह से किया. देन ऑफ कोर्स टुडे यू आर आल्सो ऑन अनदर, लाइक यू नो, इन अनदर एवटार, यू आर वेरी, यू नो, फ्रॉम वेरी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट टाइम, एंड beautiful, enjoyable performance. Thank you so much for it.
1: Thank
0: it was
1: so
0: wonderful. Thank you
1: so much.

0: Keep watching Toronto 360 TV with Cyber Gaya.
1: Assalamu alaikum nazreen, main is waqt Toronto 360 ki janib se Irfan Baba Malik aapki khidmat mein hazir hu aur shahar ka ek bada mashhoor business link jisko aap kehte hain biz link jo businesses ko jodta hai ye hone ja raha hai idhar ya bahut sare businesses aaye hain कम्युनिटी में ऐसी चीजें होनी चाहिए बिजनेसेस प्रमोट करने चाहिए और बिजनेस बढ़ने चाहिए जितने बिजनेस बढ़ेंगे हमारी कम्युनिटी उतनी ही मजबूत होगी और इस मजबूती की जामन है हमारी फाजिया जी और इन्होंने आज ये बिज लिंक के तहत ये पहली एक कॉन्फ्रेंस समझ लें एक एग्जीबिशन समझ लें या एक कम्युनिटी मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम बिजनेसेस का समझ लें वो किया है और हम आपको इसकी झलकियां वक्तन फक्तन दिखाते रहेंगे। मैं इस वक्त अपने कुलीग साबर गाया साहब के साथ हूं और मैं फौजिया जी से बात करूंगा। फौजिया जी कॉन्ग्रेचुलेशंस,
2: थैंक यू,
1: इतना जबरदस्त शो करने का, इतनी जबरदस्त एफर्ट करने का, सोल्ड आउट फुली बुक्ड शो है आपका और बहुत सारे हम बैनर देख रहे हैं जैसे कि नाजरीन भी देख रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे?
2: थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बिजलिंक कनेक्टिंग बिजनेस मेरी एक ऐसी कोशिश है जिसमें मैंने ये चाहा था कि टोरंटो के टॉप नॉच बिजनेसेस का आपस में मर्ज हो, ना सिर्फ ये कि हम सब खुद अकेले ग्रो करें बल्कि एक दूसरे के बिजनेसेस को भी ग्रो करने में सपोर्ट करें। और आज वो दिन आ चुका है यानी बिजलिंक 2026 यानी अप्रैल 18 को इस वक्त हम मौजूद हैं अपोलो कन्वेंशन सेंटर में और वक्फे वक्फे से हम आपको अपडेट्स करते जाएंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। यहाँ पे हर किस्म का बिजनेस आपको मिलेगा। बिजलिंक इज बेसिकली वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर नीड्स। थैंक यू,
1: थैंक यू वेरी मच। फौजिया जी ये बताइएगा कि आप तो बड़ी कामयाब मॉर्गेज ब्रोकर हैं, ये इतने बिजनेस जो आप इकट्ठे कर रही हैं और ये जो लिंक कर रही हैं इसमें चूंकि आप बिजलिंक की सीईओ भी हैं, आप इनकी ओनर भी हैं, तो इससे आपको क्या क्या फीलिंग मिल रही है, क्या सक्सेस मिल रही है, क्या आपका क्या सेटिस्फेक्शन?
2: जी बहुत प्यारा सवाल है, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। मकसद बिल्कुल वही है कि ना सिर्फ खुद ग्रो करना है बल्कि अपने कम्युनिटी में, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को खास तौर पर आगे लेकर आना मेरा मकसद था। हमारे दरमियान आज की शाम आपको कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर्स मिलेंगे जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हम आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएंगे और मकसद एग्जैक्टली वही है कि ना सिर्फ ये कि हम खुद अकेले ग्रो करें बल्कि मिलके अपनी कम्युनिटी को कैनेडियन बेस्ड कम्युनिटी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाएं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया फजल जी, आप बहुत मसरूफ हैं टोरंटो 360 को टाइम देने का शुक्रिया और इंशाल्लाह फिर साथ साथ चलते रहेंगे और फिर आखिर में आके फिर आपको जरा आपसे पूछेंगे रात को कि ये कैसा शो रहा। नाजरीन आप हमारे साथ रहें, हम आपको झलकियां दिखाते रहेंगे, आपसे लोगों की बात कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान बाबा मलिक टोरंटो 360 की जानिब से, साबर गाया अपने उस्ताद मोहतरम के साथ, थैंक यू। जनाब इस वक्त हम डॉक्टर शाहिना किशोर जी के साथ मौजूद हैं, शहर की इंतहाई पढ़ी लिखी खातून, बल्कि लोगों को पढ़ाती हैं लिखाती हैं। मैंने पढ़ी लिखी का लफ्ज तो एक तकल्फन इस्तेमाल किया है, ये पढ़ाने वालों में से लिखाने वालों में से हैं। तो डॉक्टर साहब ये आप बिजलिंक की कॉन्फ्रेंस पे आप आई हैं तो आपके क्या तासरात हैं?
3: जी सबसे पहले तो मैं आपकी थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। ये बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम फजिया फसी साहिबा ने अरेंज किया है जिसमें तमाम बिजनेस कम्युनिटी को ये मौका दिया गया है कि वो अपने आइडियाज शेयर करें और अपने बिजनेस को प्रमोट करें और एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करें और कोऑर्डिनेशन के साथ चलें ताकि हमें एक ही जगह पे बहुत से जब बिजनेसमैन मिल जाते हैं, बिजनेस वुमेन मिल जाती हैं, तो हम शेयर करके हम एक ही जगह पे बहुत सी जो फील्ड है उसको कवर कर रहे हैं। तो माई हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर एंड थैंक यू।
1: थैंक यू, थैंक यू। नाजरीन इस वक्त हम चौधरी निसार साहब के साथ मौजूद हैं और जो कि मीडिया में एक खास मुकाम रखते हैं, शहर के पढ़ाई लिखाई में खास मुकाम रखते हैं और बड़े बड़े मालूमती प्रोग्राम, बड़े मुतहरक कम्युनिटी लीडर भी हैं। चौधरी साहब आप तशरीफ लाए हैं बिजलिंक पे, आप कुछ इसके बारे में भी बताएं और अपने तासरात भी बताइए।
4: अरफान बाबा साहब ने जो कहा वो रिवर्स में इनके ऊपर अप्लाई होता है। माशाल्लाह ये बहुत एक कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत है। ٹورانٹو 360 کا بہت شکریہ, سابر گایا صاحب کا کیمرہ مین ہے اس وقت, بہت شکریہ سب کا. جہاں تک آج کے اس ایونٹس کے حوالے سے ہے کہ بز لنک جو کہ فوزیہ فصیح صاحبہ اور ایک پوری ٹیم نے یہ ایک یہاں پہ بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے اور ضرورت ہے اس امر کی کہ لوگوں کو ہمیشہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا جائے جتنے میکسیمم لوگ ہو سکتے ہیں. اور یہ ایک قسم کی آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک ضرورت بھی تھی سٹی کے اندر. بہت کام اور بھی ہو رہے ہیں, بہت زیادہ آرگنائزیشن بھی کر رہی ہیں. آج ان کا یہ پہلا ایونٹ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت ڈفرینٹ قسم کے ورسٹائل لوگ آئے ہوئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آگے یہ لوگ آپس میں نیٹ ورکنگ کر کے کمیونٹی کو فائدہ دیں گے اور آگے بڑھیں گے. جیسے میرا اپنا ہے تو میں صابر گایا صاحب اور ملک صاحب آپ کی وساطت سے اور ٹورانٹو 360 کے حوالے سے المصطفیٰ کینیڈا ایک چیریٹی ورک میں میں انوالو ہوں. وہ میرا چیریٹی ورک ہے, والنٹیئر ہے. میرا خود اپنا بزنس جو ہے ای کامرس کا ہے. میں بزنس کوچ کرتا ہوں, لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہوں. کسی کا ڈیڈ بزنس ہو رہا ہو اس کو انالیسس اس کے انالائز کر کے اس کو کوچنگ کر کے اس کو بیچنے تک ہیلپ کرتا ہوں. مینلی میرا کمرشل کا کام ہے اور بزنسز کا کام ہے. ای کامرس میں کسی نے کوئی ٹریننگ لینی ہو وہ میرے سے لے سکتا ہے. میرے نیٹورک امریکہ کینیڈا دونوں کنٹریز میں ہیں, ورلڈ وائڈ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ میرے امپلائیز ہیں.
1: بہت شکریہ چاری صاحب.

0: बिजनेसेस को भी प्रमोट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मलिक साहब आपके साथ मिलके हमेशा खुशी होती है, आप हमारी कम्युनिटी की जान है, हमारे प्यारे दोस्त हैं, हमेशा बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ। और आप अपने आप को जब दूसरे को इज्जत देते हैं तो अल्लाह ताला आपकी इज्जत को हमेशा ऊपर लेके जाता है, ये एक हमने देखा है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके अल्फाज का, यही अल्फाज में आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं एक बड़ा आजिज आदमी। बहुत शुक्रिया।

अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू एंड गुड इवनिंग. इट्स एब्सोल्युटली माय ट्रू ऑनर एंड प्लेजर टू स्टार्ट दिस वंडरफुल इवनिंग. सो वेलकम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुनाइट फॉर दिस नेटवर्क डिनर होस्टेड बाय बिजलिंग. इट्स ए प्लेजर to have such a wonderful group of professional gathered here. This evening is all about building meaningful conversation, sharing ideas, enjoying great conversation in a relaxed setting. We hope that you all take this opportunity to meet new people, strengthen existing relationship and make the most of the time together.

0: मजा तो आ रहा है, लेकिन मुझे ये बता ये कहां से आ रहा है?
1: बेबे तुझे कितनी बार कहा है, आम से मतलब रखा कर, पेड़ से नहीं।
0: देख पुत्र, गलत तरीके से सही काम भी करेगा ना तो आखिर में वो गलती होगा।
1: बेबे तू सीरियस हो जाती है, छोड़ ना। ये साग चक नोगिर्स कैसा है?
0: माँ की बात सुन ले, ये काम छोड़ दे, नेरा नेरे को रोशन नहीं कर सकता पुत्र।
1: वाह बेबे सही कहती है, नेरा नेरे को रोशन नहीं कर सकता, लेकिन यूपीएस तो कर सकता है ना, और यूपीएस आता है पैसों से। अब खरीद लिया होता तो रोज यहाँ डार्क रूम ना खेल रहे होते हम ना। देख बेबे मैं तुझे एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, तुझे नहीं समझ आती क्या? भला चीजों से सुख आता है और चीजें आती हैं पैसों से, है? सुन मेरी बात, मैं तुझे सुखी देखना चाहता हूँ माँ, तू क्यों नहीं समझती?
0: सुख पैसों से नहीं पुत्र, प्यार से आता है।
1: ये सब किताबी बातें हैं माँ, तुझे लखवरी समझाया, सारा मूड खराब कर देती।
0: साग तो चखा।
1: Enjoy the life, कर।
0: उस्ताद अच्छा है तेरा, कौन है?
1: एक हॉट सी आंटी है सुरैया नाम की।
0: कितना बुरा।
1: तू है बेबे, तू है मेरा सब कुछ, तू है, मैं तेरे लिए तो सब कुछ करता हूँ।
2: हाँ सारा, और इस पर पक्का वाला, डैड को बहुत गुस्सा आया था। बोले
3: आनिया हद से बाहर निकलती जा रही है।
4: जा रही नहीं, जा चुकी है।
2: फिर क्या? वही सोफी,
4: आज फिर उस एंडी के चक्कर में वो वहाँ पहुंची हुई थी। तुम्हें बार बार कह रही हूँ उसकी शादी करवा दो, बात हाथ से निकल गई तो बहुत पछताओगे।
3: अरे श्योर वो लड़का आनिया के लिए ठीक रहेगा?
5: बिलाल वो तो जवानी में गंजा हो गया यार।
4: और कहाँ कहाँ जा सकता है तुम्हारा बिजनेस बाजवा के साथ, कभी सोचा है तुमने?
2: मुझसे तब सोचा भी नहीं जा रहा, लेकिन ये कंफर्म है मैं मर जाऊंगी शादी नहीं करूंगी।
5: सुनो मेरे पास एक आइडिया
3: है। आइडिया अच्छा,
2: मगर ये करेंगे कैसे?
4: चट मंगनी पट ब्याह।
3: कब?
5: नेक्स्ट वीक। सोचो तुम
3: आनिया शादी करके चली जाएगी?
2: यस यस यस।
3: लेकिन सुनो बटका क्या करे, मेरा इतना पुराना यार है, वो भी तो अपने बेटे के लिए आस लगाए बैठा है ना।
4: तुम्हें नहीं लगता कि वक्त आ गया बात क्लियर करने का? तुम कल स्काइप पर उससे बात कर रहे हो ना, तो ये बात भी कर दो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे?
3: हाँ, यार, करने तो पड़ेंगे।
6: ओ खालदा जी, वो ये चलता नहीं पिया, इतनी गैस ते नहीं मुक गई?
7: बिस्मिल्ला।
6: ओए, वो अड्डा वड्डा मुंह मेरा फिट है मुंह।
7: तो फिर मेरा ही हौसला है ना, सारी जिंदगी गुजारा की है इतने बड़े मुंह के साथ।
6: ओ अच्छा ना, ओए ओ तू सूट पा के आ गया, तू की प्यो दे वलीमे ते चले।
8: अब्बा जी रिश्ता मांगना है, होकी नहीं खेलनी।
7: ओए मां सदके मां दा परोला।
6: ओए ओ बशीरे, हेलो बशीरे।
9: बंजो प्लीज
6: ले, ओ मेरे लिए तो ये बशीरा ही है ना। यार वेख ओ टाइम किथे चला गया है।
3: बस बट यही तो कह रहा हूँ तुझे,
9: अब हमें भी अपने बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए।
6: अब बिजनेस को छोड़ यार, आज मैंने ना तेरे साथ भाइयों वाली बात करनी है, फैमिली वाली बात।
3: हाँ मेरा ख्याल है टाइम आ गया, अब पहले तू बोल।
6: यार देखना आनिया ती जवान हो गई है, है? और ये मेरा बिल्लू पुत्र भी।
10: हेलो अंकल।
6: चल उन पीछे हट। हाँ तो मैं ये कह रहा था हाँ कि बच्चों की ना शादी का टाइम आ गया है।
11: हाँ जी हाँ जी।
3: वो सही कह रहा है यार,

0: तू, मैं भी तुझसे यही कहने वाला था कि
1: ओ देखा ना और बगैर बताए समझ गया मेरा यार। और हम दोनों ना बचपन से एक ही जैसा सोचते हैं। अच्छा बता फिर तूने क्या सोचा है?
0: बट मैंने ये सोचा है कि मैं आनिया की शादी कर दूं।
1: बल्ले बल्ले बल्ले, चल फिर मुंह मीठा कर, आकर आ।
2: मगर बट एक मसला है, तूने कहा था ना
0: कि जिंदगी में कोई भी मसला हो तो तुझे बताऊं।
1: हाँ, वो मसला क्या है
0: यार? वो कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं जिससे मुझे बड़ा नुकसान हो सकता है। वो बाजवा है ना, अपना बाजवा।
1: आओ भिनी नग वाला।
0: हाँ वही, वो कह रहा था कि वो शेयर्स भी खरीद लेगा और मदद भी कर देगा।
1: और वो पॉइंट पे आई यार बशीरे।
0: और वो बाजवा ने आनिया का हाथ मांगा अपने बेटे बिलाल के लिए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो तू मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि तू इनकार कैसे करे, है ना?
3: हाँ जी, हाँ जी।
0: नहीं यार, आनिया की बात पक्की करनी पड़ गई है।
1: ओ क्या मतलब है बात पक्की करनी पड़ गई है?
0: मतलब ये कि आनिया की शादी तय हो रही है।
1: क्या आनिया की शादी तय हो रही है? ओए ओए, तूने मुझसे पूछना तो दूर, बताया भी नहीं है।
0: मैं बताने वाला था तुझे यार।
1: ओ केड़ा यार, बताने वाला था, अब बताया
2: तो नहीं ना, पूछा तो नहीं ना।
1: ओ बशीरे, मैंने सारी जिंदगी अगर कोई मक्खी भी मारी है ना तो तेरे से पूछ के मारी है। और तूने बेटी का रिश्ता तय कर दिया
2: और मुझसे पूछा भी नहीं,
1: बताया भी नहीं है जी।
3: हाँ जी, हाँ जी।
2: बट इमोशनल क्यों हो रहा है?
1: इमोशन है अंदर, तो इमोशनल हो रहा हूँ ना, और तेरे में तो लगता कोई इमोशन ही नहीं रह गए।
0: ओ बट रिलैक्स कर, मेरी बात तो सुन।
1: नहीं सुनना मुझे, खत्म हो गई सारी बातें घोड़े के मुंह वाले।
0: अरे बट सिचुएशन को समझ।
1: ओए मैं समझ का बंदा नहीं हूँ बांसो, दिल का आदमी हूँ, दिल का। ओए उस वक्त मैंने कुछ सोचा था
2: जब मैंने पेट काट काट कर अपने बच्चों का तुझे पैसे दिए थे बाहर जाने के लिए।
1: ओए उस वक्त मैंने कुछ समझा था, और जब शौकी के बंदे तुझे कुट चाड़ने आए थे हैं? और मैं सीना तान के सामने खड़ा हो गया था, डंडे खाए थे, कसुन खाए थे मैंने, चंडे खाई थी। ओए उस वक्त मैंने कुछ समझा था।
0: और बट
1: बट
2: ओए अब मैं
1: समझ गया हूँ कि तेरे लिए मेरी दोस्ती रिश्ता नहीं था, बिजनेस था, बिजनेस।
0: देख बट, तू अपनी लिमिट से बाहर जा रहा है।
1: ओए अभी तूने मेरी लिमिट देखी कहाँ है? बट इज अनलिमिटेड। अब तू करके दिखा आनिया की शादी, और मैं देखता हूँ कैसे
2: करता है तू ये शादी।
0: क्या? हाँ क्या बोला तूने? शादी करके दिखाऊं आनिया की?
1: आहो
0: कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर अ मिनट?
4: श्योर,
0: थैंक यू। ओए कंजरा, तू मैनू रोकेगा? तू मैनू बुलाया और तेरी औकात की है?
2: तेरा बिजनेस ते मैं सेट करके देता है।
0: मुल्तान रोड ते तू दही पल्ले लाना से अपने पुत्र दा मुंह वेखे 200 कनाल ते
2: पहले मेरी बेटी ने
0: शादी करेगा। एथो को सुन मारेगा ना, शालमी जाके टिकेगा।
1: मैं तेरी तेरी में ऐसी की तैसी बांध कर फोड़ कर दूं तेरी
0: लत मारेगा। मैं तेनू कमीने है तू, मैनू जानना नहीं
1: है। डरा तनु तसा मैं,
0: तू मैं कौन?
1: ओए चल तेरी में।
0: ओ बट तू जो पुट सकना ना पुट ले।
1: ओए ए तड़ी है।
0: ओ तड़ी समझ।
1: ओए मिला हाथ फेर।
0: ओए ले,
1: बंद करो इस अमरीकी वाले नू।
0: लूसी, कैन यू गेट मी ग्रीन टी विद हनी एंड लेमन एंड गेट मी बाजवा ऑन द लाइन।
4: डब्ज़
0: रिलैक्स बशीरे, रिलैक्स।
5: अब्बा जी, मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, पहली बार एक चीज मांगी थी, वो भी आप लोग मुझे नहीं लेके दे सके। बर्ड मेरा मजाक उड़ रहा है।
3: आपसे कह रही थी ना, ये जो आपका दोस्त है ना, ये सिर्फ पैसे का पेड़ है और कुछ नहीं।
1: और तू चुप क्या रे? हर मैंने बोलती जल्दी बचिया। ओए अब मैं क्या करूं, आप चला जाऊं उसे उठाने? ओए पागल तो नहीं हो गया?
3: हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। रोज बंदे उठाते हो, आज भी नूह को उठा लोगे तो क्या हो जाएगा?
1: ओए तुसी दोवे पागल हो गए, नाल मनु भी पागल कर दोगे।
3: क्यों, मुझे भी तो उठा के लाए थे ना।
1: ओए तुम क्या चाहती हो? ओए अब इस सुबह में मैं खुद चला जाऊँ उसे उठाने?
3: और मैं कब कह रही हूँ कि आप खुद जाए?
1: और तो फिर कौन जाएगा उसे उठाने?
4: ले जी, आपका उल्लू आ गया।
3: हाँ जी, हाँ जी,
1: हाँ जी, हाँ जी,
3: हाँ जी,
4: हाँ जी। नहीं नहीं बड़साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता, आपको पता है यार।
3: मैं ये शादी नहीं कर सकती डैड, एंड यू नो इट।
1: और क्यों नहीं कर सकता? और तू क्या पहली दफा किसी को उठा रहा है? अभी तूने लड्डू उठाया है जी?
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: बड़साहब, लड्डू में और लड़की में बड़ा फर्क होता है। मैंने आज तक ना लड़की उठाई है और ना मैं उठाऊंगा।
3: उठा के थोड़ी लाने, घर लेके आने हैं जी।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: मेरे और तुम्हारी माँ के ख्याल में इससे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता।
1: ओ शहजादे, वो हमारी बेटी है। बिल्लू बट ते आनिया इज मेड फॉर ईच अदर।
3: क्या?
1: ओ शहजादे, तू पैसे से मतलब रख, 5 लाख ले ले और तेरे सारे ख्वाब वन गो में पूरे हो जाएंगे।
6: सोच ले पेड़।
7: तो इसका मतलब आपके लिए पैसे ही सब कुछ है?
0: हाउ कैन यू से दिस? तुम मेरी बेटी हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है, और मैं हाँ कर चुका हूँ।
6: अब ये हमारी फैमिली रेपुटेशन का मामला है।
1: ठीक है, और ये हमारे परोले की इज्जत और बेइज्जती का मसला है।
6: हाँ जी।
4: बट साहब, 5 लाख? 5 लाख किस काम के लिए? थोड़े कम है, सरा सोचने दे।
1: और तीफे, ये सोचने का टाइम नहीं है, चल 10 लाख ले और डन कर।
7: डन
0: डन
4: डन डन डन।
7: मैं कितनी पागल हूँ जो समझ ही नहीं सकी डैड जो आप मेरे लिए करना चाह रहे हैं। लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ। सॉरी फॉर एवरीथिंग।
0: दैट्स लाइक माय गर्ल, I'm proud of you. It's time to celebrate.
1: Oh, Shahzade, aur teri yahi baatein na mera dil jeet leti hai. Oye, Tony ko phone laga. Parso 6 baje ki flight confirm karwa. Aur main

0: to believe me this time. 2 days max. Tension not. मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहा हरामखोर? No. I'm talking to another person. He's with me. Yeah. Okay, listen, bro. You're not my client. You're like my bro. Bro.
1: ज़रूरत पड़ने पे तो गधे को बाप बनाना ही पड़ता है.
0: क्या? तुझे उर्दू आती है? तू पाकिस्तान से? ओके, अभी जरा मैं बिजी हूँ, एक जगह फंसा हुआ हूँ, तुझे कॉल बैक करता हूँ. है? अबे फिर भर गया, फिर भर गया.
2: गोरी बच्ची काला दिल.
3: आइए. कंग्रेचुलेशंस, प्लेन हैज लैंडेड एंड योर नेम
0: प्लीज.
3: My friend is coming to Poland for the first time. His name is FIFA. We are very good and very close friends. We are like this. We are like brothers. We are like bros. WhatsApp.
0: Please.
3: Keep. You speak English? Shupal Fonse. The movie is Popolsko. Urdu aati hai? Kam bolti ho? Achha, shaadi ke baad tente nahi karogi. Jana nahi.
0: Hey.
3: Ma'am, add me on Facebook. My ID is tony.sharp. Dot as in heart.
4: Heart as in garam. गरम गरम टोनी ले लो, टींडे ले लो, मुल्क छोड़ आए लेकिन ठरक बना नहीं गया.
3: ब्रो ब्रो ब्रो ब्रो, ब्रो।
4: पाईजान पाईजान सेट है.
1: वो नहीं लगा था कि तू आ गया.
4: मैंने तो नहीं था. यार भूख बड़ी लगी है, चले जहाज में सिर्फ खजूरें ही मिली है.
1: चला मैं तुझे पोलैंड की बहुत ही मशहूर हवा खिलाता.
4: अच्छा चलो यार, फिर पीने को क्या मिलता है?
1: मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन टूटी से मुंह लगा के पीना पड़ेगा.

0: एक सेकंड, वो सब ठीक है, बट बिल्लू बट आनिया से शादी करेगा?
1: हाँ। टोनी, टोनी सुन, एक पहले पहले सुहाग रात वाले दिन जब बिल्लू बट अपने कमरे में जाएगा तो कमरे में पहले बट अंदर आएगा कि उसका पट अंदर आएगा?
0: बिल्लू का पट।
1: तो सुन, मुझे बता प्लान क्या है।
0: प्लान ये है, ऐसा सॉलिड प्लान बनाया है कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। हाँ, और से सुन, बॉन्जो एक
1: थैंक यू
0: मेंशन नॉट मेंशन में रहता है, जो चारों तरफ से गार्ड्स, सिक्योरिटी वायर्स, लेजर्स और कुत्तों से घिरा हुआ है। आनिया उस मेंशन के अंदर रहती है। आज तक जिसने भी उस मेंशन में बगैर इजाजत घुसने की कोशिश की है वो जिंदा वापस नहीं आया, और तू भी नहीं आएगा।
1: मैं भी नहीं आऊंगा, क्या कह रहा है?
0: जब जाएगा ही नहीं तो आएगा कैसे? शाणे,
1: नहीं समझा।
0: मतलब तू अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर आएगी।
1: ओ।
0: हर रोज ठीक 11 बजे आनिया अपने गार्ड्स के साथ जिम जाती है। गार्ड्स बाहर वेट करते हैं और आनिया अंदर जाके ठीक 11:05 पर अपने वार्म अप सेट स्टार्ट करती है, और तू उधर उसका ट्रेनर बनकर एंट्री मारेगा।
1: टोनी, गेटअप चेंज नहीं कर सकते?
0: नहीं।
1: ओके।
0: वार्म अप खत्म होते ही तू उसका पहला स्क्वाड सेट करवाएगा। अ 1, अ 2, अ 3, अ 34।
1: टोनी, क्या सोच रहा है?
0: 30
1: कितनी स्क्वाटें करानी है?
0: अ 36।
1: टोनी,
0: टोनी,
1: हाँ,
0: टोनी, हाँ, स्क्वाट लगवाने के बाद तू उसके पानी में बेहोशी की दवाई मिला देना।
1: ये दवाई है?
0: नहीं, ये तो फॉर एग्जांपल है। और फिर वो पानी पीते ही बेहोश हो जाएगी और सीधी तेरी बाहों में।
1: ना करें।
0: हाँ करें। और फिर आएगी टोनी की एंट्री, फायर अलार्म बजाने के लिए, जिसके नतीजे में पूरे जिम में भगदड़ मच जाएगी। और मौके का फायदा उठा के तू जल्दी से आनिया को लेके पिछले दरवाजे से एली में आएगा, और वहां पे तेरा भाई जाली कागजात लेके तेरा इंतजार कर रहा होगा।
1: मेरा भाई?
0: मैं तेरा भाई। और वो जाली कागजात लेके तू सीधा लाहौर।
1: ना कर।
0: हाँ कर।
1: टोनी, तू इंसान नहीं है, तू एक खजाना है। दिल कर रहा है तुझे जमीन में गाड़ दूं।
0: मैं तुझे हवाओं में उड़ा रहा हूँ, तू मुझे जमीन में गाड़।
1: अरे मजाक कर रहा था यार, तो तू माइंड ही कर रहा है। चल अगली ड्रिंक मेरी तरफ से। लोसी, दो ठहरे, बेले ने कर दे।

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600. Or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: रोनी, तुझे पता है देसी और गोरों में क्या फर्क होता है? कि देसियों से शराब हैंडल ही नहीं हो।
1: उल्टी सीधी
0: मर गया तो
1: मैं लम्बों कर दे सीधे गाने में गाता
0: हूँ। टोनी, हैंडल हो गई है।

0: टोनी बयान क्यों नहीं कर देते यार इधर भी शराब को?
1: यही चीजें मैं अपने मुल्क की मिस करता हूँ।
0: क्या शराब?
1: नहीं बैन।
0: ओ बैन।
1: यही तो।
0: टोनी यार मुझे लगता है क्लास खत्म हो गई, सारी मेमे निकल आई है, वो नहीं निकली यार।
2: कहीं उसके माँ बाप ने उसे बैन तो नहीं कर दिया?
0: आप तो मुझे टेंशन दे रहे।
1: टेंशन ना ले, मैं अभी चेक करके आता हूँ।
0: टोनी
1: हाँ
0: यार

0: जी।
1: लो जी, मैंने पता करा लिया कि वो क्यों नहीं आई है।
0: अच्छा, क्यों नहीं आई?
1: आज उसकी शादी है।
2: क्या बकवास कर रहा है टोनी? आज उसकी शादी है?
1: तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है साले? अगर तेरी शादी होगी तो तू उस दिन जिम में स्क्वाट मारने थोड़ी आएगा?
2: स्क्वाटों की ठरकी, जो पता तू क्या कह रहे? अब क्या होगा?
1: क्या होगा? उसकी शादी होगी, वो हनीमून पे जाएगी, उसके बच्चे होंगे।
2: ओ कुत्ते के बच्चे?
1: कुत्ते के बच्चे नहीं, इंसान के बच्चे।
2: शुरू में बर्बाद किया, क्या प्लान था तेरा? प्लान था तेरे पेड़े मुंह पे।
1: ओ हो जाता है तीफे, थूके तो ना फेंक।
3: 10 लाख रुपए मेरे वार्ते ने।
0: बट को क्या बोलूंगा मैं?
1: ओ तीफे, तू तो ऐसे परेशान हो रहा जैसे वो तेरी मशूक थी।
4: हेलो तीफे,
5: 28
4: कमर। हाउ इज द यूरोप?
5: पहुंचा 12।
4: व्हाट इज द अपडेट?
2: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बट साहब। बस सब अंडर कंट्रोल है, बस एक छोटा सा मसला है कि कोई चीज कंट्रोल में नहीं आ रही। ओना कुड़ी दी शादी अज ते असी जिम आए सन उन्हें चुकन, पर वो आई नहीं। टोनी ने दस्या है ते मैं कह रहा कि तुसी कहंदे हो तो घर फुल छड्डा वा।
6: मेरा मतलब है अच्छा लगता है ना तुहाडे पुराने तालुकात ते, चलो कोई गुलाब दा फुल हो जाए या कोई वाइट रोज़ टाइप दी मैं दे दन्ना।
4: तीफे ओए, अभी अंदर जा और उठा कर ले आओ उसे इधर, ये शादी नहीं हो सकती।
2: अब्बा जी,
4: अब गेंदे तुझे नहीं कह रहा मैं,
7: अब्बे को भी दूर ही पड़ते हैं।
8: तीफे, मेरी बात गौर से सुन, तूने मेरा प्यार देखा है, वार नहीं देखा। जो तू मेरी बेटी को उठाकर यहां नहीं पहुंचा तो तेरी मैं
9: सलाम पेश किया जाता है। अगला गीत आपके।
1: सब ठीक है ना? और टेंशन नहीं ला।
10: आई हैव अ गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज। गुड न्यूज इज कि मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि यहां मुझे हर कोई पहचानता है। And the bad news is कि तुम भी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई पहचानता नहीं।
11: और तू मुझे जानता नहीं टोनी, भाई ने जेम्स बॉन्ड से क्लासें ली हुई हैं। प्लान चेक कर मेरा।

0: एक्सक्यूज मी भाई, मैंने कहना था वेरी नाइस जैकेट, योर सैज
1: व्हाट
0: सैज योर्स।
2: ओह नो, द रोज इज ऑन द लेफ्ट साइड, या एक्जेक्टली, एंड द ट्यूलिप ऑन द राइट साइड। आई टोल्ड यू दिस बिफोर, व्हाट आर यू गाइस डूइंग?
3: यस मिस्टर बाजवा, इट्स अ बिग डे फॉर बोथ ऑफ अस। अब से चंद घंटों के बाद हमारी पार्टनरशिप लाइफ पार्टनरशिप में बदल जाएगी। सी यू सून। वेटर।
0: यस सर।
3: कम या
0: सर,
3: क्या सर्व कर रहे हो?
0: सर डबल रोटी है, अंडे हैं, स्ट्रॉबेरी भी है, वेरी टेस्टी सर।

0: कैसी लग रही हूँ मैं?
1: ब्यूटीफुल। वाह।
0: डैड,
1: आई एम सो प्राउड ऑफ यू आन्या। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो कितना।
0: ओह डैड, वो नहीं है तो क्या हुआ? आप तो हैं, लेकिन अब से आप भी नहीं होंगे। I'm so gonna miss you, Dad.
1: कैसी बातें करती हो? जहां तुम वहां मैं।
0: Of course, Dad. Bye.

0: Gaudí tú.
1: मल मारे में
0: अलमारी में क्या कर रहे थे? पहले इतना लेट हो गया, जल्दी करो, क्या प्लान है?
1: प्लान?
0: हाँ प्लान, वो ही प्लान जो करने आए हो।
1: क्या करने आया हूँ?
0: अब ये भी मैं बताऊं? ओह नाइस, क्लोरोफॉर्म, किडनैपिंग दिखाना चाहते हो? वेरी गुड वेरी गुड, आई लाइक दिस प्लान, सुपर। चलो जल्दी करो बेहोश। हाँ टाइम नहीं है, इतना तो दुल्हने भी नहीं शर्माती कि भी मुझे करना पड़ेगा। एक मजे की बात बता, सुन सुना, जब कोई ऐसा करता है ना तो फौरन से बेहोश हो जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो
2: आनिया, तुम कौन हो?
1: मैं आयरन मैन। कुछ इस्त्री करवाना चाहिए आपने? कोई सलवार, कोई शॉल, कोई कमीज, कोई शमीज?
2: आनिया कहाँ है?
1: आनिया महल बीबी इधर ही थी, बाहर गई होंगी, उनकी शादी है नहीं आज।
2: वेट, तुमने
3: अभी तक कपड़े इस्त्री नहीं किए? कमांड कमांड, जल्दी करो बॉय एंड मैम। ओ माय गॉड, आई बीन लुकिंग ऑल ओवर द हाउस फॉर यू, कैन आई बोरो यू फॉर अ मोमेंट प्लीज डार्लिंग?
2: हु आर यू?
3: आई एम द डिजाइनर, यू नो दीज फ्लावर्स, दे आर नॉट वर्किंग फॉर मी एट ऑल, यू नो द पर्पल इज सो आउट दीज डेज, देन एंड यू कैरी ऑन बॉय।
1: यस सर, यस सर।
3: ओ माय गॉड, आई लव योर नेल्स, आर दे रियल और दे आर लाइक यू?

0: Waiter.
1: सर,
0: क्या समझ रहे थे? ये छुपा कर ले जाओगे? निकालो बाहर। मुंह क्या देख रहे हो? बॉटल बाहर निकालो, एक पैक बना के दो और मैडम को मत बताना।
1: नहीं नहीं सर, अंतर बॉटल। सॉरी सर, सॉरी।
0: मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से।
1: जी सर।
2: बोंजो,
0: तुम्हारे लिए बनवाया।
2: सीरियसली, तुम्हें इसकी पड़ी है? आनिया अपने रूम में नहीं है।
0: अरे यहीं कहीं होगी ना।
2: मैं सब देख चुकी हूँ, शी इज नोवेयर।
0: आनिया, आनिया, ये क्या ड्यूटी दे रहे हो? हाँ, जूम करो। What place is this?
3: In front of the house, sir.
0: तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? Go and catch him. Go. Okay.

0: get away!
1: Close the gate!
2: So?
1: Close the gate!
0: Jaldi bhar!
3: Oh, ruk ja, Tim, ruk ja! Chalai na, chalai na, bhoot ko ka gerua! Bata aage, aage, aage! Ek second, bhoot chala nahi! Chalai yun na, chalai na, bhar vayega kya?
4: It's okay. हमने बौजों की बेटी उठा ली है.
5: तो नहीं इजी हो जाए. हमने क्यों उठा ली थी? अगली खुद उठने के लिए तैयार बैठी थी.
4: ये बात बौजों को पता है.
5: ख्याल तो नहीं.
4: अगर हम बच जाए तो मुझे उठा देना.

0: ये तो ना जन्नत लग रही है ना दोजख, यानी बच गए।
1: हुए हुए हुए हुए, क्या बचाया मैंने?
0: सस्ते जेम्स बॉन्ड, बचा लिया के बच्चे, तूने बचाया नहीं, तूने मरवा दिया है। उफ, बॉन्जो को हमारा पता लग गया, अब हमें लग पता जाएगा।
1: चार्ली चैपलिन, टोनी किधर जा रहे हैं?
0: ओ, दिल का बोझ हल्का करने के लिए झाड़ी तलाश कर रहा हूँ।
1: इस बोझ का क्या करना है?
0: ये बोझ तेरा प्लान था, तू उठा।
1: उसका प्लान था, तू समझ नहीं रहा। अगली तैयार बैठी थी भागने के लिए। मुझे तो पागल लगती है।
0: पागल?
1: हाँ पागल है,
0: पागल
1: यार। शक्ल सही पा धनी सा नहीं था पामा का रेसा। आप उड़ गई
2: तो तुम मुझे पागल कह रहे हो?
0: ये
1: नहीं, मैं आपको क्यों पागल कहूंगा?
2: बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
0: हैं?
2: पागल तो मैं हूँ, लेकिन तुम दोनों में कुछ कम नहीं हो। हाँ, क्या टाइमिंग थी तुम्हारी भाई।
1: भाई वाला मजाक नहीं।
2: मान गई तुम दोनों को भी, सारा को भी। वैसे ये लाल रुमाल वाले आइडिया किसका था?
1: लाल रुमाल?
2: अब डैड समझ रहे होंगे कि मैं किडनैप हो गई हूँ, और बाय द टाइम
1: समझा रही,
2: जब मैं ये ट्रिप खत्म कर चुकी होंगी तो लड़के वाले ये शादी खत्म कर चुके होंगे। सुपर सुपर। ये लो।
0: थैंक यू।
2: तो मैं अब चलती हूँ। थैंक यू सो मच ड्रीम डीलर्स। नहीं, वहां जाना था। बाय।
0: ओए होए,
1: ड्रीम डीलर्स?
0: ये हमें ड्रीम डीलर्स समझ रही है।
1: ये ड्रीम डीलर्स कौन है?
0: तुझे ड्रीम डीलर्स का नहीं पता?
1: नहीं, तुझे पता है?
0: गूगल कर लेते हैं।
1: कर, जल्दी कर। पता चला?
0: हाँ, अभी तो मैं लुमना को पोक कर रहा था फेसबुक पे, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया यार।
1: वो गई?
0: हाँ गई।
1: वो आनिया गई?
0: ये लड़कियां हमारे हाथ से चली क्यों जाती हैं?
3: अरे ऐसा भी नहीं है शहजादे, कुछ आ भी जाती हैं, चेक कर।
1: मुझे झप्पी देने आ रही है।
3: ओए झप्पी नहीं,

0: क्या कर रहा है यार, मर पाएगा, निकल निकल।
1: किधर जाना है?
0: मैं चौड़ी सड़क से जाता हूँ, तू पतली गली से निकल।
1: अच्छा।

0: आज मुझे पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। थैंक यू
1: जिग्नी।
0: टोनी डॉट शाह, रिमेंबर।
2: Стой, стой, стой!

0: Thank you so much once again. Thank you.
1: नहीं नहीं, हमारा तो काम ही है जी. आपने भागना है, हमने बचा लेना है. Nice to meet you. मैं चलता हूँ. और टोनी चले?
2: क्या कर रहा है, लड़की को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं?
1: टेंशन नहीं लेनी, मुझे सब समझा की है. बस 3 तक गिन, हमें उठाने की जरूरत नहीं पड़नी. अगली खुद आएगी. जिगर गिन तो सही.
2: 1 2
0: Excuse me.
1: जी
0: कॉफी पियेंगे?
3: मिल गए.
4: सर स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट है.
5: लेट मी गेस, किडनैप नहीं हुई, खुद ही भाग गई. स्मार्ट तो वो शुरू से ही है.
3: सोफी नॉट नाउ. ली
6: सर,
3: कीप सर्चिंग.
6: यस सर.
3: रिलैक्स बशीर है, रिलैक्स.
1: टोनी ये कैसी लड़की है?
2: वो पीछे वाली ज्यादा बेहतर है.
1: और मैं उस पीछे वाली की बात कर रहा हूँ.
2: और वो
1: शादी वाले दिन घर से भाग रही. ये काम यूरोप में भी होता है?
2: वो लोग यूरोप तो आ जाते हैं पर देसी पना खत्म नहीं होता. हाँ। मैं वाहिद आदमी था जो अंदर बाहर टोटल यूरोपीय. एकदम
0: कॉफीज.
1: मेहरबानी जी, थैंक यू.
0: मुझे पता है आप दोनों ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं कैसी लड़की हूँ जो शादी के दिन घर से भाग.
1: नहीं नहीं जी, हम ऐसा क्यों सोचेंगे कि आप कैसी लड़की हैं. वैसे आप कैसी लड़की हैं?
0: आपको कैसी लगती हूँ?
2: हॉट. ये कॉफी बहुत हॉट है अभी.
1: नहीं जी, बल्कि हम तो ये बात कर रहे थे कि आपके घर से भागने की ना जरूर कोई जेन्युइन वजह होगी. नहीं तो बनता नहीं था.
0: मेरे पास आप दोनों के लिए एक ऑफर है.
1: बाय वन गेट वन फ्री. ऑफर ऑफर फेंके.
0: अगर आप दोनों मुझे श्रांतविले तक छोड़ आए और रास्ते में अगर डैड और उनके लोग आ जाए तो आई एम श्योर आप दोनों ने बड़ी अच्छी तरह हैंडल करेंगे. और इस डील के मैं आप दोनों को 5,000 ज़लोटे पे करूंगी.
1: देखिए जी, आपके डैड उनके लोग उनको हैंडल करना बड़ा मेहनत मजदूरी का काम है. हम ये पता नहीं क्या कहते बॉस.
2: बॉस देखिए जी, बहुत पेचीदा मामला है.
1: लेकिन बॉस आपने खुद ही तो कहा था के मुश्किल वक्त में जरूरतमंद के काम आना हमारे कंपनी की पॉलिसी है.
2: पॉलिसी पॉलिसी भी एक चीज होती है कंपनीज में.
0: तो फिर मैं डील डन समझूं?
2: बिल्कुल, मिलाए हाथ.
1: डन. चले जी.
0: चलो क्या वैसे बेहतर चलते रहेंगे.

0: कैसे देखते जाओगे क्या?
1: नहीं मैं तो
0: नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ना देखो, देख लो लेकिन सामने भी देखो। अंकल जो,
2: अंकल
0: कमिश्नर, अंकल जो मेरे डैड के दोस्त, मुझे लगता है डैड ने सब कुछ बता दिया, वो मुझे लेने के लिए यहाँ पर आए हैं।
1: ये तो ये तो इधर नहीं हो सकती।
0: अच्छा तो फिर मुझे कहाँ होना चाहिए? नो
3: तूने यहाँ बिल्कुल खामोश रहना है और हर बात के जवाब में तूने सिर्फ जिनको या जिनको या जिनको या क्या?
4: ये जिनको मारने की टेक्निक है
3: वो जिनको या यानी शुक्रिया।
4: अच्छा
5: गुड डे ऑफिसर।
6: गुड डे। योर लाइसेंस प्लीज।
4: टोनी लाइसेंस पड़ा?
3: पता नहीं।
4: क्या पता नहीं?
3: बनवाया नहीं है।
4: तेरा लाइसेंस बनवाया क्यों?
3: तस्वीर अच्छी नहीं आई थी। तेरा मेरा मजाक है?
4: तो अब क्या करना है?
3: Give him the license. He has the license. License है यार।
7: जिनको यार, जिनको
6: यार। Gentlemen, step out of the car.
7: License को यार।
6: Step out of the car.
7: कोई यार।
3: मर गए।
7: रोना तो तेरे।
3: इधर पास आके खड़ा हो जा।
4: नूस आदमी। वो इधर टिक्की की तरफ जा रहा है। अब क्या करें? 500,000 का नोट पकड़ा।
6: Open the trunk.
3: Tiffy, I love you.
6: Messieurs, open the trunk.
3: And I'm sorry.
6: Let's go.
4: Sorry?
8: Who check up here? Check up, check up.
4: Who got bogus?
8: Go.
4: What, Tony?
3: Anya.
0: Uncle Joe.

0: अपनी जिंदगी में कभी ऐसी लड़की देखी। मेरी तौबा है। तुम्हें डर नहीं
1: लगता? जाओ
0: किसी से कहीं।

0: Nie ma.
1: Pusto. Wywinęli się. W mordę!
2: जवान आदमी के हाथ कट के तो उसे कुछ नहीं होना। नहीं नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ये तुम्हारा टेस्ट है।
3: इस पे
2: निशाना चेक कराओ।
3: रुको।
2: मेरा नहीं ख्याल टैलेंट है ही नहीं। कुत्तेरी।
3: अच्छा?
2: देने देते हैं?
3: एक सेकंड। ये मिल गई।
2: ये क्या?
3: हेयर पिन नीडेड, बैठो।
2: हेयर पिन?
3: हाँ।
2: ये कैसे है सर?
3: तुम सवाल बहुत करते हो।
2: ना करे। ताला मास्टर, और क्या क्या कर लेती हो?
3: बहुत कुछ। चलो चलो चलो।
2: बड़ी चीज़।

0: Sorry. Load shedding.
1: बात सुने? यहाँ पे ज्यादा चिल्लर नहीं नजर आते?
2: चिल्लर
1: चिल्लर पुल्स पुल्स लाहौर में हम पुल्स को चिल्लर कहते हैं।
2: तुम लाहौर से हो?
1: हाँ।
2: तो लाहौरी तो भंगड़ा नहीं डालते?
1: एक तो ये जो आपकी बार वालों की बात है ना कि लाहौरी है तो भंगड़ा ही डालेंगे।
2: जी नहीं, माय डैड इज फ्रॉम लाहौर, सो टेक्निकली मैं भी लाहौर से हूँ।
1: अच्छा, वाली साहब लाहौर से?
2: हाँ।
1: कभी चक्कर नहीं लगा?
2: हाँ, एक दफा प्लान बना था।
1: फिर
2: क्या, हमेशा की तरह सोफी ने सब बर्बाद कर दिया।
1: सोफी?
2: माय स्टेप मॉम।
1: ओह, तो आपकी असल मॉम?
2: 8 साल की थी जब एक्सीडेंट में गुजर गई, और डैड को 8 दिन लगे तो उसकी शादी करने में। क्या सोच रहे हो? होता है लाइफ में।
1: नहीं, मैं ये सोच रहा था कि 8 का नंबर आपके लिए ठीक नहीं है।
2: इसका मतलब है हाथ ही पढ़ लेते हो क्या?
1: ले, हाथ छोड़े, मैं पैर पढ़ लेता हूँ।
2: ये लो, मेरा हाथ पढ़ के बताओ मेरा फ्यूचर क्या है। हाँ
1: ले जी, आपके लाहौर जाने की ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होने वाली।
2: अच्छा, कब?
1: यही कोई 8 दिन में।
2: अब तुम एक किट लगा रहे हो।
1: अच्छा बात सुने।
2: हाँ?
1: इधर कोई कढ़ाई शढ़ाई नहीं मिलती, मुझे बड़ी भूख लगी है।
2: तुम्हारा देसी खाना खाने का दिल कर रहा है?
1: बर्गर खा के ना इस्लामाबाद याद आ गया।
2: चलो मैं तुम्हें देसी खाना खिलाती हूँ। पहले ये देख लूँ, मेरा वॉलेट
1: किधर है?
2: टोनी
1: टोनी
3: ब्रो ब्रो, सीरियसली मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ है ब्रो। वी आर लाइक ब्रोस, तुम पाकिस्तान में कहाँ से हो? चकवाल से हो? एक मिनट। अच्छा चल मार ले।
2: कैसा बॉस है तुम्हारा, मुश्किल वक्त में साथ छोड़ के चला जाता है।
1: मुझे क्या पता था।
2: तुमने खाना खाना है ना?
1: हाँ।
2: चलो
1: किधर?
2: डिनर।
1: पैसे?
2: हर चीज के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। व्हाट्स सो फनी?
1: हर अमीर आदमी यही कहता है।
2: क्या?
1: कि हर चीज के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती।
2: अच्छा,
1: हाँ जी।
2: चलो फिर देख लेते।
1: सोच रहा होगा खीर हमने खाई है, पैसे गोरे को देने पड़ गए। कौन सा लेवन?
2: आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ।
1: किधर लेके आ रही हो? तो खाना दे देना। क्या जगह भाई?
2: आंखें खोलो। जिन लोगों को घड़ी पर 11:11 नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि कायनात उन्हें मैसेज दे रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो सही रास्ते पर है। और चाहे वक्त कितना भी मुश्किल हो, एक दिन वो अपनी मंजिल तक जरूर जा पहुंचेंगे।

0: बात पूछूं, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सब कुछ दिया, फिर उसे छोड़ के कहां भाग रही हो?
1: हाँ, सब दिया सिवाय उसके जो मैं चाहती थी।
0: तुम क्या चाहती थी?
1: एक एहसास दुनिया में मैं सबसे ज्यादा उनके लिए जरूरी हूँ, उनका बिजनेस या उनका पैसा नहीं। और कभी कभी एक हग,
0: हाग?
1: जब भी
0: जब भी अच्छी चीज होती है।
1: कभी कभी यहां बहुत सर्दी हो जाती है।

0: हेलो के पुत्र, ओ कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं, ओ कहाँ मर गया हो तुम दोनों खोते हो, ओ काम हुआ है कि नहीं?
1: काम हो गया भट्ट साहब।

0: शादीशुदा बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
1: पता नहीं क्या कह जा रहा है, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? और अगर मैं इस खिड़की से नीचे कूदता हूँ तो अंडे टूट जाएंगे, क्योंकि नीचे ट्रक जो खड़ा है अंडों का नहीं सरियों का। भागना मुश्किल है, इसी की सुन लेता हूँ।
0: समझे? अब बताओ
2: क्या
0: मेरी बेटी कहाँ है?
1: मुझे नहीं पता, कसम से मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ। पोलैंड का बच्चा बच्चा जानता है, खेतोनी से सच्चा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता वो लोग कहाँ है।
0: ले, अपना फोन बंद करो, इट्स वेरी इरिटेटिंग।
3: सर मेरा फोन नहीं है ये।
0: दीफा, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। इसको बोलो जहां है वहीं रुके, तुम 15 मिनट में पहुंच रहे हो।
1: ओ दीफे, सुन सुन, तू है कहाँ?
4: ये शहर के अंदर घड़ी हाल नहीं है, उसके सामने एक रेस्टोरेंट है, उसकी छत के ऊपर मैं।
1: अच्छा तू वहीं रहे, मैं 15 मिनट में आया। हिली ना, ठीक है?
4: ठीक है, इस दफा गायब हो
1: गए। ठीक है जी,
0: इसको भी साथ ले लो।
1: मुझे भी ले चलो, मैंने यहाँ क्या करना है? मैंने भी यहाँ बैठ के अकेले बोर ही होना है। सब मिलके उनको पकड़ेंगे। हल्का

0: Then let Talhawar Tea serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talhawar Tea. 647-295-7861. Then let Talhawar Tea serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसेस आगर रिचवे
1: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसेसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.

0: सपोर्ट की चाय चाहिए होती है।
1: तुम्हें चाय पसंद है?
0: हाँ।
1: लाओ फिर, तुमने भी मेरे बेबे की हाथ की बनी हुई गरम गरम चाय नहीं पी। कभी लाहौर आओगी ना, मैं लाऊंगा।
0: तुम लाहौर ही रहते हो? मुझे लगा तुम यहाँ मूव कर गए हो।
1: नहीं, मूव मैं क्यों करूंगा यहाँ। पता है, लाहौर शहर का रहने वाला बंदा ना दुनिया में और कहीं रह सकता। वो तो टोनी किसी काम से कभी बुला लेता है तो मैं आ जाता हूँ और आके काम करके चला जाता हूँ। टोनी से याद है, टोनी मिल गया है। बस पहुंचने वाला है।
0: Great.
1: तो फिर तुम अपनी फ्रेंड के पास और मैं अपने शहर लाहौर अपनी बेबे के पास, हैं? चलें?
0: लाहौर
1: नीचे।

0: और तो ठीक भी तो मैं कर रहा हूँ यार।
1: मत बना दी तूने ट्रक
2: का। लड़ो मत अब, छोड़ो उसे, चले।
0: किधर चले? ट्रक खराब हो गया है, कैसे पहुंचेंगे?
2: नेखो जियो सल पद्रश तेल को समा पद्रश
0: तोनी तर्जुमा।
3: इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी।
0: तर्जुमा
4: मंजिल कुछ नहीं होती, सफर ही सब कुछ होता है।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, लड़की में मसाले पूरे हैं टोनी।
4: मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, लेकिन तू जो सोच रहा है ना वो कभी नहीं हो सकता।
0: सोचने तो दे,

0: पहुंच गए। ये बॉरिस बेकर से कहें दरवाजा ही खोल दे
1: जल्दी।
2: सारा,
3: आनिया, ओह माय गॉड, यू मेड इट।
2: फाइनली
3: यू वुड।
2: गुड टू सी यू।
3: सब प्लान के मुताबिक
2: परफेक्ट।
3: कहां है वो ट्रेन डीलर्स?
2: तुम्हारे पीछे।
3: उस कंपनी में जो सारे कनेक्शन थे।
4: बहुत आला है।
2: थैंक यू सो मच।
5: वेलकम जी। दीफा,
6: टोनी, टोनी डॉट शाह।
2: आई एम सारा।
6: आप सारा नहीं है, आप तो सारा कुछ। यशी सिस्मी यजस्त बोया।
0: तर्जुमा।
6: हसी ते पसी आए।
2: सारा, अगर ये लोग ना होते, आई मीन ये ना होता तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुंच पाती।
0: अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ये खरिया से पहुंच गए, और क्या चाहिए है जी। टोनी चले।
7: हाँ
0: टोनी चले।
2: कॉफी पियोगे
0: या लस्सी नहीं मिलती? वैसे यार गुरु ने भी लाइफ सेट की हुई है।
8: हेलो व्हाट्स अप।
0: हाला लाला।
2: ओह शिट है आन्या।
3: वाओ आन्या, यू लुक लवली।
2: थैंक यू।
3: आन्या बहुत हॉट लग रहा।
9: Well, look who's joined us, Miss Busy.
2: Yeah, I changed my mind. Well, I brought some company, meet my friend Tifa and Tony.
9: Tifa, oh, like Queen Latifa.
0: Latifa? He called me joke? Mazaak uda iska sanna paad do.
2: Mazaak kar raha, mazaak kar raha. Andy, please be nice to him, he's with me.
9: You know, it's just joking.
0: Samjha? It's okay.
9: Welcome aboard, my friend.
0: Thank you.
9: Come on, let's party. How? Come on.
3: थैंक गॉड तुम इसे बचा के यहाँ ले आए। पता है मैंने इसे पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। अंदर से मर रही है इसके साथ होने के लिए, लेकिन कभी शो नहीं करेगी, पागल। चले
10: मजा आ रहा है। तू कुछ अजीब उदास उदास सा है।
9: My friends were teasing me to say that you weren't gonna come. Yeah. I knew you were gonna make it.
2: Wow, really?
9: Yeah, I knew it all.
10: गोरी को देख कितना टाइट है, और तू तीफे, तेरे तो फीते भी खुले हैं। कुछ कर, कोई गेम बना।
9: गाइस गाइस एवरीवन अटेंशन प्लीज। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग ऑल दिस वे टू मेक दिस अ स्पेशल डे फॉर मी, एस्पेशली यू आन्या। हियर्स टू दीज ब्यूटीफुल स्टार्स एंड मे दे शाइन फॉर अस ऑल फॉरएवर। चीयर्स एवरीवन एंड नाउ टू कंक्लूड दिस ब्यूटीफुल नाइट। Shall we be enchanted by a secret, talented singer? Sara told me you had a beautiful voice.
2: No, no way. Please, no, no. I can't, no.
9: Come on. You can do it. You're perfect. Go on. Please?
2: Okay.

0: Tiefe, Tiefe, Tiefe. Ist man schon okay? बस इधर आके सब रह जाते हैं, दिल पे कोई होल्ड नहीं और माइंड पे कंट्रोल नहीं। चल चावर, बहुत हो गया है, जल्दी से जाके इस लड़की को कर हैंडओवर और सारे खेल की कर दे सुथरे तरीके से गेम ओवर हैं। चल,
1: इसकी बातों में मत आई तीफे, पैसा सब कुछ नहीं होता, असल ताकत प्यार।
0: प्यार प्यार प्यार प्यार करके सब शादी कर लेते हैं और फिर आंखों में कसोने देख रोते हैं।
1: प्यार नसीब वालों की किस्मत में होता है।
0: और प्यार देते मैं
2: बात सुने, ये प्यार और पैसे की मगजमारी तो होती रही। मैं कह रहा हूँ कुछ खाने को ना मंगवा ले, बड़ी भूख लगी है।
3: मुझे तो डर लग रहा है, डर ये सब ठीक नहीं है।
2: यार
0: सब ठीक हो जाएगा अगर तू प्लान के मुताबिक।
2: नहीं
1: तीफे, अपने दिल की सुन तीफे, अपने दिल की।
2: बढ़ गए यार, थिड़थिड़ती भाई।
0: दिल यानी हार्ट, द हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स व्हिच पंप्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तेरा हार्ट जिसे तुझे की बात लगा के रखी यार।
1: तीफे ये तुझे फंसा रहा है।
0: ओ, तुझे फंसा रही है दीफे।
3: ओए, ये कर्मास के, कर्मास के, कुछ
2: ओए टिक्के मंगवा लूं।
0: भूख लगी है, लगता है कि आज तो टिक्के बनाने ही पड़ेंगे।
2: तड़ी खैर हुए,
1: खून खराबे से कभी कुछ मिलता नहीं, लेकिन हम प्यार करने वाले प्यार की खातिर जान दे भी सकते हैं।
2: चल
1: और ले भी।
3: भाइयो हम सर एक ही है, है? लड़ने मरने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ आराम से बैठ के बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है।
4: चलो।

0: टीफे, मैंने क्या कहा था, ये लव शव सब बकवास है, बस पैसे से बुझती प्यास है। चलो उठ शाबाश, उठ, लड़की को निकाल और दिखा दे अपना कमाल। चलो उठ शाबाश,
1: उठाए।

0: खूबसूरत है ना?
1: हाँ, बहुत।
0: तुम ये सब छोड़ के चले जाओगे?
1: नहीं, ये साथ रहेगा मेरे हमेशा।
0: मैं मिस करूंगी ये सब।
1: मिस तो मैं भी करूंगा।
0: लाहौर कैसे?
1: जैसे इस आसमान के कई रंग हैं ना जी, वैसे लाहौर शहर के भी कई रंग हैं।
0: मुझे भी देखने वो रंग।
1: देख नहीं सकोगी।
0: क्यों?
1: क्योंकि महलों में पली हुई शहजादियां सड़कों पे पड़े उन भूखे नंगे बच्चों के झुलसे हुए रंग नहीं देख सकती, ना समझ सकती हैं।
0: मैं समझना चाहती हूँ।
1: बारह साल का था जब मेरा प्यो मुझे और पेपे को छोड़ के दुनिया से चला गया। हमारे लिए एक तेला तक न छोड़ के गया, कह गया इज्जत छोड़ के जा रहा हूं। बंदा पूछे अब्बा जी जब भूख लगती है ना तो इज्जत नहीं डाली जाती मुंह में, रोटी डाली जाती है, और रोटी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। वो तो समझ नहीं सके, लेकिन मुझे बड़ी जल्दी दुनिया की समझ आ गई थी कि यहां पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है। समझ आई?
0: मैं घर नहीं जाऊंगी।
1: तो फिर कहां जाओगी?
0: लाहौर। लाहौर ले चलो मुझे अपने साथ।
1: सोच लो।
0: सोच लिया।

0: निया कहाँ है?
1: पता नहीं।
0: अंदर चेक करो।

0: एक मिनट
1: निकल बाहर
0: आराम से। ऑस्ट्रेलियन का और लेदर की जैकेट फट जाएगी देख के।
1: आनिया कहाँ है?
0: देखो हम एक मौजूद मुल्क में है, यहाँ पे ऐसे मामलात ऐसे तय नहीं होते। बराबर में कॉफी शॉप है, वहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। वहाँ पे मुझे भी मौका मिल जाएगा और आपको कैपचीनो।
1: शट अप।

0: सुकून है यहाँ पे, कितनी खूबसूरत जगह है। लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है, एक लम्हे आप कहाँ और दूसरे लम्हे आप कहाँ, और वो भी तुम्हारे साथ। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर तीफा, यू हैव सक्सेसफुली किडनैप्ड मी।
1: कंग्रेचुलेशंस ओ मेरी पुत्री, वेलकम टू लाहौर।
0: अंकल बट आपको कैसे पता चला कि मैं?
1: और कमाल बात करती है तू है, वो मेरे शहर में आई है और मुझे ही पता नहीं चलेगा है भी तीफे। और तू क्या रूसी फूफी की तरह खड़ा है, तूने इसे बताया नहीं?
0: आप दोनों एक दूसरे को जानते?
1: जानते वो ये अपना बरखुरदार है, और मेरे सारे बड़े बड़े काम जो है ना वो यही तो करवाता है, और तुझे भी तो वहां से यही लेके आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए कितनी प्यारी हो गई है मेरी पुत्री है, वो इतनी बड़ी हो गई है मेरी धी रानी।
2: वैसे आप ना तस्वीरों से ज्यादा ब्यूटीफुल हैं।
1: ओए बटके के मुंह वाले, और ये आंख मटका बाद में करी। ले पुत्री घर चलते हैं, तेरी आंटी ना तेरा वेट कर रही है, सारी तैयारियां मुकम्मल है। हाँ
0: तीफे, अंकल क्या कह रहे हैं?
1: और ये बोलता कम है मगर काम ज्यादा करता है ये। ओ इश्फाक, ओ इधर ला इसे लड्डू तो देना तीफे को। ले भाई तीफे तू भी गिन ले पूरे है, और नवे नकोर नोट लेके आया हूँ खुशबू वाले। ओ पकड़ ले, शर्मा क्यों रहा है, तेरे ही है। ओ भाड़ ले भाड़ ले भाड़ ले बेटा चल।
3: तीफे तू आ गया, तेरा काम हो गया।
4: बेबे मुझे आज एक चीज सच सच बता, मेरा बाप कैसा आदमी था?
3: अरे तू आज फिर मुझसे ये बात क्यों पूछ रहा है? खैर तो है,
4: बता मुझे तू खुश थी उसके साथ?
3: बेहद।
4: पर उसने तो तुझे कभी कोई चीज ला के नहीं दी।
3: हाय जहां इतना प्यार हो ना वहां किसी चीज की जरूरत नहीं होती।
4: पर वो हमारे लिए कुछ तो छोड़ जाता बेबे, मैंने तुझे सारा बचपन लोगों के बर्तन मांजते हुए देखा है।
3: ये तू कैसे कह सकता है कि वो कुछ छोड़ के नहीं गया? तूने मल्ले में अपनी माँ की इज्जत देखी है? ये सब तेरे बाप की वजह से। पुत्र पैसा कमाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन इज्जत कमाना देख पैसा और इंसान सब चले जाते हैं, लेकिन अच्छे काम हमेशा रह जाते हैं, और ये किताबी बातें नहीं है।
4: पेपे गलती हो।
3: देख तीफे मैं तेरी माँ हूँ, मैं सब जानती हूँ, वो गलतियां इंसान से होती हैं। आखिर में सही वही होता है जो गलत को सही कर दे, और मुझे पता है तू यही करेगा।

아니야. 아니야. 아니야. 아니야.

0: क्या कर रहे हो?
1: अरे तो पागल हो, मरोगी, हाथ तो अपना।
0: मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें हाथ नहीं दूंगी अपना।
1: अरे नहीं, तरीका मरने के लिए अच्छा ना, भागने के लिए पट के बंदे खड़े हुए चारों तरफ, तुम नहीं भाग सकती।
0: I don't believe anything you say.
1: अभी तो हाथ तोड़ना, ऊपर आओ ऊपर।
2: बड़ा किस्मत आला है बिल्लू, फौरन दी कुड़ी थी इतनी ताबेदार। बड़ी गल है यार।
3: दरवी टोरो
0: हाथ नहीं लगाओगे तुम मुझे?
1: ले कमाल है, एक तो जान बचाई ऊपर से।
0: फसाया भी तो तुमने ही था ना मुझे, पागल थी मैं लेकिन अब नहीं।
1: ओ देखो मेरी एक दफा बात सुन लो।
0: नहीं, अब तुम मेरी बात सुनोगे, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो मैं चीखे मार मार के मां बाप के लोगों को इकट्ठा कर लूंगा।
1: मार चीखे मारो, बचाओ बचाओ मारो, मार के मारो।
0: तुमसे बड़ा कमीना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा।
1: ओ, मैं कमीना, मैं कुत्ता, लाखती लानत है मेरी शक्ल पे, मानता हूँ लेकिन तुम भी मेरी बात आखिरी दफा मान लो, मैंने तुम्हें फसाया ना, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा।
0: क्यों क्यों मानू मैं तुम्हारी बात, बोलो

0: दफा फिर सोच लो। पागल हूं मैं?
1: सोच लिया, मैं भी पागल हूं। चलाओ।

0: Starkey, what are you?
1: I'm going to tell the shop.
0: कहाँ जा रहे हो?
1: चपुर जी चलो ये
0: मैं बैठ जा
1: इस तो जब घोड़े होंगे सन तो चल ना
2: अरे मैं तेरू भी बुलाओ
3: ओए तू

0: और टेढ़ी मांग निकालने से कोई काउंसलर नहीं बन जाता,
1: और नीले पीले सूट पहनना कोई काठा अंग्रेज नहीं बन जाता।
0: किसी की उठाई भी बेटी को अपनी बेटी नहीं बना सकते। बुला उसको।
1: फैंसन संदी ग्लैटन के ग्लैंड फिकस।
0: मैं कह रहा हूँ बुला उसको।
1: ओए बुलाते मैं उन्हु लवा, पर ओ नस गई है।
0: और क्या मतलब है नस गई है?
1: ओए एंदे सार बार रह के तू अपनी जुबानी भूल गए, ऐसा मतलब है कि शी हैज रन,
2: वो भी तीफे के साथ।
1: हेलो
0: ते मेरा मुंह की तकंडे हो, और फड़ो नू।
3: स्टार्ट क्यों नहीं हो रही भाई का?
4: क्योंकि पता मैं

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction? Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600. Or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111. Or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। Experienced and regulated immigration consultant शहबाज अकबर के साथ। Master of Business Class Immigration, Express Entry, Skill Class Immigration, Refugee Claims and Family Sponsorships. Call now at 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada.
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: تم مکینک ہو؟
1: چلو
2: چلو
3: میں تیرے میں

0: कहाँ जा रहे हैं?
1: कहा था ना, फसाया भी मैंने, निकालूंगा भी मैं।
2: जल्दी करो। ओए किथे चला गया छलेटा जिया।

0: خوشو. स्माइल करती रहना, बहुत अच्छी लगती है.
1: ओह माय गॉड, अन्या,
2: एंडी, देखो ये सब क्यों?
0: बस सोने लफ्जों में याद रख लेना, यही मेरी कमाई है.

0: लतीफे, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरा एतबार ना तोड़ी।
1: क्या करूं बट साहब, अब तो टूट गया है।
0: ओए ओए लता पांदे होती फेदियां।

0: ये क्या हो रहा है?
1: आनिया पुत्र, ओ किथे गई आनिया?
2: आनिया, सीरियसली ये क्या बचपना है? तुमने तो परेशान करके रख दिया है। ये उम्र है मेरी भाग दौड़ करने की? ऐसा नहीं करते बेटा, चलो चलो घर चलते।
1: पहली दफा तेरे काठे अंग्रेज बाप ने ना ठीक बात की है, चला मेरा पुत्र घर चले।
2: और बट ड्रामे बंद कर अपने, चलो बेटा इट्स टाइम टू गो होम।
1: ओए अब इसका घर यहाँ है, ये हमारे साथ जाएगी।
2: ओहो, तुम्हारे इन चोंचरों को बर्दाश्त करने का स्टेमिना मुझ में खत्म हो गया बट। चलो आनिया, अब यहां से तुम्हें भगाने के लिए कोई नहीं आने वाला।

खुश रखें।

0: चलो।
1: आनिया तुमने मेरे साथ जाना है।
2: ओए उधर मौलवी साहब इंतजार करन दे रहे, तू मेरे नाल चल।
1: आनिया मेरी बेटी है, मेरे साथ जाएगी।
2: ओ मैं कह रहा हूँ ना मेरे साथ।
1: यार तुम कैसे कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ मैं इसका बाप हूँ।
3: बस करो यार, आप कब तक रोओगे यार। भाई साहब जाने देना यार,
1: कह रहा हूँ
4: बस कर दो, चुप कर जाओ। किसके साथ जाऊं मैं? आपके साथ जाऊं डैड, बताइए। नहीं आपके साथ चलती हूँ मैं, तुम्हारे साथ जाऊं तुम्हारे साथ, या फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। हाँ
5: हाँ जी, why not, मोहम्मद आसफ फ्रॉम पत्तू की।
4: लो जी एक और साहब लाइन में खड़े। कोई मुझसे पूछेगा कि मैं किसके साथ जाना चाहती हूँ? मैं कोई चीज हूँ क्या?
5: हाँ चीज तो है।
4: आप सब मर्द अपने आपको क्या समझते हैं कि औरत की अपनी कोई मर्जी नहीं होती? क्या कभी किसी लड़के की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की जाती है, या फिर ये सब लड़कियों के साथ ही होता है?
6: पॉइंट तो बिल्कुल सही है लड़की का, पूछना तो बनता है। चलो हम पूछ लेते हैं जी, चलेगी?
1: और खबरदार, ये मेरी बेटी है। और भट ये कौन है?
2: वो
6: दीवे पुत्तेरे पैगाम लेके आया था ना, अब जवाब सुन मेरा, जरा
2: ज्यादा नहीं करूंगा ना।
1: चंड का जवाब,
6: चंड से
1: चल। शाबाश, इकरारी लगा भट साहब को। चल बड़ा ही बेगैरत है तू भाई।
6: अपने शेख को बहुत हल्का लिया है तूने।
7: हल्का तो आप ले गए शेख साहब, ढीठ तो मैं हूँ ये आपको याद रहेंगे, लेकिन बगैरत नहीं हूँ ये आप भूल गए। चांडी चाहिए ना तो चांडी मारूंगा और करारी मारूंगा, लेकिन पूथा होगा आपका।
1: ओए!
6: अभी तो मैंने तुझसे अपने पैरों की डिमांड नहीं की, 3 गुना ज्यादा
1: विद चपेट।
6: नहीं तो
4: डैड, मुझे नहीं जाना डैड।

Oh.

아니야!

0: तकलीफ है, इस पर कहाँ उठा ले जा रहा है।
1: जादू कर,
0: पूछेगा नहीं,
1: सच से पूछे बगैर कभी कोई कुछ कर सकता है। बोल कहाँ चलेगी।
0: जहां तू ले जाए।
1: सोच ले।
0: सोच लिया।
1: पागल हूं मैं।
0: पागल तो मैं भी हूं।
1: लव करेगी मेरे साथ।
0: तू करेगा
1: ऐसा?

लेकिन एक शर्त पे, अगर तू मुझे रोज अपने हाथों से आलू चाट बना के खिलाएगा, कढ़ाई गोश्त और क्या कहते हैं वो, भुने हुए करेले, तो करूंगी। खिलाएगा दीपे? दीपे? दीपे? दीपे उठ, दीपे, दीपे, तू जो कहेगा मैं मान लूंगी, तू जहां लेके जाएगा मैं चली जाऊंगी, लेकिन अभी उठना, दीपे उठ, दीपे।

0: हाँ जी, क्या कहा था जी मैंने, ये दुनिया बड़ी जालिम शह है जी, ना जीने देती है ना मरने। जब जिंदा थे तो मरने मराने की बातें, मरने को आए तो उठोए की आवाजें, बंदा चाहे तो किधर जाए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है जी। बस इंसान को अपना दुनिया में आना तो याद रहता है, पर चला जाना भूल ही जाता है। पर चलो, मेरा जाना इन सबको करीब ले आया, और क्या चाहिए। किसी स्याणे ने एक बारी कहा था कि वक्त सबसे बड़ा मरम होता है, टाइम पास हो ही जाता है। लो जी, देखते ही देखते बट और बशीरे की दोस्ती फिर से लाहौर शहर की जान बन गई। जिथे दिखोती होते आन खलोती, सच इज लाइफ जी। वो अंग्रेजी में कहते हैं क्यूट। और अपना बिल्लू बट को भी उसकी जोड़ी मिल गई, उसका भी तो हक बनता है ना जी। और उसे देख के खालदा खुश हो गई, हैं जी हैं जी। और अपने टोनी भाई को सारा नहीं, सारा कुछ मिल गया। रह गए बेबे और आनिया, बड़ा मैं दोनों से प्यार करता हूं जी। सोचता हूं अब भी कहीं बैठे मेरा इंतजार करते होंगे, मेरे हाथ का बना हुआ खाना मिस करते होंगे, और सोचते होंगे जी कि आप सब कितनी जल्दी मेरी बातों में आ जाते हैं।
1: ले जी, गर्मा गर्म तिके तैयार है। ले क्या हुआ, आप लोग तो ऐसे बैठे जैसे को मर गया हो।
2: अरे भूख से तो मर ही गए हैं ना।
1: जल्दी से ये ट्राई करें। अभी ले बट, ये मुर्गी का पट ट्राई कर।
2: थोड़ी जी और पा दे, डाल।
3: एक बात सुन।
1: हाँ।
3: एक जॉब आई।
1: क्या?
3: मोरक्को में एक आंटी को उठा रहे।
1: भारी तो नहीं है?
3: चेक तो कर।
1: सलाद खाओगे? लगवड़ी सोनी नहीं है आप।
4: ये ले।
1: थैंक यू। बाजी भैन है मेरी। इधर आओ, तुम एक चीज दिखाओ।
4: क्या?
1: वो देखो।
4: दिस इज सो कूल।
1: चेक किया?

0: चाहिए।
1: Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti, 647-295-7861.
0: घर आपको अच्छा घर चाहिए।
1: Then let Talha Bhatti serve you the best.
2: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
3: मिसिसागा रिजवे
2: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
4: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.
5: Rah Bakers and Sweets, 60 saal se aapke haseen lamhon mein shamil, khushiyon se bhare meethe zaike, nafasat aur quality mein sabse behtar. Khalis ajza se taiyar karda mithai, cakes, biscuits and snacks. وہی اتھینٹک ذائقہ اور کوالٹی پاکستان سے اب آپ کے شہر مسیساگا میں کچھ میٹھا کچھ نمکین راحت بیکرز آج ہی وزٹ کیجیے 3920 ایگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 24 مسیساگا کال 905-820-1500 اور وزٹ راحت بیکرز.ca

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम में हूँ आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्फ़ मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए मैं देते हैं मस्जिद नूरुल हरम। मस्जिद नूरहम की तामीर के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है, स्टील स्ट्रक्चरिंग का काम जारी है। दिल खोल कर आप इसके इत्तेआ दीजिए। राबते का नंबर है 905-257-1342।

0: न्यूज के लिए दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
1: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जौहरी हथियार हासिल कर लिए तो न इसराइल और न ही मशरक वस्ता बचेगा। उन्होंने कहा कि ईरानी बहरिया के पास मशीन गन लगी छोटी कश्तियों के सिवा कुछ नहीं बचा। उधर ईरान का कहना है कि आबनाए हुर्मुज में कश्तियों पर अमरीकी हमले में 5 शहरी जां बहक हुए। पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि ईरानी अफवाज ने मुत्तहदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया और किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदारा ने इनकलाब का ये भी कहना था कि आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए ईरानी तजवीज करदा रास्ता मंतखब न करने वाले जहाजों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग का जारहाना मरहला मुकम्मल हो चुका है और तेहरान को मुजाकरात की मेज पर लौटना चाहिए। उधर अमरीकी वजीर जंग पीट हेक्सेट ने कहा है कि अमरीका लड़ाई नहीं चाहता लेकिन ईरान को आबनाए हुर्मुज बंद करने की किसी सूरत में इजाजत नहीं देगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची मंगल को चीन जाएंगे। सऊदी अरब का कहना है कि खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की कोशिशों के बायस ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत में कुछ पेशरफ्त देखने में आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले मिज़ाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में इंतखाबी शिकस्त के बाद ममता बनर्जी ने वज़ीर आला के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान का इलाज फैमिली की मौजूदगी में करवाया जाए। और आज रात से गैस की कीमत में 10 सेंट फी लीटर इजाफा हो जाने का इम्कान। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
2: खास खास खबरें जुबैर दीन साहब आपके लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 203.50 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान में हर बैंक में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर अकाउंट नहीं है कैश बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए। gondarbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 203.50 रुपये। कॉल कर लीजिए 905-306-0000 905-306-0000। मंगल के दिन ऑल द सॉल्यूशंस में सिद्दीक साहब हमारे साथ हुआ करते हैं। राइट विंडो फोर्स से सवानु साहब से आपको मुलाकात कराएंगे। ग्लोबल एडवाइजर इंक से नागपाल साहब आज के दिन हमारे साथ होते हैं। कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल्स आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब। और भी कुछ मौजूद होंगे हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सब कुछ सुनने के लिए आपको हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। मेरे अच्छे प्यारे सामिन, शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस जमा करती हैं वो सबका सब शहद नहीं होता, इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा शहद बनता है। शहद की मक्खियों को 1 पाउंड शहद के लिए 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है, इसलिए मक्खियां तकरीबन 30 लाख उड़ाने भरती हैं और इस दौरान वो मजमूई तौर पर 50,000 मील की मसाफत तय करती हैं। रस जब मतलूबा मकदार में जमा हो जाता है तो फिर उसके बाद शहद साजी का अमल शुरू होता है। शहद अपने इब्तदाई मराहल में पानी की तरह रकीक होता है, पतला होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखों की तरह इस्तेमाल करके फाजल पानी को भाप की तरह उड़ा देती हैं। जब यह पानी उड़ जाता है तो उसके बाद एक मीठा सा सयाल बाकी रह जाता है जिसको मक्खियाँ चूस लेती हैं। मक्खियों के मुंह में ऐसे गदूद होते हैं जो अपने अमल से इस मीठे सयाल मादा को शहद में तब्दील कर देते हैं। अब मक्खियाँ इस तैयार शहद को छत्ते के मखसूस तौर पर बने हुए सुराखों में भर देती हैं। ये सुराख दूसरी मक्खियाँ मोम के जरिए हद दर्जा कारगरी के साथ बनाती हैं। मक्खियाँ शहद को इन सुराखों में भरकर इसको डब्बा बंद गजा की तरह एहतमाम के साथ महफूज कर देती हैं ताकि आइंदा वो इंसानों के काम आ सके। इस तरह बेशुमार एहतमाम जो शहद की तैयारी किए जाते हैं, खुदा ही ऐसा कर सकता था। तिलसमाती तौर पर चाहता अल्लाह रब करीम तो अचानक शहद की नहरें बहा देता, पानी की तरह शहद का चश्मा बहा देता, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। खुदा हर किस्म की कुदरत के बावजूद शहद को असबाब के एक हरदा दर्जे तक कामिल निज़ाम के तहत तैयार करना चाहते हैं ताकि इंसान को भी सबक हासिल हो। वो जाने कि खुदा ने दुनिया का निज़ाम किसी ढंग पर बनाया है और किन कवानीन और आदाब की पैरवी करके खुदा की इस दुनिया में कोई शख्स कामयाब हो सकता है। शहद की मक्खी जिस तरह अमल करती है, इस लफ्ज़ में मनसूबाबंद अमल कहा जाता है, इसमें प्लानिंग मौजूद है। यही असूल इंसान के लिए भी है। इंसान भी सिर्फ उस वक्त कोई बामानी कामयाबी हासिल कर सकता है जब वो कोई प्लानिंग करे। تاکہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے. منظم اور منصوبہ بند عمل اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا واحد یقینی ذریعہ ہے, شہد کی مکھی کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Students, mera contact number 416-593-0003. Jab us kante mai nishat Radio Pakistan FM pe sun sakte hain. Facebook pe hamara page Radio Pakistan Toronto se like kijiye. Tune in pe hamara program available hai. Phone ke zariye sunna chahein 647-506-0003 pe call karke hamara program sun sakte hain. Hamara television channel Toronto 360 TV, tamam IPTV boxes, Jadoo Bol Zone, bas ke saath saath Apple TV, Amazon Fire TV, Roku TV ke saath saath Tubal app ke through Rogers pe bhi mai nishat dekh sakte hain. हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 टीवी. एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए हमारी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. दो चैनल टोरंटो 360 टीवी और टोरंटो 360 इंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की ऑनलाइन निशात भी 24 घंटे हमारी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं. आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी जरूर किया कीजिए. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की निशात CMR 101.3 FM तो आप सुनते ही हैं, लेकिन हमारी निशात आप टेलीविजन पर देख भी सकते हैं. टोरंटो 360 टीवी पे हमारी नशात आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इसके साथ साथ ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं. हमारी वेबसाइट toronto360.tv पे भी देख सकते हैं. रियल एस्टेट के हमारे से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए. कॉल तला भट्टी 647-295-7861. घर खरीदना, बेचना, लीज करना, साइन करना, नए प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना हो, कॉल कर लीजिए. अपना ईमेल रेसिपी टेक्स्ट कर सकते हैं, डाटाबेस में से ऐड कर लेंगे. जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिक से डिटेल आपको मिलती रहा करेगी. कॉल कीजिए, अपना ईमेल टेक्स्ट कर दीजिए तलाब भट्टी 647-295-7861. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान.

ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से रابطہ कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अर्शद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।

0: आज वही जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458। अपने

0: आई सी सी इमिग्रेशन के आर डी एम डी और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कारब्रो और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। इट्स 905-461-2424। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। It's 416-710-6777.
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी और अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैकलॉगलन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट सी।
0: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009। It's 9058280009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari.
4: Lisa ki yaad nahi aayi tujhe Jassi? Jassi ko chhodiye, kyunki Lisa's Cosmetics line hai Spring Warehouse Sale khas aapke liye. Perfume, skin care, makeup, hair care, designer sunglasses, chocolates, aur bhi bahut kuch with mega savings up to 80% off. Durandar deals on all your favorite world famous brands jaise Tom Ford, Versace, Armani, Azzaro and more. Aapko aana hai 135 Commerce Valley Drive, East Markham, Highway 404 aur 407 ke behad kareeb and close to 401. Sale chalegi April 18th se May 10th tak, perfect for Mother's Day gifting. To zyada swag at kam price, sirf Lisa's Warehouse sale par. Visit lisascosmetics.com.
0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600, क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। कर्ज इंसान का जहनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577। जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577।
5: जी हाँ, 416-671-0577 एम सदीक साहब के नंबर है, ऑल दैट सॉल्यूशंस। खुदा नखास्ता आप कर्ज के बोझ तले आ गए हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, कॉल कर लीजिए। मैक्सिमम कर्ज माफ़ करवा देंगे, आसान इकसाद करवा देंगे आपकी। 416-671-0577 रबते का नंबर है। बहुत अच्छा फीडबैक हमें सिद्दीक साहब को मिलता है, खुश आमदीद कहेंगे। सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम अरशद भाई, कैसे हैं आप?
5: बिल्कुल ठीक, आप सुनाए, खैरियत ठीक ठाक हैं?
6: अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक।
5: हाँ सिद्दीक साहब, ये अक्सर जाहिर सवाल करते हैं कि इम्पोर्टेंट, एक शख्स जब कर्ज के बोझ तले आता है, परेशानी जाहिर उसकी बहुत सारी रहती है, वो इधर उधर दोस्तों से पूछता है, पहले उनके मशवरे पे अमल करता है, और बाज़ुकात ही होता है कि वो मशवरे उनको प्रोफेशनल नहीं दिए जाते। थोड़ा सा ये बताइएगा कि फर्स्ट मीटिंग जब आप करते हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और उसमें क्या कुछ जो है उसमें तय हो जाता है?
6: इसमें पहली मीटिंग इंतहाई इम्पोर्टेंट होती है। जितने मैं उनकी फाइल क्लाइंट की रिव्यू करता हूँ तो उनको बताता हूँ कि कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, कौन सा ऑप्शन आपको सूट करेगा, वो क्यों सूट करेगा, क्या आपको रिलीफ लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर रिलीफ लेना है तो कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा, और अगर नहीं लेना तो कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि एटलीस्ट आपका पैसा ज्यादा इंटरेस्ट में जाया ना हो। जो मैंने पिछले भाई पिछले 26-27 सालों में देखा है कि ज्यादातर लोग फैमिली फ्रेंड से मशवरा कर लेते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता कि सिस्टम काम कैसे करता है, और वो इतना उनको डरा देते हैं कि उनमें हिम्मत ही नहीं होती कि कहीं किसी कहीं कॉल करें और एडवाइस लें। वो घर बैठे पेमेंट करते रहते हैं और हमारे पास उस वक्त आते हैं जब वो काफी सारा पैसा इंटरेस्ट में जाया कर चुके होते हैं। ये एक लीगल प्रोसेस है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर डेट में आप आ गए हैं, चाहे वो छोटा कर्जा है या ज्यादा।

फूल की रेत पे रोल दिया करना, सन्नाटे में बंद दरीचा खोल दिया करना, रात की आंख में सूरज खोल दिया करना।

0: तलावट्टी को कॉल मिला।
1: Talawat 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talawat 647-295-7861.
0: तो तलावट्टी को कॉल मिला।
1: तलावट 647-295-7861।
2: बहुत खुशबू आ रही है खाने में। ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
3: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
4: हांडी मसाले बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
5: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 7465550-7465550।
6: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
7: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी रब्ता कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रब्ते के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine-in karein ya take-out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice, Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer, large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take-out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
8: अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेड लाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922। इट्स 905-783-1922। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा। एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
9: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 license number 12374।
7: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
10: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ प्राउडली प्रेजेंट्स अली जफर For spiritual Sufi and Qawwali night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
11: 416-904-2046 or 416-662-7861.
12: UniGlobal Advisory Inc. आपके लिए लाए हैं एक golden opportunity जिसमें government आपके पूरे study program को sponsor करती है, साथ ही living expenses के लिए non-refundable grant भी देती है, जो 15,000 to $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप permanent resident हैं, citizen हैं या फिर protected person हैं, तो आप इसके लिए eligible हो सकते हैं। इनकी ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे ज्यादा है। आप घर की कंफर्ट से 2 to 3 hours फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 4372643175। इट्स 4372643175।
7: जी हाँ, 4372643175 ग्लोबल एडवाइजरिंग के रबते के नंबर है। गवर्नमेंट आपको ये सहूलत फराहम कर रही है कि आप ना सिर्फ पढ़ें, आप कोर्स करें, सर्टिफिकेशन लें, बल्कि साथ साथ आपको पैसे भी देती है, और पैसे भी वो जो आपको वापस नहीं करने हैं। और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत तकरीबन हर शख्स जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। जितनी आपकी इनकम कम है उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। 4372643175 नागपाल साहब के रबते का नंबर है। किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। नागपाल जी, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
13: सभी को सलाम हमारी तरफ से।
7: बहुत शुक्रिया। अभी जैसे आप बताया करते हैं कि कुछ वक्त कम रह गया है जिसमें ग्रांट आपको नॉन रिफंडेबल ग्रांट मिलने के लिए शायद 2 months बाकी रह गए, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा लोगों को ये बता दीजिए कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इन कोर्सेज के लिए, और क्या कोई एज लिमिट भी होती है?
13: इसमें लाइक एज लिमिट कुछ है नहीं।
7: ठीक है।
13: और गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स हैं। गवर्नमेंट आपको फीस, गवर्नमेंट कॉलेज को डायरेक्टली फीस पे कर देती है।
7: ठीक हो गया।
13: साथ में आपको रहने खाने के लिए फंडिंग देती है। फंडिंग के 2 parts हैं, एक है ग्रांट जो वापस ही नहीं करना होता, एक है ऑप्शनल लोन जो कि 0% पे होता है जब तक आप एनरोल्ड हैं कॉलेज के अंदर।
7: पूरी
13: ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। तालीम हासिल करे, हुकूमत से फंडिंग को अपने अकाउंट में सीधे हासिल करे, मेरे नहीं अपने अकाउंट में हासिल करे।
7: सही।
13: जैसे कि हमारे इतने ही क्लाइंट, इतने ही सालों में हजारों क्लाइंट हासिल कर चुके हैं, हमें 7 years हो गए बिजनेस में, कोई कैच नहीं है इसके अंदर। जैसे गवर्नमेंट कितने देशों को इतनी फंडिंग कर देती है, वैसे जैसे कल गवर्नमेंट ने 275 million और दे दी यूक्रेन को।
7: जी।
13: तो गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा पैसा यहाँ लगाती है एडुकेशन में, मुझे लगता है कुछ कैच होगा। कोई कैच नहीं है, कॉल करें 4372643175, असेसमेंट कराएं, 30 to 100,000 की फंडिंग को अपने अकाउंट में हासिल करें, जिसका आधा पैसा ग्रांट जो वापस ही नहीं करना आपने।
7: 4372643175। अच्छा, फंडिंग कितनी बन जाती है? फर्ज कर लें फैमिली ऑफ 2 है, फैमिली ऑफ 4 है।
13: हाँ जी, फैमिली ऑफ 2 है तो अप टू 45,000, फैमिली ऑफ 3 है तो अप टू 60,000, फैमिली ऑफ 5 है तो अप टू $100,000। दोनों पढ़ते हैं, हस्बैंड वाइफ, इजी टू पास कोर्स करते हैं, फुली ऑनलाइन घर के कंफर्ट से करते हैं, असाइनमेंट है, एग्जामिनेशन नहीं है।
7: अच्छा।
13: पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन आप होने चाहिए, चाहे आप ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं एलिजिबल है, चाहे बैरी रहते हैं कहीं रहते हैं, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि फुली ऑनलाइन कोर्सेज है हमारे पास आपके लिए। बहुत लोगों को हेल्प कर चुके हैं, हमारे ऑफिस आए आप 200 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड में, आज भी 6 to 8 लोगों का अप्रूवल आया जिनके फंडिंग गिर चुकी है।
7: वेरी गुड। 4372643175। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं?
13: हाँ जी, पहली बात तो इसमें कोई, जो ही आपको ग्रांट और ऑप्शनल लोन मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है, कोई कोलेटरल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट में आपको एजुकेशन के लिए फंडिंग देती है किसके खाते में? आपके खाते में। कोई क्रेडिट स्कोर चेक नहीं है।
7: अच्छा।
13: आप बैंक के पास नहीं जा रहे, गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे रही है जी। और आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट फंडिंग क्यों दे रही है, तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ 1 अगस्त 2026 के बाद गवर्नमेंट फंडिंग की सारी लोन में देगी। अभी ग्रांट दे रही 50% पैसा जो वापस ही नहीं करना आपने
14: जी।
13: और जो लोग कर रहे हैं वो दूसरा तीसरा सातवां कोर्स कर रहे हैं और जो रह गए हैं वो रह ही जाएंगे।
14: सही है।
13: तो आप कॉल करें, हमारे ऑफिस आए 4372643175।
14: अच्छा, क्या आसान है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं ज्यादातर और घर बैठ के कर सकते हैं?
13: हाँ जी हाँ, फुली ऑनलाइन कोर्स है जो हमारे क्लाइंट्स मेजर चूज करते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी क्या लगते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, नोटिस ऑफ असेसमेंट, कोई अप्रोच नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई कारीगरी नहीं है। इसलिए हमारी फीस भी $199 से $499 के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम। कोई कमीशन नहीं है, पैसे भी हम बाद में लेते हैं। अब इसमें ईमानदारी किसकी तक हो रही है, आप लोगों की, क्योंकि आपने पैसे बाद में हमें देने अपनी ईमानदारी से। क्योंकि पैसे किसके खाते में गिरते हैं गवर्नमेंट से, 30 से लेकर $100,000 तक किसके खाते में गिरते हैं, आपके खाते में, जिसका आधा पैसा क्या है, ग्रांट जो वापस ही नहीं करना आपने। और जो ऑप्शनल लोन है उसके दो पॉइंट है जी, एक तो वो 0% पे, अगर एक साल का कोर्स है तो 0% पे वो लोन, और 1.5 साल बाद आपने पे बैक करना स्टार्ट करना, और 10 साल में आप पे बैक करते उस लोन को। मतलब आपने $50,000 की लोन पे $65 का ब्याज देना एक महीने का 10 साल तक, बस एक ब्याज है।
14: वेरी राइट, आप कह रहे हैं कि कोई एज लिमिट नहीं है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और जितनी इनकम कम होगी आपकी उतना आपको ज्यादा फायदा, ऐसा ही है?
13: बिल्कुल यही बात है। और इसमें गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स हैं, अभी इनरोल करें, 2 महीने रह गए और 3 बैच रह गए हैं, और बाकी उसके बाद तो लोन ही आएगा। तो मुझे लगता नहीं तो एडवांटेज आप लोगों को होगा, करना है तो अभी करें। जो बहुत कम लोग रह गए, बहुत लोग को हम पहले से असिस्ट कर चुके हैं।
14: वेरी राइट, अभी कॉल कर लें 4372643175। थैंक यू वेरी मच नागपाल जी, बहुत शुक्रिया, फिर अगले प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं। थैंक यू।
13: थैंक यू।
14: नंबर नोट कीजिए 4372643175, 4372643175। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात की दरख्वास्त पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसमें दरख्वास्त को गैर जरूरी और फजूल करार देकर खारिज कर दिया है। वकील फैसल मलिक ने आज 9 मई GHQ हमला केस में बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने दरखास्त गुजार पर ₹10,000 जुर्माना भी आयद कर दिया है और जुर्माना डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी की डिस्पेंसरी में जमा करवाने का हुक्म दिया है। फैसले में कहा गया कि जुर्माना गरीब मरीजों के इलाज पर खर्च किया जाएगा। अदालत ने कहा कि अडयाला जेल में मुलाकातों का तरीकेकार इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहले ही तय कर चुकी है। ट्रायल कोर्ट मुलाकातों पर कोई मतजाद हुक्म जारी नहीं कर सकते। बानी पीटीआई GHQ हमला केस में जमानत पर हैं, जुडिशल तहवील में नहीं है। यह भी कहा गया कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पहले भी इसी नोट की 2 दरखास्तें दायर की गई, मुतल्लिका फोरम से रजू करने के बजाय दरखास्त गुजार अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। सख्त फैसला है और हो सकता है कोई इंटरटेन ना ही इस किस्म की दरखास्त होती हो, लेकिन साथ जुर्माना भी कर दिया गया है। एक तरह का ये लगता है ऐसे ही कि मैसेजिंग हो रही है। 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन है जनाब। अगर आपको पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज़ खाने खाने हैं तो आप तशरीफ़ ले जाइए चाय खाना चाइनीज़ कुजीन। ये रिजवे में है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 है, और PC लाहौर की शेफ़ हैं। यहाँ 14 साल से ज़्यादा से कम का तजर्बा है और 100% हलाल है, फ्रेश और अथेंटिक फूड है, नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेज मसाला एट ऑल। तशरीफ़ ले जाइए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बुकिंग कॉल 905-514-7877, 905-514-7877। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपको होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ।

0: ट्रेवल एंड टूर्स मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। IATA अप्रूव्ड एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं। PIA के कंसोलिडेटर हैं और PIA टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं। बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट। उम्रा और ज़ियारत की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
1: लीजर्स कॉस्मेटिक्स के वेयर हाउस सेल के चंद ही दिन बाकी हैं, 8, 9, 10 लास्ट वीकेंड है ये। आपको यहाँ अप टू 80% तक की सेविंग हो सकती है, जिसमें कॉस्मेटिक एंड स्किन ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड नेम परफ्यूम्स आपको मिल सकते हैं, डिज़ाइनर सनग्लासेस। इसके अलावा मदर्स डे के लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट आपको मिलेंगे। जाना है आपको 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम में। lizacosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकट हॉल में सागा में। एवरीडे गोल्ड प्राइस जो है वो बजर कुरंदाजी दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मदर्स डे का प्रोग्राम है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, कपल के लिए प्रोग्राम्स हैं, बेशुमार एवरी डे इनाम घर के जरिए इनाम दिए जाएंगे। अपने बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हैं। स्टॉल बुकिंग और आप स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कर लीजिए शम्स रहमान साहब को 416-710-6777
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada? Yeah.

0: variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
1: Log on to eventsmyteamof2.com.
2: Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scarborough Main 2155 Lawrence Avenue East Lawrence or Bridgemount intersection 416-757-9999 Danton ki koi bhi bimari ho aap aitmaad ke saath Dr. Fayaz Ahmed Qureshi aur unki tajrubakar team ki professional services ka fayda uthaiye tamam insurance plan accept karte hain insurance na rakhne walon ke liye special discount root canal treatment aur retreatment ke specialist hain Mississauga location 1110 Bloor Street East Bloor or Dixie intersection 905-232-5678.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: Al-Karim Jewelers. अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अल-करम ज्वेलर्स जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन कड़े झुमके हार और सोने के बेहतरीन सेट्स शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे आज ही विजिट कीजिए अल-करम ज्वेलर्स 3465 प्लैटिनम ड्राइव यूनिट 99 मिसिसागा 9058280009 It's 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aapki guarantee hamari. अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा डेडलाइन इज कमिंग सून अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922 इट्स 905-783-1922 तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777
4: जी हाँ 416-710-6777 वो नंबर है जहां आप स्टॉल ब्रोकिंग स्पॉन्सरशिप या मजीद मालूमात के लिए कॉल कर सकते हैं 23, 24, 25 और 26 मई को इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल होने जा रहा है कैपिटल बैंकेट हॉल मिसागा में कैपिटल बैंकेट हॉल ईद मेलों की वजह से मशहूर है एवरी डे यहाँ पे प्राइजेज हैं गोल्ड के प्राइजेज हैं और भी बहुत कुछ है जबरदस्त इंटरटेनमेंट है शम्स रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं मजीद डिटेल उन्हीं से लेंगे शम्स भाई अस्सलाम वालेकुम
5: जी वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप
4: बिल्कुल ठीक बहुत शुक्रिया बताइए कैसी तैयारियां हैं क्या कुछ होने जा रहा है इस इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में
5: बस जी तैयारियां बहुत ज्यादा है चारों दिन बड़े शोज हमने रखे हैं
4: जी
5: और बस अब हमारा मैसेज है वेंडर्स के लिए कि जो लोग अपने पास स्टॉक घर में रख के बैठे हैं कोई कपड़े वाला है कोई जेवर वाला है इसी तरह किसी के पास कोई ग्रोसरी सॉलिड फूड आइटम्स पड़े हुए हैं अनकुक्ड मसाले हैं किसी के पास तो ये सारे लोग आके हमारे इस ईद मेले में शमूलियत कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो स्टॉल की प्राइस हमने बड़ी अट्रैक्टिव रखी हुई है इस वक्त अर्ली बर्ड चल रहा है तो हमसे राब्ता करें और आपका कोई भी ब्रांड है आप आइए इसमें मार्केट कीजिए 8,000 से 10,000 लोग इसमें होंगे विजिट करेंगे तो एक जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए चाहे आप इंश्योरेंस बेचते हैं चाहे आपका मॉर्गेज करते हैं कुछ भी करते हैं यहाँ से आपको गारंटीड लीड्स मिलेंगी और जब आप हमारे साथ साइन अप करते हैं तो हम आपको टीवी स्टूडियो में ले जाके 360 टीवी में आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे और हम उसको वायरल करेंगे बाय द टाइम ईद मेला आएगा आप हर जगह मशहूर होंगे और लोग आपसे आके मिलेंगे कि आप कैपिटल बैंक्वेट हॉल में कहाँ पर हैं।
4: 416-710-6777 416-710-6777 पे कॉल कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा इनाम घर इनाम देने की वैसे मशहूर हैं और यहाँ भी आप इनाम घर के इनाम भी होंगे और बाकी इनाम भी होंगे, उसकी कुछ तफसील बताइए, प्रोग्राम्स कैसे होंगे चारों दिन?
5: जी बिल्कुल, चारों दिन हमने बड़े शोज रखे हुए हैं, तो जो भी नाजरीन जो भी सामईन सुन रहे हैं जो इनाम घर में आते रहते हैं वो सारे एक्साइटेड हैं। चार दिन हैं और चार शोज हैं। पहले दिन हमारा शो है, फैशन शो है। उस फैशन शो में भी जो मॉडल विन करेगी, जो कोई मॉडल इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं अभी हमसे, मेल फीमेल मॉडल दोनों रब्ता करें, जो जीतेगा उसी दिन अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से उनको गोल्ड का प्राइस दिया जाएगा। दूसरे दिन हमारा सिंगिंग का कंपटीशन है, जो सिंगर्स हैं हमसे रابطہ कर लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, जो सिंगर भी जीतेगा उसी रात को अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस मिलेगा। फिर तीसरे दिन यानी के तीसरा दिन आ जाता है मंडे का। मंडे वाले दिन हमारा फैमिलीज का शो है, तो फैमिलीज का शो और जो मदर्स डे के हिसाब से और जो सीनियर्स हैं वो सारे आए तो हम उनके दरमियान भी एक छोटा सा फनी कंपटीशन करवा के गोल्ड का प्राइस उस दिन हम सीनियर मदर या सीनियर फादर को मिलेगा।
4: ठीक।
5: और आखिरी दिन जो है वो हमारा मिक्स है, सारी फैमिलीज, हर जेंडर के लोग, हर एज के लोग आएंगे और उसके लिए स्पेशल शाजिया हुसैन डिजाइन कर रही है एक शो जो टोरंटो 360 की होस्ट भी है, तो उस दिन भी एक गोल्ड का प्राइस। और हम मशहूर हैं अलकरम ज्वेलर्स के कि जिन्होंने सारे इनामात का इंतजाम किया है।
4: वही राइट जनाब, इसके अलावा किसी किस्म का स्टॉल आप लगाना चाहते हो, मेहंदी का स्टॉल हो, ज्वेलरी का स्टॉल हो, क्लोथिंग का स्टॉल हो, रब्ता कर लीजिए 416-710-6777 416-710-6777। थैंक यू वेरी मच शम्स साहब, बहुत शुक्रिया, अगले प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं।
5: थैंक यू,
4: बहुत
5: शुक्रिया।
4: मजीद डिटेल के लिए कॉल कीजिए शम्स रहमान साहब को 416-710-6777। एक खूबसूरत नगमा और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: आप सुन रहे हैं पाकिस्तान टोरंटो एफएम 101.3 स्टूडियोज में, रابطے کے نمبر 4165930003۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔ ٹورانٹو اور اس کے

0: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से रब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम

0: इनके इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपने सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।
1: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ प्राउडली presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: Lisa ki yaad nahi aayi tujhe, Jassi. जस्सी को छोड़िए क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टिमोर। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782, 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे। Bride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में। Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर। चरगा, लाहौरी फिश, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम्ब चॉप्स, अफगानी टिक्का, निहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088, इट्स 905-268-0088, हाईवे 10 और डंडास के इंटरसेक्शन मिसिसागा। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777, इट्स 416-710-6777।
3: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001, 905-819-1001, लाइसेंस नंबर 12374।
0: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden और Shepherd का intersection, 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. तमाम major repair work करते हैं, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service, 24/7 towing service भी available है। SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary और Munir Hussain, 647-321-7444, it's 647-321-7444.
4: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
0: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
5: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mein aap take number 416-593-0003 is waqt main aapko Pakistan liye chalte hain Bilal Zaman sab senior journalist hain marsad maujood hote hain khush aamdeed kahenge Bilal sahab assalam alaikum
6: جی وعلیکم السلام
5: اور سامعین کرام جن موضوعات پہ آج گفتگو کریں گے یو اے ای پر میزائل حملہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں اور پیش رفت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جو پیش کی ہے اور بھارت کے پاکستان پر میزائل حملے کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے اس حوالے سے اسلام آباد میں ایک تقریب ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے کے پی کو نظر انداز کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی نے وفاق کے خلاف کل چھوڑ ہڑتال کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے بھارت پاکستان جنگ کا ایک سال مکمل ہونے کے دن یہ احتجاج رکھا گیا ہے تو کیا پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا اس کے ذہن میں ہے اور پہلی بار آئی ٹی مردم شماری کرانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے بلال صاحب پاکستانی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے عباس عراقچی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے یو اے پر میزائل حملہ یا ڈرون حملہ نہیں کیا ایران کا یہ موقف ہے ایسے بینات کے تناظر میں ایران جنگ کو ختم تصور کیا جائے یا جاری سمجھا جائے کیونکہ آج ایک اور بیان تھا امریکی وزیر کا ان کا کہ جارحانہ عمل جو ہے وہ ایران میں اب ختم ہو چکا ہے
6: جی دیکھیں بیانات جو ہے نا مطلب کہ وہ تو بالکل اس قسم کے جو ہے نا وہ بیانات آ رہے ہیں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ ہم جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ
5: بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں جی
6: جی کیونکہ وہ جنوبی کوریا کے اوپر بھی کچھ جو ہے نا وہ اٹیکس ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہرمز جو ہے وہ عالمی گزرگاہ ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس وصول نہیں کرنے دیں گے یہ بھی امریکہ نے کہا ہے ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کر لیے تو نہ اسرائیل بچے گا نہ مشرق وسطی بچے گا اور کیا کہتے ہیں اپنا ہرمز میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو نیا نقشہ ہے اس کا وہ ایران نے جو ہے نا وہ جاری کر دیا وہ کہتے ہیں ہم ایک ایک انچ کا جو ہے نا وہ تحفظ کریں گے پھر جو ہیں اپنا ان کے سپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم نے جو ہے نا وہ سٹارٹ بھی نہیں کیا ابھی تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ ابھی تو کہتے ہیں آغاز ہے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا تو جس قسم کے بیانات جو ہیں وہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں اور ابھی وہ آپ نے دیکھا کہ ویسل کے اوپر اٹیک بھی ہوا ہے اور وہاں پہ جو دوبارہ آپ نے ہرمز کے اندر جو ہے نا وہ کشیدگی جو ہے نا وہاں پہ اور مزید بڑھ گئی ہے
5: جی
6: تو اندر کی تو بات یہ ہے جو ابھی مطلب یہ کہ بتایا ہے کہ جی عباس عراقچی نے کہ جی مذاکرات جاری ہیں پیش رفت جو ہے نا وہ ہو رہی ہے تو سمجھ نہیں آتی کیسی پیش رفت ہے کہ جس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ یہ سب کچھ بھی جو ہے نا وہ ہو رہا ہے کہ بیانات سے اور جو اعلانات ہیں اور جو بیان بازی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ جنگ اب اور بھی جو ہے نا وہ شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوگی یا جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل سے جو ہے نا وہ جنگ ابھی بھی جاری ہے لیکن بہرحال ایک سو کالڈ جو جنگ بندی ہے وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ جاری ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل بھی ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اٹیک ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں کیا جا رہا لیکن جو لفظی گولہ باری ہے وہ تو بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ دونوں طرف سے جاری ہے اور اس وقت جو میدان جنگ ہے وہ زمین نہیں بلکہ وہ پانی جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے اور آبن ہرمز جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ جنگ جو ہے نا وہ جاری ہے تو میرے خیال سے وہی ایکسکیلیٹ کرتے کرتی اگر زمین تک پہنچتی ہے تو وہ پہنچ جائے گی ورنہ معاملہ جو ہے وہ نہ ایران جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے اور اس کو کھولنے کے لیے تیار ہے اور امریکہ بھی اپنی ضد کے اوپر جو ہے نا وہ برقرار ہے کہ بجائے اس کے کہ اس معاملے کو بھی فی الحال جس طرح ایران نے مشورہ دیا تھا کہ وقتی طور پہ جو ہے نا اس کو چھوڑ کے دوسرے معاملات کو جو ہے نا وہ دیکھ لیا جائے وہ بھی اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے
5: ویری رائٹ اچھا فیلڈ مارشل صاحب کو نوبل آصف منیر صاحب کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا جائے سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کی جانب سے قرارداد جمع کروا دی گئی ہے قرارداد نے کہا گیا کہ امریکہ ایران امریکہ جنگ رکوانے میں فیلڈ مارشل کی کاوشیں قابل ستائش ہیں اب تاکہ ان کو اس کے لیے نامزد کیا جائے تو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ایم کیو ایم کیا اس سے میسج ملتا
6: जी देखें, पहली बात तो ये है कि अभी जो है ना वो जंग खत्म नहीं हुई, अभी तो मुज़ाकरात जो है ना वो जारी हैं, और ऐसी कोई उम्मीद जो है वो नजर भी नहीं आ रही। ठीक है, कोशिशें जो हैं वो जारी हैं और कोशिश जो है ना वो की जा रही है। कोशिश के ऊपर जो है वो अगर नोबेल इनाम के लिए वो समझते हैं कि आसिम मुनीर जो हैं और फील्ड मार्शल हकदार हैं, तो एक तरफ जो है ना वो तो ये बिल्कुल बताया जा रहा है कि कलेक्टिव एफर्ट है, वजीर आजम भी और जो दफ्तर खारजा है वो भी भरपूर तरीके से, इसहाक डार, वजीर आजम और सब जो है ना उस प्रोसेस के अंदर जो है ना वो शामिल है। तो बहरहाल मतलब ये कि एक एक ग्रैंड जेस्टर जो है ना वो अपनी जगह पे मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि हर चीज जो है ना उसका क्रेडिट नहीं होता। अगर आप जो है ना मतलब डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि जी मैंने 7 और 8 जंगें रुकवाई हैं तो मुझे नोबेल इनाम दिया जाए, अच्छा नहीं मिला तो कहता कि जी मैं आप जो है ना वो दुनिया की ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो बाजू का जो है ना वो ऐसी चीजों का जो है ना वो उल्टा रिएक्शन भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ चीजें हैं वो आप करते हैं आउट ऑफ गुडविल, और उसका सिला जो है वो आपको अल्लाह की तरफ से मिलता है। तो हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो ये सीरियस एफर्ट्स कर रहा है पूरी दुनिया के लिए, और अगर इसके नतीजे में जंग खत्म होती है और अमन कायम होता है, तो इसका भी सिला जो है वो पाकिस्तान को जो है ना वो एक अच्छे और बेहतर अंदाज से जो है ना वो मिलेगा। नोबेल इनाम जो है वो इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज जो है ना वो नहीं।
5: अच्छा, भारत के पाकिस्तान पर मिजाइल हमले का 1 साल मुकम्मल हुआ है। इस्लामाबाद में मार का हक से मुतालिक किताब सच की जंग की तकरीब रोनमाई हुई है। क्या भारत ने अपनी हार तस्लीम कर ली है, अभी मौके की तलाश में है, और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बंद हो गया? मैं खैर उधर से तो शायद ऐसा मैसेज है कि अभी ये जारी है।
6: हाँ, मैसेज उधर से था बिल्कुल, और ये शुरू शुरू में जब मई का महीना जो है ना वो गुजरा था, तो उसके बाद कुछ महीने पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल देखे हैं जहाँ पे ये, लेकिन ये कि पाकिस्तान की जो एक आप कह लें कि अपनी जो दिफाई सलाहियत है वो सिर्फ जो है ना वो जंग के मैदान तक महदूद नहीं है। हमारी जो सीक्रेट सर्विस है, हमारी जो फौज के इदारे हैं, उन्होंने अपना काम जो है वो भरपूर तरीके से अंजाम दिया, और दुश्मन को हर फ्रंट के ऊपर जो है वो उन्होंने शिकस्त दी। भारत ने बिल्कुल जो है ना वो क्लेम किया था कि अब हम प्रॉक्सीज को जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, अब हम जो है ना पाकिस्तान के जो वेस्टर्न जो बॉर्डर्स हैं उनको हम जो है ना वो हीट अप करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से ही जो है ना वो नाकामी थी। और बहुत जल्द जो है वो जितने भी प्लान्स थे, जितने भी नेटवर्क्स थे, उनको ना सिर्फ पकड़ा गया, उनको बेनकाब किया गया, एजेंट्स को पकड़ा गया और उनको भी जो है ना वो दुनिया के सामने जो है ना वो रखा गया, बेनकाब किया गया। तो मुंह की खानी पड़ी हर तरफ से जो है ना वो भारत को, और उसके बाद जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि जो चिराग है वो जो बुझ गया, तो वो जो उन्होंने जो है ना वो सिंदूर का जो उन्होंने एक कोशिश की थी कि उसको जो है ना वो मांग के अंदर जो है ना वो सजा के रखा जाए, वो ख्वाब जो है वो उनका पूरा नहीं हो सका। और अभी हमने देखा है कि जब से ईरान और जो जंग है इसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें भारत के पीछे भी जो है ना वो इसराइल का एक हाथ जो है वो नजर आ रहा था, तो जब से ये वाला मामला है कि उधर जो है ना वो ज्यादा तवज्जा जो है वो लबनान की तरफ और ईरान की तरफ जो है ना वो हुई है, तो इधर से भी मामला जो है वो काफी हद तक जो है ना वो कम हुए हैं। अब देखते हैं कितनी देर तक जो है ना ये मामला ऐसे ही रहता है।
5: अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज करने का इल्जाम है, वज़ीर-ए-आला जो है KP, उन्होंने वफाक के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया है। NFC बिजली और गैस की फरहमी समेत अहम शोबों में सूबे के साथ नाइंसाफी की जा रही है। सुहेल अफरीदी साहब का यह कहना है, ये मामला तो कई साल से चल रहा है, लेकिन अभी जो है अभी 1 साल जब मुकम्मल हुआ है इस पाक भारत जंग का, उसी दिन एहतजाज रखना, तो क्या इसका मैसेज क्या है, PTI क्या कहना चाह रही है इस मौके पर?
6: जी देखिए, हमने पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन पिछले साल भी इमरान खान साहब ने इसको मौखर कर दिया था, तब भी इन्हीं दिनों के अंदर ये इसी तरीके से जो है ना, क्योंकि ये 9 मई का भी साथ मामला जो है वो जुड़ा हुआ होता है, और ये भी मई का महीना था, तो PTI जो है वो हर साल ही जो है ना मतलब ये कि इसको वो करने की कोशिश करती है, तो ये तो भी पिछला महीना भी गुजरा है, उससे पिछले महीना भी गुजरा है, यही शिकवे शिकायत थे। आप बिल्कुल मतलब ये सूबे का हक जो है वो लें और उसके लिए एहतजाज करें, ये भी आपका राइट है, लेकिन टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाजू का जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है कुछ डेलीगेशन वगैरह आ रहे होते हैं, लास्ट टाइम जो 12-13 तारीख थी उसके अंदर जब ये मुजाकरात का मामला इस्लामाबाद के अंदर जारी था, तब भी PTI जो है ना वो तैयारी पकड़ रही थी। अब ये बीच में जो है वो 2 हफ्ते की 3 हफ्ते की विंडो थी, इसके अंदर आपने कुछ भी जो है ना वो करने की कोशिश नहीं की, तो ये आप क्यों जो है ना वो ऐसी किसी तारीख का जो है ना वो इंतजार करते रहते हैं कि जब, और ये इससे फर्क जो है ना वो किसी को इतना नहीं पड़ता, खुद आपके कॉज को जो है ना वो ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जब आपका कॉज ठीक है, सही है, आप राइट के ऊपर हैं और आप अपना एहतजाज जो है ना वो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो क्यों ऐसी तारीखों को जो है ना वो आप इस्तेमाल करके खुद उसको जो है ना वो कॉन्ट्रोवर्शियल जो है ना वो कर देते हैं।
5: अभी जो आज अलीमा खान साहब ने जो अपील की थी, आए मेंबरान पार्लियामेंट वगैरह या नहीं आए वहाँ पे?
6: जी वो उसके ऊपर यही ज्यादा इतलात है कि बजाय जितने मेंबर पार्लियामेंट देखें पीटीआई के इस वक्त तकरीबन जो है ना वो 400 के करीब 300-400 के करीब है।
5: अच्छा,
6: वो
5: दोनों मेंबर पार्लियामेंट एमपीपीज और एमएलए, ठीक है बिल्कुल।
6: हाँ जी, तो क्या कहते हैं अपना उनको और चले साबिक भी अगर हम जो है ना वो मिला लें सबको मिला के जो है ना काफी बड़ी तादाद जो है ना वो बनती है। तो वहां पे जो है ना वो जो कारकुन थे वो इससे ज्यादा तादाद के अंदर थे। तो जो क्या कहते हैं अपना जो अपील की थी वो तो उनके लिए की थी कि ये जो मेंबर पार्लियामेंट हैं ये खान साहब की वजह से बने हैं और इनको वहां पे जो है ना वो आने के लिए जो है ना वो कहा गया था, लेकिन कोई खास जो है ना पीटीआई के जो
5: नहीं थे। ठीक है,
6: अच्छा सर, वो वहां पे
5: नहीं। मुल्क में पहली आईटी मर्दमशुमारी करवाने का असूली फैसला किया गया है। नौजवानों की डिजिटल महारतों को जामे डेटा जमा किया जाएगा। वजारत आईटी ने इसका दावा किया है, तो क्या इसका फायदा होगा या जबानी जमा खर्च है? क्या वाकई गवर्नमेंट आईटी के हवाले से कोशिश कर रही है, कुछ इसमें इंकलाब लाने की कोशिश कर रही
6: है? जी देखें, अभी वो हमने खबर को डिस्कस भी किया था कि वो पाकिस्तानी निजात बच्चा है जिसने अपनी एआई की कंपनी जो है वो जॉइंट वेंचर के साथ खोली थी और उसको जो है ना वो अब $60 बिलियन के अंदर जो है उसको टेक ओवर किया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर थी टेक इंडस्ट्री के अंदर ये, और बड़ी देर मतलब ये उसके ऊपर गुफ्तगू होती रही। बहरहाल आईटी के अंदर जो है पोटेंशियल जो है पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ब्रिलियंट माइंड्स जो हैं वो मौजूद हैं और इनको ग्रूम करने की इनको यही जो है ना वो चीज, यही बच्चे जब बाहर जाके बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़ते हैं और वहां पे आप देखेंगे किस तरह के रिजल्ट्स जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, तो यही ग्राउंड अगर इनको यहाँ पे जो है ना वो अवेलेबल हो बच्चों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है या जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, इनको ये भी देखना चाहिए कि जो बच्चे फिर इस तरह एक्सेल करते हैं ना उनकी बेस शुरू से बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे जो है ना वो आईटी की बेस बनाने के लिए हमारे यहाँ पे अभी तक तालीमी निजाम को उस तरह खोला नहीं गया कि हम बच्चों को कैटेगराइज कर सकें कि कौन से बच्चे आर्ट्स में अच्छे हैं, कौन से साइंस में अच्छे हैं, कौन से आईटी के अंदर और कंप्यूटर्स के अंदर जो है ना वो इंटरेस्टेड हैं। तो उस बच्चे को उस कैटेगरी के मुताबिक शुरू से ही जो है वो उसकी तरबियत वो की जाए। हमारे यहाँ पे 60-70% पेरेंट्स का आज भी माइंडसेट यही है कि बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर ही बनेगा तो दुनिया में एक्सेल कर सकता है।
5: ऑलराइट, चलिए हम कॉल्स लेंगे आपकी स्टूडियोज में, रास्ते के नंबर 416-593-0003 5666 फर्स्ट कॉलर है आज 5666 आप ऑन एयर हैं जी, बात कीजिए 5666 लास्ट फोर डिजिट्स 5666।
7: अस्सलामुअलैकुम भट्टी साहब।
5: जी वालेकुम सलाम
7: भट्टी साहब, पहले तो सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। हम नई 9 मई अपना 10 मई की एक जंग हमने जीती 9 मई के दुश्मन से,
5: ठीक है,
7: और एक 10 मई को हमने, मैं समझता हूँ सब आवाम ने मिलके पूरे पाकिस्तान ने एक होकर ये जंग जीती थी उस दिन।
5: अच्छा,
7: 10 दिन पहले तक अगर पतलून उतारी जा रही थी किसी सोशल मीडिया पे सब पाकिस्तानी। दूसरी चीज देखिए, आईटी में जहाँ तक बात है पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर यूथ हमारी ज्यादा है रेशो में। हमें इतना बड़ा एसेट है ये हमारा कि हमें चाहिए हम एक होकर इस एसेट से फायदा उठाएं, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मर्ज करेगा, बड़ी अच्छी ताकत बन के इंशाल्लाह।
5: ऑलराइट जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 6536 सर, बात करेंगे 6536। अच्छा चलिए, आप सुन रहे हैं 7997 सर, आप ऑनलाइन बात कीजिए 7997।
8: कैसे हैं आप?
5: जी शुक्रिया सर, थैंक यू
8: जनाब। ये आप जो ये जो बात की जा रही है ना ईरान और अमेरिका की जंग बंदी की, ठीक है, ये जंग बंद नहीं होगी, इसकी बहुत सारे वजूहात है।
5: ओके,
8: अगर ईरान पैक होता है तो ईरान में गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी।
5: ओके,
8: ठीक है। अमेरिका का जो है अब मसला ये है कि एक बंदा है बदमाश है पूरे मोहल्ले का, अब उसको छोटी मोटी फैटी लग गई है तो अगर वो बैठ के घर चला जाए अपने तो उसकी बदमाशी तो खत्म है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रख ले, हम कितने भी पाकिस्तानी ईरान के फेवर में हो, हमें ईरान को ये समझाना चाहिए कि भाई आप ये गुजरगाह को बंद नहीं कर सकते, ये आपके लिए नहीं है, ये हमेशा से ऐसी खुली थी और ऐसी खुली रहेगी।
5: ठीक।
8: और अगर अमेरिकन्स ने कोई एग्रीमेंट किया तो पाकिस्तान को भी उस पर खड़े हो जाना चाहिए, इस डिसीजन को मानना नहीं चाहिए,
5: ठीक,
8: क्योंकि इसके पैसे पाकिस्तानी सब भरेंगे,
5: ठीक है।
8: और हमें मिडिल ईस्ट के जो अरब कंट्रीज है मजहबी तौर भी है, हम अरब के साथ है, हम अरब को ज्यादा रिस्पेक्ट देते
5: हैं,
8: ईरान को भी देते हैं, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी ये है अपने पेट में छुरा ना मारे। और दूसरा पीटीआई की बात जो कर रहे थे आप
5: जी,
8: देखे ना जो नादा वो होता है ना दोस्त, वो दाना दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। पीटीआई के पास कोई लोग है ही नहीं जो मूवमेंट चलाए, कभी बहनों को ले आते हैं कभी क्या है,
5: ठीक है।
8: और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, फौजी गवर्नमेंट को, क्योंकि सब कुछ फौज के हाथ में, फौज जिम्मेदार है इसकी। अच्छा हो जाएगा तो बड़ी शाबाशी है फौज को, हम देंगे शाबाशी, सब देंगे पाकिस्तान, लेकिन बुरा होगा तो ये जिम्मेदारी इन पे है।
5: चले और सर थैंक यू। 5415 सर आप ऑन है, 5415
9: पाकिस्तान की वजह तू, जिस दिन दी पाकिस्तान ने काम शुरू किया, शहबाज शरीफ का पहला ट्वीट आया सी, उस जंग की की हालत सी, अज जंग की की हालत है। इधर उधर दी गल्लां दा मैनूं नहीं पता, अज दी दिन दी अज दी तारीख तक दोवे फरीक पाकिस्तान नूं सारा संभाल रहे ने। और लोगों का कोई ख्वाब हो सकता है, ख्याल हो सकता है कि पाकिस्तान की कोई गल को नहीं, पाकिस्तान को मानता नहीं, वो कौन करेगा, लेकिन आई दी तारीख तक पट्टी साहब दोवां दे मुल्कां दे बयान ने कि असीं पाकिस्तान की सालसी नूं ही मान लिया, होर असीं किसी की सालसी नूं नहीं मानते।
5: ठीक
9: एक गल,
5: ठीक है जी।
9: दूसरी गल पट्टी साहब, गल ए कि जिथों तिकर तुसां जिक्र किया इमरान खान साहब की काल का,
5: नहीं कॉल दा तो खैर वैसे ही जिक्र होया सी, मतलब वो तो मैं जैसे पूछ रहा सी की होया। जी जी
9: जी, ओ बलार भाई सानू दसणगे, ओरे विच लीमा बाजी ने आख्या सी कि सिर्फ मेंबरां ने पार्लीमेंट नु आख्या गया, वर्कर नु नहीं आख्या गया। ते ए कॉल कामयाब है कि नाकाम है?
5: नहीं, वो दस देता उन्होंने कि लोग नहीं आए ज्यादा, वर्कर ज्यादा सी ओदे दारां तो।
9: मतलब है कि ओदे दारां ने इमरान खान नु
5: दूसरी
9: गल पट्टी साहब, गल छोटी जी गल करांगा। पट्टी साहब, चाहे जमीन होवे या समान होवे या समुंदर दी तह आउण, तुसां वेख्या अगले दिन भी पाकिस्तान ने इंडिया दा जहाज नूं रेस्क्यू कीता।
5: ठीक
9: ठीक है, पाकिस्तान उस खिते दा पट्टी साहब आज दी तारीख है सब तो वड्डा प्लेयर है, और जेड़ा संदूर शंदूर है ना वो पट्टी साहब किधर उड़ गया
5: है,
9: किधर कोई संदूर नजर नहीं आउंदा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान दा परचम जेड़ा पट्टी साहब इंजे ही लहराएगा और इंजे ही पाकिस्तान अपनी शान और शौकत दे सब दुनिया दे।
5: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। 8156 सर आप ऑन है ना, 8156 सर आप ऑन है ना। जी जी बात करें। जी जी
10: देखें जी, केपी के कोई 8000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है, पन बिजली
5: जी
10: हुकूमत 2 रुपए पर यूनिट उनसे खरीदती है और उसी सूबे को वापस 50 रुपए पर यूनिट बेच देती है, और उनका रॉयल्टी का कुछ 3000 अरब रुपया एक जमाने से जमा है, एक पैसा भी नहीं दिया।
5: सही,
10: गैस भी वो 400 MMSCM प्रोड्यूस करता है, 200 उनकी जरूरत है, 200 नेशनल ग्रिड में डाल देता है, उसके भी एक पैसा नहीं प्रोड्यूस किया।
5: सही।
10: तीसरी चीज आ जाए क्रूड ऑयल, जितनी पाकिस्तान में क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है 48% वो केपीके से प्रोड्यूस होता है, उनकी डिमांड है कि वहाँ एक रिफाइनरी लगा दें,
5: कमाएंगे
10: लाखों में लोगों को रोजगार मिलेगा। वो भी जनाब एसएम इकबाल कहते हैं कि आप रिफाइनरी लगाएंगे, वो ऑयल ट्रकों में भर भर के पंजाब लेके जाते हैं।
5: तो ये पंजाब सिंध और बलोचिस्तान वाले कुछ नहीं करते, उनके पास कुछ भी नहीं है।
10: क्या चीज़?
5: मतलब वो कोई चीज, कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई गैस, कोई बिजली, कोई चीज, वो कुछ नहीं करते तीनों सूबे, सिर्फ केपी करता सूबा।
10: हाँ जी, ऑयल 48% कह दिया ना मैंने, पंजाब में क्या पैदा होता है, ना गैस पैदा होती है, ना ऑयल पैदा, गेहूँ पैदा होता है। और हाँ, सिंध सबसे ज्यादा आजकल गैस पैदा करता है, बलोचिस्तान में सोई फील्ड, मैंने भी 3 साल जो है ना सोई फील्ड में काम किया।
5: चलिए ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू सर जी। 5794 सर आप ऑन ले रहे हैं, 5794
11: अपना
5: एक हिस्सा है, सिंध में बलूचिस्तान में गैस निकलती है,
11: तो इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। सब पाकिस्तान के साथ है, तो बात ये है कि अब ये बात तो तयशुदा है कि भाई मेंबर्स भट्टी साहब पहले भी बताया था, एमएनए जो भी है वो हां साहब की या इनके चेयरमैन की या हलीमा की कोई बात नहीं सुनते। वो कहते हैं भाई हम फौज के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, अब मार खा खा के या जो मर्जी कह ले, हम में वो दम हम नहीं रहा। भाई इस बात को छोड़ो, अपनी गलती तस्लीम कर लो और चलो आगे पीछे। कौन है मैंने शिप भट्टी साहब छोड़ता है जो मैंने बना हुआ है, पता नहीं कल को 2-2 करोड़ दे के फिर टिकट लेनी है, तो फिर बेहतर है भाई 5 साल तो पूरे करो ना अपने पैसे, देखी जाएगी बाद में
5: जी।
11: तो बाकी ये ईरान और अमरीका भट्टी साहब ये बढ़के तो बहुत ज्यादा मार रहे हैं, लेकिन अफेक्ट तो गैस पे ही पड़ रहा है ना। अब यहाँ कनाडा में भी आज 10 सेंट ऊपर चली जानी है, और इनकी जो प्रिडिक्शन थी कि $2 हो जाएगी तो आज $2 हो रही है जी, तो ये पाकिस्तानी 400 रुपए में बन जाती है। तो अब देखे 200-400 पूरा बन गया पाकिस्तानी। अब पाकिस्तान में तो मैं फिर भी कहता हूँ यार, कोई आपको मेट्रो ऑरेंज ट्रेन या मकसद है मोटरसाइकिल अलाउंस, चलो किसी को मिल रहा होगा किसी को नहीं मिल रहा होगा, मसला रजिस्ट्रेशन का है। भट्टी साहब बात यही है ना, वहां पे मोटरसाइकिल मैंने खरीदा हुआ है, बच्चे मेरे चला रहे हैं, तो भाई उनको कौन देगा? तो ये मामला तो है, तो इसलिए हमें चाहिए कि देखे ये जो भी मकसद करारदाद भी पेश की है वो भी आप वाली बात है कि ये इस तरह नहीं होता कि इस तरह मुंह उठा के जिसके मर्जी, भाई पूरा मुल्क या तो वजीर आजम या कौमी असम्बली में आए करारदाद तो फिर तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये है कि चले अल्लाह ताला हदायत दे सबको, हमको सबको मुल्क के लिए एक ना हो जाए, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी फरमाए।
5: थैंक यू सर, थैंक यू। 6141 सर आप ऑन एयर, 6141 लास्ट 4 डिजिट्स 6141 सर आप ऑन एयर बात कीजिए।
12: अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब।
5: जी वालेकुम सलाम।
12: भट्टी साहब ऐसा है कि देखें कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही है कि सूबाइयत को छोड़ दें, और हम लोग तो कभी ऐसा नहीं कहते कि जितनी पाकिस्तान में पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है इतनी तो केपीके में चोरी हो जाती है, लेकिन हम इसलिए बात नहीं करते कि हम ये बात करना नहीं चाहते सूबाइयत की, हम पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं और मोहब्बत और दोस्ती की बात करना चाहते हैं। 9 मई और 10 मई में एक दिन का फर्क है भट्टी साहब, ये कहीं वो डेटे तो सेट नहीं कर रहे
5: नहीं,
12: थे
5: लेकिन जहाँ पे वैसे जो जनरेट होती थोड़ा सा वहाँ तो हक ये है कि वहाँ ज्यादा देनी चाहिए, जहाँ से जनरेट हो रही इजी भी है शायद वहाँ देना चीजें वहाँ।
12: भट्टी साहब देखें पाकिस्तान में हर जगह पे अब इलेक्ट्रिसिटी बहुत जनरेट हो रही है सोलर से, और गवर्नमेंट को बेची जा रही है और गवर्नमेंट वापसी महंगी बेचती है, लेकिन फिर वो चोरी उधर गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की जेब से तो नहीं ना आ सकती।
5: बहुत शुक्रिया आपका। 6910 सर आप ऑन एयर, 6910 6910
13: वालेकुम भट्टी साहब।
5: वालेकुम सलाम जी सर।
13: हां भट्टी साहब, पहले 3-4 बातें हैं। मेन चीज ये कि जंग बंद हुई, अगर नहीं हुई होती तो यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत ये सब जितने परेशान हुए हैं पहली दफा, हालांकि जंग हो रही थी ईरान अमेरिका के, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो यूएई का हुआ है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो। और तो शुक्र है कि चले हज की वजह से शायद इन्होंने थोड़ा सा इस चीज का ख्याल किया पाकिस्तान के एफर्ट्स की, वरना ये जंग जो है वो चाहे छोटी होती बड़ी होती वो नुकसान पूरे रीजन की थी बल्कि पूरी दुनिया की थी। अब आ जाइए इसी से रिलेटेड के एनकेएम ने जो है वो फील्ड मार्शल को नॉमिनेट करने की कोशिश की है, तो बेसिकली वो अपने गवर्नर लाना चाह रहे हैं क्योंकि गवर्नर हट गया, क्योंकि शर्तों के बाद तो बिल्कुल राइट हैंड थे एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बिठाया था। अब आ जाइए गूगल पे मैंने सर्च किया तो सबसे ज्यादा जिस पार्टी ने केपीके में झूठ बोला है ना वो किसी सूबे ने बोला,
5: टाइम बहुत कम है। 5722 खालिद साहब, 5722
14: ठीक है, थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब। मैं बस मुख्तार बात करूंगा। बात हो रही है कि भी इमरान खान को लोग क्यों नहीं आते और रह क्यों नहीं आती। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो है वो रियासत पाकिस्तान से ज्यादा, यानी किसी के पर्सन से ज्यादा इसराइली मफादात की कैद में है।
5: ओके जी,
14: क्योंकि जब अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब इक्तदार में आए तो लोग कह रहे थे कि जी वहां से कॉल पिंडी एक कॉल आएगी और ये बंदा रिहा हो जाएगा,
5: लेकिन वो कॉल नहीं आई तो इसलिए हो गया। चले ठीक है सर, टाइम बिल्कुल कम है। बिलाल साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, कल आपसे बात करते हैं सर। थैंक यू
6: जी, थैंक यू,
5: और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सामिन कराम, आपसे इजाजत चाहेंगे, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी खोने की चीज, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्त जिंदगी। इंशाल्लाह हमारी आपको मुलाकात अब कल शाम 7 बजे स्टूडियो इंजीनियर मरियम, मेजबान अर्शद भट्टी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ और सफर दिमाग।

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल। खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राह बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
6: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
7: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
4: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
8: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
1: मिसिसागा रिजवे
0: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
2: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school cars safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.

0: Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti, 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: The law professionals at TM Law. Providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca.
2: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677

जैन, मुझे लगा कि तुमने शुरू में थोड़ा सा डर लग रहा था तुम्हारी आवाज में, लेकिन जिस तरह ये गाना चलता गया मुझे लगा कि तुम कंफर्टेबल होते जा रहे हो। अंतरे में आके मुझे लगा कि तुमने गाने को पकड़ा और उसके बाद से गाना खुल गया। मैं समझता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस थी और आई होप कि लोगों को भी अच्छी लगे।

Coke Studio, Season 15.

0: एंड मैं तारीफ करना चाह रहा हूँ एंड इट माइट कम अक्रॉस एज ए आई डोंट नो इट मे कम अक्रॉस समथिंग वेरी वियर्ड मुझे ऐसे लग रहा था कि आप लिप सिंक कर रहे हैं दैट्स हाउ गुड यू आर
1: थैंक यू सर थैंक यू सो मच

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्ब मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए मैं तावन देते हैं मस्जिद नूरुल हरम। मस्जिद नूरुल हरम की तामीर के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। स्टील स्ट्रक्चरिंग का काम जारी है। दिल खोल कर आप इसके लिए तैयार दीजिए। राबते के नंबर है 905-257-1342।

0: بہترین وقت ہے اس بائرز مارکیٹ میں. اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو تیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. صحیح مشورہ اور پروفیشنل سروسز. کال ارشد بھٹی 416-300-5600 یا طلحہ بھٹی 647-295-7861. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال ٹیم بھٹی 416-300-5600 اور 647-295-7861.
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: Apne makan ki next month closing hai. Kuch socha hai TV aur appliances kahan se lene hai?
3: Haan, Brampton TV and Appliances, jahan special sale chal rahi hai. TV, fridge, washer, dryer, kitchen range hood, microwave, sara kuch mil jayega bahut hi reasonable price pe.
2: Sale to ab chal rahi hai, par hame chahiye next month.
3: Aaj ke rate hum lock bhi karwa sakte hain.
2: That's wonderful.
3: Wahan se cell phone aur India bhejne ke liye 220 volt ka sara samaan bhi mil jayega.
2: Brampton mein ye kahan pe hai?
3: On Bovet, just west of McLaughlin. Telephone 905-450-2828 or visit BramptonAppliances.ca.
4: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Foods Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
5: Lisa ki yaad nahi aayi tujhe, Jassi? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए. परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ. धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर. आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401. सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10th तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग. तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर. विजिट lisascosmetics.com.
0: اگر آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کو کینیڈا بلانا چاہتے ہیں تو شہباز اکبر ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم آپ کو مکمل کنسلٹنسی فراہم کریں گے. اگر آپ ریفیوجی کلیم کرنا چاہتے ہیں یا امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں کسی بھی قسم کے اپیل کرنا چاہتے ہیں, بزنس امیگریشن اپلائی کرنا ہو, اسکلڈ ورکر کلاس ہو, کینیڈین ایکسپیرینس کلاس, اسٹوڈنٹ ویزا یا سپر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہوں یا پھر فیملی اسپانسرشپ, تو ہماری ایکسپرٹ ٹیم آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی. دو لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں, ایسٹ میں مارکم اینڈ شیپرڈ, ویسٹ میں ہائی وے 10 اور اسٹیلز کا انٹرسیکشن. ابھی رابطہ کیجیے 416-855-9464. شہباز اکبر صاحب کے رابطے کے نمبر 416-855-9464. گرین سٹار امیگریشن.
6: بہت خوشبو آ رہی ہے کھانے میں, ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر کے پسے ہوئے مسالوں سے بنا ہو.
7: ارے خوشبو کیسی نہیں ہوگی, یہ ہانڈی کے مسالوں کا کمال ہے جو چن چن کے اکٹھے کیے گئے ہیں خاص ہمارے لیے تاکہ یہ لذت اور سواد ہمیں مل سکے.
8: ہانڈی مسالے, بالکل گھر جیسا سواد.
9: فار ہول سیل انکوائری کال 416-746-5550, 746-5550.
0: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی, مہندی, ریسپشن, برتھ ڈے پارٹیز, کارپوریٹ ایونٹس, غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ, آڈیو ویژول سسٹم, 10 پروجیکٹر سکرینز, مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن, 6887 ڈکسی روڈ, مسساگر, ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برامپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر, 2 آکشن لین, برامپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. کوئنز مینر ایونٹ سینٹر.
10: صرف مارٹگیجز, دس راجیو تلوار دا مارگیج سپر اسٹار. مارگیج ریزیڈینشل لو یا کمرشل, فور کسٹمائز مارگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار. مشکل سے مشکل مارگیج ہو, لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو, راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا. تو یاد رکھیے, مارگیج ان سے مت لیجیے جو مارگیج بھی کرتے ہیں, بلکہ مارگیج صرف ان سے لیجیے جو مارگیج ہی کرتے ہیں. کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارگیج ایکسپرٹ 905-819-1001, 905-819-1001. 9815918001. License number 12374.
11: जी हाँ, 9058191001 जनाब राजीव तलवार साहब के रबते का नंबर है. द मोस्ट रिनाउंड एंड क्रेडिबल अगर हम कहें मॉर्गेज ब्रोकर हैं तो उनमें से सबसे पहले नाम जनाब हमारी कम्युनिटी में राजीव तलवार साहब का आता है. किसी किस्म की भी मॉर्गेज हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप उनको कॉल कीजिए. ऑन द फ़ोन आपको बता देंगे कि मुमकिन है या नहीं है. लास्ट मिनट की वो डील्स होती हैं, उसके स्पेशलिस्ट हैं. मॉर्गेज के हवाले से कोई मसला है आपको, एक बार आप इनसे रब्ता ज़रूर कीजिए. 9058191001 इनके रबते का नंबर है. बहुत वसी तजर्बा है इनका, मोर देन टू डेकेड से ये है सब कर रहे हैं कम्युनिटी को. हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद कहेंगे. राजीव भाई वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो.
12: थैंक यू बर्टी साहब, थैंक यू वेरी मच. हाई लिसनर्स, कैसे हैं आप सब?
11: बहुत शुक्रिया आपका. जो सूरत हाल है मईशत की, इकॉनमी को हम देख रहे हैं, काफ़ी मुश्किल में है. इंटरेस्ट रेट होल्ड किया है, आप भी शायद थोड़ा सा आइडिया दे रहे थे, जिक्र हो रहा था कि वो कम होने की तो बातें भूल जाएं. तो ओवरऑल क्या आपको लगता है इंटरेस्ट रेट? अब ज़ाहिर है जून में फिर इस हवाले से जो है वो मीटिंग होगी बैंक ऑफ कैनेडा की, रुकता कम होता है बढ़ता नज़र आ रहा है आपको?
12: देखिए सर, इंटरेस्ट रेट खाली इंटरेस्ट रेट के से नहीं है. इंटरेस्ट रेट के पीछे चार छह फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको सारे बता देता हूँ. सबसे नंबर वन है जीडीपी,
11: ठीक है,
12: जो फोरकास्ट है 2026 का बेयर मिनिमम 1.1 to 1.2%. सो बिल्कुल फ्लैट जीडीपी है, बिल्कुल फ्लैट. 2.6, 2.8, 2.9 अच्छे टाइम्स में रहती है. 1.1 है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3% से 1% पे आ रखी है. तो कहाँ, इट्स टोटली फ्लैट, इट्स स्टैग्नेंट. अब इन्फ्लेशन देखेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन मार्च में 2.4% हुई है, और वो इस वजह से हुई है कि गैस की और तेल की कीमतें जो एनर्जी की बढ़ी हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई है. और इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है एवरीथिंग गोज विद इट. अगर गैस बढ़ी है तो इन्फ्लेशन बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है तो फूड, ग्रोसरी, एवरीथिंग, लंबर, एवरीथिंग विल इंक्रीज. तो इंक्रीज होना लाजमी है. अब उसके बाद अब देखिए इंटरेस्ट रेट को, अभी आपने बिल्कुल ठीक बताया, अप्रैल में फेड्स ने 2.25% पे उसको होल्ड किया है, ओवरनाइट 4.45. और उसके बाद जो लेबर मार्केट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज की डेट में करीबन 6.5 से 7% है. तो कोई भी इंडिकेटर भट्टी साहब ऐसा नहीं लग रहा है कि जिससे कि कुछ आगे रिलीफ आने वाला है. लेकिन क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब चल रही है, इसलिए भी रेट बढ़ नहीं, अभी तो नहीं बढ़ रहा. लेकिन मैं अपनी प्रोजेक्शन बता दूं, मुझे लगता है सर अराउंड सितंबर अक्टूबर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के आसपास 0.5% तक रेट बढ़ेगा एंड ऑफ द ईयर तक, अगर सितंबर से शुरू हो. तो आप ये लगाइए दो बारी में 0.25 बढ़ा, एंड ऑफ ईयर हमारी जो आज प्राइम लेंडिंग रेट 4.45 है कैन बिकम 4.95. ये एक मसला है. मॉर्गेजेस बढ़ेंगी, फिक्स मॉर्गेजेस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी हुई हैं. जो फिक्स मॉर्गेज 3.79, 3.7 तीन साल की मिल रही थी, वो अब 4.44, 4.45 पे आ गई है. सो थिंग्स आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, बट अभी इसका कुछ कर नहीं सकते. ये सारी वर्ल्ड में यही इकोनॉमी चल रही है. सबसे बड़ी बात जो लोग, मैं बात पिछले 3-4-6 महीने से आई थिंक हम डिस्कस कर रहे हैं सारे चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ऑल सोशल मीडिया के ऊपर, के जो लोग मॉर्गेज रिन्यू करा रहे हैं इस साल में और अगले साल में, अगर पहले 6 महीने में, they are going to get big high rates sir.
11: Very right. 905.
12: तो अगर आप उसको पहले फिक्स कर लेंगे दोस्तों, बहुत फायदे में रहेंगे. अगर आपको लगता है मैं लास्ट मिनट में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट्टी साहब एक आपको एग्जांपल बताता हूँ.
11: जी जी.
12: आज की डेट में मेरे पास कम से कम एक हफ्ते में 8 से 10 कॉलें पता क्या आ रही है. घर की वैल्यू 8 लाख, मॉर्गेज 12 लाख. तो क्या करेंगे आप?
11: सही बात है.
12: और ये अगर रेट बढ़ा, रेट

0: हमारे पास इतनी ज्यादा कॉल है, मैं आपको ये बता दूं, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस को हम मना क्यों कर रहे हैं, देयर इज नो इक्विटी इन द होम.
1: बिल्कुल ठीक है.
0: कम से कम 10 से 15 कॉल एवरी वीक मैं रिजेक्ट कर रहा हूं कि आपके पास इक्विटी
1: नहीं,
0: नहीं
1: क्या से देंगे,
0: क्या करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते.
1: बिल्कुल ठीक.
0: अच्छा, तो इसको अगर फिक्स कर लेंगे तो यार गो अहेड सर.
1: अच्छा, अब जैसे आपने बताया अभी सूरत हाल तो बहुत खराब हो गई, इक्विटी भी नहीं है आपको, जब किस तरह से, तो एक आपने लास्ट टाइम शायद बताया था कोई लोन के हवाले से या कोई ऐसी चीजें, मतलब कोई तो बैकअप, कोई तो ऐसा हो जो चीजें बेहतर, तो इस हवाले से आप हेल्प कर सकते
0: हैं. देखिए सर, मैं लोन की पिछले 3 हफ्ते से हम बात कर रहे हैं रेडियो के ऊपर, आपके रेडियो पर भी मैंने कहा है, हर तरह का लोन, हर तरह का बिजनेस लोन, चाहे वो बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट हो, चाहे ऑपरेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट हो, चाहे आपको बिजनेस के लिए पैसे चाहिए हो, चाहे आपको स्टार्टअप के लिए चाहिए हो, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ लोन्स. सारे गवर्नमेंट लोन्स है, 500,000 to $1 million भी हम दिलवा रहे हैं. कॉल मी बैक, आई विल गेट यू द मनी. आपको पैसा मिला, आप उसको कहां यूज कर, दैट इज योर जॉब.
1: ठीक, बिल्कुल ठीक.
0: लेकिन आपको लोन मिल सकता है, इक्विटी गिरी हुई हुई है, और जो लोगों की रिन्यूअल आ रही है आने वाले पूरे एक साल में, टेक केयर ऑफ योर मोर्गेज राइट नाउ सर, इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम फॉर यू.
1: That's very important. इस मुश्किल सूरत हाल में प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वक्त से पहले प्लान करना बड़ा जरूरी है. और स्ट्रेटेजी क्या होगी इसके लिए आप रब्ता कीजिए 905-819-1001. राजीव तलवार साहब के रब्ते का नंबर है 905-819-1001. थैंक यू वेरी मच राजीव भाई, बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट वीक आपसे फिर बात करते हैं.
0: थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब. बाय लिसनर्स, टॉक टू यू नेक्स्ट वीक. कॉल मी बैक इन गुड फेथ एंड सी व्हाट आई डू फॉर यू.
1: जरूर, बिल्कुल जनाब, कॉल कर लीजिए. मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है. मॉर्गेज के हवाले से लोगों के लिए बहुत से मसाइल हैं, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है, लेकिन कोई ना कोई हल जरूर होगा. आप प्राप्ता करके मशवरा लीजिए 905-819-1001, 905-819-1001. राजीव तलवार साहब के रब्ते के नंबर है. ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पैगामात का तबादला हुआ है पाकिस्तान के जरिए, इसकी तस्दीक की गई है, ईरान ने तस्दीक कर दी है. लगता ऐसा है कि अगले 48 घंटों में कुछ ना कुछ बेहतर, उम्मीद बहुत है कि कुछ ना कुछ बेहतर सूरत हाल सामने आ सकती है. आगे चल के बात करेंगे. इस वक्त आपके लिए पेश कर रहे हैं आज की शायरी.

जो आंसू दिल में गिरते हैं वो आंखों में नहीं रहते, बहुत से हर्फ ऐसे हैं जो लफ्जों में नहीं रहते। किताबों में लिखे जाते हैं दुनिया भर के अफसाने, मगर जिनमें हकीकत हो किताबों में नहीं रहते। बाहर आए तो हर एक फूल पर एक साथ आती है, हवा जिनका मुकद्दर हो वो शाखों में नहीं रहते। लिए फिरते हैं कुछ अहबाब ऐसे मुस्तरिब सजदे, जहां दरबार मिल जाए जबीनों में नहीं रहते। महक और तितलियों का नाम भंवरे से जुदा क्यों हो, कि ये भी खिजा आने पे फूलों में नहीं रहते। जो आंसू दिल में गिरते हैं वो आंखों में नहीं रहते, बहुत से हर्फ ऐसे हैं जो लफ्जों में नहीं रहते।

0: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM studios mein aap dekh number 416593003 Shima Kirmani sahaba se sabhi log waqif hain Pakistan mein classical raqs pe karte hain aur samaji social worker bhi hain unki ek video aapne dekhi hogi ki unko police pakad kar jo hai wo le ja rahi baat karenge thodi der mein is waqt hum aapke liye pesh karenge Canadian English headlines jo aapke liye pesh karti hain Wani
1: News ke liye main daawat diya hai team Bhatti Real Estate for all your real estate needs call Talha Bhatti 647-295-7861 647-295-7861
2: Good evening you're listening to Radio Pakistan Toronto this is Meevani with local update Toronto city is promising better communication after foul smell wafted through east end Toronto public health officials say 9 cases have been confirmed in an outbreak of Legionnaires' disease. The trial began Tuesday for a Toronto couple accused of murdering their neighbor in Liberty Village. The province has announced lowering cancer screening age eligibility. GTA gas prices edged towards $2 per liter amid global oil market volatility. Family, friends, police officers from around the country, Ontario official, as well as the general public, paid their respect on Wednesday to the veteran officer who died following a motorcycle crash while on duty in Coburg last week. A teen has been arrested in shootings at two synagogues in Vaughan and Toronto. Prime Minister Mark Carney said he will consult with an independent advisory board to set up under former Prime Minister Justin Trudeau before he moves to fill a growing list of Senate vacancies. A Canadian citizen who posts anonymous online criticism of U.S. President Donald Trump has launched a lawsuit against the Department of Homeland Security, saying it is wrongly trying to compel Google to unmask him. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: Canadian English headlines aapke liye wani pesh kar rahi thi aap sun rahe Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM hamare studios mein aap tak number 416593003 सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने शीमा किरमानी साहबा जो कि नामवर कथक डांसर हैं औरत मार्च की ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर भी हैं उनकी गिरफ्तारी जो है उसका शायद आपने वो सीन देखा होगा अब वो क्या कह रही थी पुलिस उनको कह रही थी कि आप ऊंची आवाज़ में बात कर रही हैं और गधे जैसी आवाज़ होती है ऊँची और गिरफ्तारी से पहले ये बात करते हुए पुलिस के कुछ लोग जो है नज़र आए इसके बाद खवातीन पुलिस अहलकारों ने शीमा किरमानी के एहतजाज के बावजूद उन्हें उनकी गाड़ी से घसीट कर निकाला और अपनी कार में बिठा के ले गए कराची पुलिस ने मंगल की शाम को औरत मार्च की ऑर्गेनाइज़र थी शीमा किरमानी मनीजा अहमद सफीना जावेद और शहजादी रॉय समेत कई खवातीन कारकुनों को हिरासत में लिया था जो 10 मई को औरत मार्च के बारे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी तहम उन्हें कराची प्रेस क्लब के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया जब खवातीन पुलिस अहलकार शीमा किरमानी को घसीट कर अपनी गाड़ी में बिठा रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन रहनुमाओं को मुखातिब करके कह रही थी शैला रजा शीरी रहमान पुलिस 75 साल औरत से इससे पेश आ रही है ये तरीका इन लोगों का इसके बाद शदीद रद्दमल भी आया और वज़ीर दाखला जो हैं सिंध के ज़ियाउल हसन नजार की हिदायत पर DSP सदर नासिर अफरीदी SHO विमेन हैना मुगल और SHO आठली मैदान थाना नदीम हैदर को मुअत्तल कर दिया गया है अब ऐसे तो उन्होंने किया नहीं होगा किसी के ऑर्डर्स पे ही किया होगा गिरफ्तारी अब किसके कहने पे हुई है ये तरीका बड़ा अजीब सा था वाकई उनको घसीट के उनकी गाड़ी से जो है वो 75 ईयर्स उनकी एज है और उनको उस गाड़ी में बिठाया गया था अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी कोई तरीका होता आप इसको किसी और तरीके से हैंडल कर लेते ज़रूर वहाँ पर खवातीन पुलिस थी जो इनको लेके जा रही थी लेकिन जिस तरह से घसीट के लेके जाया गया और गाड़ी में डाला गया बहुत ही शर्मनाक मैं कहूँगा इस किस्म के मामला जो हैं औरत मार्च एक मतनाज़ मामला रहा है वहाँ पर जिस किस्म की गुफ्तगू उसमें और जिस तरह के नारे होते हैं वाकई वो भी दुरुस्त नहीं है उसका भी कोई ना कुछ ऐसा होना चाहिए किस किस्म के मामला ना हो लेकिन ये इस तरह की गिरफ्तारी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकना मेरे ख्याल ये भी दुरुस्त नहीं है अब मुअत्तल करने के बाद क्या होगा ये थोड़ी देर के बाद फिर वो बहाल भी हो जाएंगे और वही मामला चलेंगे तो गवर्नमेंट्स को इस किस्म के मामला खाम खामी बदनामी वाली बात है दुनिया भर में इस हवाले से बदनामी होती थोड़ा सा ज़रूर उसको देखना चाहिए आपको उसमें होने वाले तकारीर और नारों पर स्लोगन्स पर एतराज़ है बिल्कुल उस हवाले से कोई कानून साजी ज़रूर करें लेकिन इस किस्म के मामला जो हैं वो यकीनन काबिल मज़म्मत हैं 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM मैं आपका होस्ट और दोस्त अर्शद भट्टी हूँ
3: अस्सलाम वालेकुम यू आर लिस्टिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।

0: जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।

0: भट्टी को कॉल मिला।
1: Talabat 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talabat 647-295-7861.
0: तो तलाबट्टी को कॉल मिला।
1: Talabat 647-295-7861.
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478-4773। अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, इट्स 9058280009। यू लॉग इन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine-in karein ya take-out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice, Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer, large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take-out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga. अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा। एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
3: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
2: अब प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर, सिर्फ $229 में हासिल करें 2 रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स। चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल, तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में, और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में। मौका हाथ से ना जाने दें, अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।

0: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
1: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: Vishal Trivedi, Wahi Jana Pehchana Naam. Ab Vishal hi se lijiye commercial insurance apni commercial property par. Motel and hotel, any franchise shop, food restaurant, convenience stores, health and dental clinic, pharmacies, fleet trucking and warehouses, gas stations, strip plaza and more. For amazing discount with proper liability and insurance coverage, call Vishal Trivedi 647-767-9852, 647-767-9852, that's 647-767-9852.
3: जी हाँ, 647-767-9852 विशाल त्रिवेदी साहब के रबते का नंबर है। इंश्योरेंस की अगर बात करें, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम है जो कामयाबी का नाम है, जो आपके लिए कामयाबी का नाम है। फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, टू डेगेट से इसी बिजनेस में हैं, हर तरह के इंश्योरेंस करते हैं, आपको आपकी जो कस्टमाइज बना के चीज़ें सारी देते हैं, चाहे वो कमर्शियल इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो। ऑटो सेक्टर में भी बहुत काम किया है, बहुत अरसे हमारे साथ जो हैं वो एडवर्टाइज़ करते रहे हैं, कुछ अरसे बाद दोबारा हमारे साथ आए हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। विशाल भाई, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
4: थैंक यू भट्टी जी, एंड रिगार्ड्स टू ऑल द लिसनर्स, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू।
3: बहुत शुक्रिया आपका, और माशाल्लाह आपकी कामयाबी की जो है हम कहानियाँ जो है वो सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। आपने बड़ा एक्सेल किया है और प्रोफेशनली एक्सेल किया है, इसको तमाम जो इसकी एजुकेशन थी उसको भी हासिल किया, और फिर आपके क्लाइंट्स भी आपसे बड़े खुश हैं, फीडबैक आपका बहुत अच्छा है, ये बड़ी अच्छी बात है।
4: थैंक यू बटी जी, एंड इट्स ऑलमोस्ट 20 इयर्स प्लस नाउ इन दिस इंडस्ट्री, सो द ब्लेसिंग इज देयर, सो रिगार्ड्स टू ऑल माय लिसनर्स, एंड दिस इज द गुडविल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट विशेस यू हैव गिवन मी।
3: नंबर मतलब समय नोट कर लीजिए किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, 647-767-9852। अच्छा, मैं आज थोड़ा सा मैं मॉर्गेज लाइफ इंश्योरेंस और उसकी इंपॉर्टेंस के वाले से मैं चाहूँगा कि आज से बात करें। आपको पता है कि आजकल मॉर्गेजेस और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और ये प्रोटेक्शन कम से कम जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी सूरत हाल में ये लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इस हवाले से गाइड कीजिए हमारे सुनने वालों को।
4: जी भट्टी जी, एब्सोल्युटली, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस वी ऑल शुड हैव, क्योंकि देखिए हम कुछ भी करें लेकिन घर जरूर लेते हैं, और वी ऑल हैव वन हाउस और सम इन्वेस्टर्स हैव फ्यू हाउसेस। एंड ऑफ द डे आपकी जो सबसे बड़ी लायबिलिटी इस कंट्री में है वो है मॉर्गेज। नाउ आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीबडी दैट आप कुछ भी कीजिए पर अपनी मॉर्गेज को अगर आप इंश्योर कर लेते हैं, सो द वन क्वेश्चन वी आस्क अवरसेल्फ, व्हाट हैपेंस इफ आई एम नॉट देयर, एंड इफ यू आर द मेन ब्रेड अर्नर, अगर आप के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड करती है और गॉड फॉरबिड आपको कुछ हो जाता है, तो उस घर का या आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का क्या होगा? वेल द आंसर इज इट विल बी टेकन ओवर बाय बैंक्स। अगर आपके ऊपर मॉर्गेज लाइफ इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस आपकी मॉर्गेज एज वेल एज आपकी लाइफ इंश्योरेंस को कवर करता है, एंड दैट अमाउंट इज गिवन टू योर वाइफ और योर चिल्ड्रन और योर बेनिफिशियरी और योर स्पाउस, एंड दैट अमाउंट कैन बी यूज टू पे ऑफ द मॉर्गेज, एंड आपको जो एक्स्ट्रा इनकम है या एक्स्ट्रा जो पैसा है वो आप इनकम रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं। बेसिकली मॉर्गेज इज कवर्ड थ्रू अ प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और वो आप एक बार लेते हैं तो उसका प्रीमियम लॉक हो जाता है। सो एंड ऑफ द डे बटी जी, यही है कि आप जितनी भी एसेट्स उनको कवर कीजिए, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड।
3: बिल्कुल ठीक।
4: इवेंचुअली फॉर व्हाट? बैंक्स विल ओन द एसेट्स, एंड अगर आप मॉर्गेज इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर वो आप बैंक को पे करके आपकी फैमिली उसको इंजॉय कर सकती है एंड ऑफ द डे।
3: बिल्कुल सही है। नंबर नोट कीजिए, 647-767-9852, 647-767-9852। आपने कहा वो प्रीमियम लॉक हो जाता है फॉर दी, जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास रहती है या जो मॉर्गेज की रिन्यूअल तक का मामला होता है।
4: वेरी गुड क्वेश्चन भट्टी जी. सो यही एक बहुत अच्छा यूएसपी है. ये पॉलिसी होती है आप 10, 20, 30 साल कस्टमाइज कर सकते हैं. तो मॉर्गेज से कोई इसका टाइम पीरियड का कोई लेना देना नहीं होता है. एंड द ब्यूटी इज अगर आप ये इंश्योरेंस लेते तो आप किसी भी बैंक से जाके मॉर्गेज चेंज करा सकते हैं या रिन्यूअल आता है. ये प्रीमियम लॉक आज कर लिया है और वो 20 साल 30 साल या लाइफ लॉन्ग जो पॉलिसी होती है वो प्रीमियम कभी बढ़ेगा नहीं डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी. सो द पर्पस इज यू कवर यूर सेल्फ एंड एंड ऑफ द डे इवन इफ यू गो टू एनी अदर बैंक योर मॉर्गेज चेंज हो रही है आपकी पोर्टेबिलिटी उस इंश्योरेंस की हमेशा रहेगी. तो बार बार आपको बैंक से इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
3: नहीं बिल्कुल ठीक है जनाब. कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिलेटेड मॉर्गेज इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी किस्म के इंश्योरेंस के लिए आप कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए कॉल कर लीजिए 6477679852 6477679852. विशाल तवरी साहब हाई नेट वर्थ जो इंश्योरेंस स्टेट प्लानिंग एडवाइजर हैं और बड़े कामयाब इस हवाले से. कुछ और ऐड करना चाहेंगे इन द एंड विशाल भाई?
4: भट्टी जी दिस इज माय फैमिली एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू बी इन योर पैट्रोनेज हियर एंड दिस रेडियो. एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि द पर्पस ऑफ दिस टॉक शो इज टू एजुकेट यू गाइस. एनीवन हु इज लिसनिंग वी आर एजुकेटिंग हियर वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस. और कभी भी हमारे इसमें बेचने की बात या कभी कोई सेलिंग की बात नहीं होती. अगर आप मुझसे बात भी करेंगे तो मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा आप ये ले लीजिए वो कर लीजिए. नो, माय जॉब इज टू एजुकेट यू. माय जॉब इज टू गिव सो मच वैल्यू इन अवर कम्युनिटी बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू. सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू एंड थैंक यू.
3: यू वेलकम. यू वेलकम. बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. और नेक्स्ट वीक आपसे बात करते हैं. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. नंबर नोट कीजिए विशाल तवरी साहब का. अभी कॉल कर सकते हैं 6477679852 घर खरीदना बेचना लीज करना साइन करना नया प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना हो कॉल कर लीजिए 6472957861. और इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकवेट हॉल में सागा में. और ये बड़ा ज़बरदस्त इसमें एवरीडे गोल्ड के प्राइसेस भी हैं, इनाम घर भी हो रहा है और इसके साथ साथ आपके लिए एवरीडे डिफरेंट किस्म के जो हैं वो सेगमेंट्स रखे गए हैं. और स्टॉल्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ऑप्शंस रखी हैं. रेडियो पाकिस्तान हवाला देंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देंगे. और मेहंदी के स्टॉल्स यहाँ पर कुछ अवेलेबिलिटी है.